0: चिकन बनाना
1: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब make the chicken right.
2: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
3: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी. डायग्नोसिस क्लियर है. आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी. एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी. फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन. कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज.
4: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.

हाय यारों, क्या हाल है? मेरे हाल तो बिल्कुल ठीक है. आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ? OMG, माय फ्रेंड्स, माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्रेंड्स एंड लिसनर्स. अरे, आपने पिछले कुछ 1 2 3 हफ्ते में रेडियो नहीं सुना भाई? मैं हूँ इपी द हिपी, और आज मेरा प्रोमो भी आया है पन एशिया के इंस्टा पेज पे. आई एम द न्यूएस्ट बर्डी हियर एट पन एशिया रेडियो 104.9 FM. हाँ, मेरा नाम, जिनको लोग, कई लोग मुझे कॉल करते हैं और मुझे बोलते हैं, भाई हमें तो आपका नाम ही नहीं पता चला. एक्चुअली मैं इतनी सारी बातें करती हूँ ना, फट फट फट फट से, इतनी जोर जोर से, मैं एकदम ट्रेन की तरह, शताब्दी से भी फास्ट मेरी मेरी स्पीच है, तो उसमें फिर लोगों को मेरा नाम पकड़ में नहीं आता. तो मैं दोबारा बोलती हूँ, माई नेम इज इपी, लेकिन प्यार से लोग मुझे कहते हैं इपी द हिपी. वैसे तो पूरा नाम है इप्सिता रॉय, लेकिन यू नो माई फ्रेंड्स एंड यू नो माई बैंड मेट्स एंड माई एवरी वन, एक्चुअली एवरीबडी, दे जस्ट कॉल मी इपी, क्योंकि मैं बहुत ही प्यारी हूँ. एंड द वे आई लाइक टू से इट इज, यू कैन कॉल मी इपी द हिपी. इट्स लाइक अ हिपी विदाउट एन एच. दैट्स राइट. एनीवेज, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हर 30 मिनट्स में मैं वैसे ही रिपीट कर दूंगी. लोग वैसे तो मुझे कहते हैं कि भाई तुम तो बिल्कुल पागल हो यार लाइफ में. भाई एक्चुअली मैं पागल नहीं हूँ, मुझे ADD है. नहीं, वो सारी सीक्रेट्स हम नहीं रिवील करेंगे यहाँ पे, पहले दिन पे तो नहीं कर सकते. बट यस, यू आर लिसनिंग टू एन इवनिंग, यस दैट इज माई शो, एंड आई विल बी हियर एवरी मंडे टू थर्सडे 7 to 10 PM एंटरटेनिंग यू विद लाइक फैंटास्टिक म्यूजिक. दैट्स कूल एंड नाइस. आप लोग का मेमोरियल डे कैसे जा रहा है? पहली बात तो, मतलब मैंने पता है क्या किया है इस पूरे लॉन्ग वीकेंड में? मैंने तो काम ही किया है यार. मतलब हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है कि यू नो व्हेन यू आर इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यू डोंट हैव अ डे ऑफ, यू हैव टू वर्क एवरी सिंगल डे. बट यू नो व्हाट, दैट्स ओके बिकॉज आई फ्रिकिन लव माई जॉब. या किसी ने एकदम, मैंने इंटरनेट पे एक उस दिन देखा था, इट बिकेम अ मीम इवेंचुअली आफ्टर, विच वॉज डोंट लव योर जॉब, जॉब योर लव. वट डज दैट इवन मीन यू गाइज? इफ यू नो द मीनिंग वट जॉब योर लव मीन्स, देन टेल मी. इट वॉज सच अ हिलेरियस रील, और इट वॉज सम पॉडकास्ट और समथिंग, यू नो, एंड दिस गाय वॉज इंटरव्यूइंग दिस लाइक बैडी बॉस टाइप लेडी, यू नो, हु इज ऑल डेक्ड अप इन दिस मेकअप एंड एवरी थिंग. एंड दे वर लाइक, ओके सो मिस एक्स वाई सी, हाउ आर यू हैंडलिंग ऑल दिस लाइक यू नो सिक्स फिगर बिजनेस एंड ऑल दैट ऑल बाई योर सेल्फ? ओ माई गॉड, सो कूल, एंड यू लुक सुपर हॉट लाइक अ मॉडल एंड एवरी थिंग. वो कहती है, गाइज यू नो वट यू हैव टू डू, यू डोंट लव योर जॉब, यू जॉब योर लव. आई मीन लाइक, एंड इट बिकेम अ होल मीम. द कॉमेंट्स आफ्टर दैट वर रिडिक्युलसली फनी. इफ यू गूगल इट, लव योर जॉब, आई एम श्योर यू विल फाइंड इट. इफ यू फिगर आउट वॉट दैट मीन्स, वाई डोंट यू गिव मी अ कॉल एंड टेल मी वट दे एक्चुअली मीन? मे बी आई पुट यू ऑन द एयर, एंड इफ यू डोंट वॉन्ट बी ऑन एयर, मे बी आई विल जस्ट राइट वट यू थिंक एंड पुट योर ओपिनियन डाउन, एंड देन वी कैन जस्ट से इट ऑन एयर ऑन बिहाफ ऑफ यू. एनीवेज, माई फोन नंबर इज 972-235-5555, एंड येस यू आर लिसनिंग टू एन इवनिंग इन डैलस. आज हम बहुत सारी गपशप करने वाले हैं, lots of gossip, lots of fun, lots of you know tea to be spilled. What kind of tea? Well, that's your choice. Agar aapko matcha spill karna hai, earl grey spill karna hai, or whatever, that's totally up to you. Ya fir chai spill karni hai, that's on you. But I to like chai, main I am like a chai girlie, okay? To main to chai spill karungi, aapko jo karna aap wo karna, and then let's have some fun conversations. But that being said, jo maine pehle baat shuru kari thi, how was your Memorial Day weekend? Mine was pretty eventful, literally, like I'm not even kidding, literally eventful. You know what I did? So for those people who don't know me, who did not tune in the last few days, I was filling in for someone. Ek kuch raat ke 10 baje bhi ek show kiya, wagaira wagaira, until I got a regular slot. So those who don't know, I am a professional musician and I have this really incredible Bollywood band called the Dallas Bollywood Project, and we do a lot of live events and you know concerts and things like that. And yesterday we got to play ek uncle or auntie ki 50th wedding anniversary party, and it was so cool. I think it's like golden jubilee bolte na 50th anniversary ko, I think so, I think golden jubilee wohi bolte na. Ha, to
it was their Golden Jubilee anniversary, and it was so heartwarming, you know. And it was this little nice, very cute Gujarati uncle and Gujarati auntie. And, you know, it was like, humne apna performance kiya, humne apna set bajaya, everybody was dancing, aur background mein chal raha tha, aaj mere yaar ki shaadi hai. पर पता है उनके जो बच्चे हैं जो उनके बेटे बेटी हैं, उन्होंने इतना सही इवेंट ऑर्गेनाइज किया. दे बेसिकली प्लान टू रिक्रिएट द इंटायर शादी एंड ऑल द वाउज. तो इधर से ग्रूम आ रहा है, उधर से ब्राइड आ रही है, फिर बीच में ब्राइड पार्टी ग्रूम पार्टी मिल रहे हैं और वरमाला हो रही है, कोई किसी को उठा रहा है, कोई किसी को, बिल्कुल एकदम शादी वाला सीन हो रखा था. और वहाँ पे ढोल वाला भी आ गया है और वो ढोल भी बजा रहा है, एकदम बिल्कुल शादी वाला सीन हो गया. मुझे इतनी खुशी हुई देखकर, और अंकल और आंटी के आंखों में इतने प्यारे भरे प्यारे प्यारे से आंसू, हार्ट वार्मिंग स्पीचेस को सुन के एंड एवरीथिंग. एक एक जनों ने तो उनको गाना भी डेडिकेट किया, somebody actually sang, और हमने गाया आंटी जी get up and dance, exactly. पर आंटी जी उठी नहीं डांस करने के लिए, कोई बात नहीं. बट दैट वॉज माई मेमोरियल डे वीकेंड. येस्टरडे आई डिड दैट, टुडे आई स्लेप्ट बेसिकली. आई वॉज लाइक कैचिंग अप ऑन ऑल ऑफ दैट, ऑल ऑफ माई स्लीप एंड एवरीथिंग, क्योंकि इतने बड़े इवेंट के बाद आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है ना. एनीवेज, बट व्हाट डिड यू गाइज डू, कॉल मी एंड टेल मी. अंटिल देन, enjoy this beautiful song and I will come back with some more fun chit chat session and some gossip. Yow!

जी हाँ जी, दैट इज करेक्ट. आई एम बैक एंड आई एम गेटिंग सम वंडरफुल कॉल्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ वंडरफुल लिसनर्स. थैंक यू सो मच आप कॉल करके गाना रिक्वेस्ट करने के लिए. और आज हम थोड़ी सी मज़ेदार बातें करेंगे. पहली बात तो ये कि आपने आप मुझे नहीं पता आपके इंस्टाग्राम या फेसबुक एल्गोरिदम में ये आया कि नहीं, बट अपेरेंटली अर्जुन रामपाल, यू गाइस, ही इज कमिंग टू डैलस एंड आई थिंक इट्स सैड May 29th टू June 1st. आई थिंक ही इज गॉट अ रेसिडेंसी एंड सम क्लब इन डैलस. वो आप गूगल कर लेना, अर्जुन रामपाल इन डैलस करके अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिल ही जाएगा. बट अ लॉट ऑफ यू प्रॉबेबली डिडंट नो, आफ्टर धुरंधर आई थिंक दिस इज लाइक हिज सेकेंड करियर. यू नो आई मीन, आई फील लाइक जिंदगी में ना, जिंदगी बहुत बहुत लंबी भी है एक तरह से, और एक तरह से बहुत छोटी भी है. लंबी इसीलिए क्योंकि जिंदगी में हम इतने सारे साल गुजारते हैं एंड समटाइम्स यू नो वी गेट स्टक इन दैट सेम ओल्ड जॉब एंड दैट सेम ओल्ड लाइफ एंड दैट सेम ओल्ड रट. एंड वही, या तो आप उसी शहर में रह रहे हो या फिर मतलब यू नो वैसे ही हो जाता है. कई लोगों की जिंदगी ऐसी हो जाती है कि हम लोग चलो वही चीज़ करे जा रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर. यू नो द सेम, यू गो टू द जॉब, सुबह 7 बजे उठो, तैयार हो, जॉब जॉब जाओ, घर आओ, खाना पकाओ, खाना खाओ, सो जाओ, फिर सुबह उठो, फिर वही करो. चलो साल में एक वेकेशन ले लिया, मतलब दैट्स प्रीटी मच दी हाईलाइट ऑफ एवरी वंस यू नो लाइफ. नॉट एवरी वंस बट अ लॉट ऑफ पीपल. आई फील लाइक यू नो वी गेट स्टक इन दैट मोनोटनी एंड उसको ब्रेक करने के लिए ना, आई फील लाइक इन टूडेज वर्ल्ड यू मोर देन हॉबीज यू नीड अनदर पैशन. आई फील लाइक हॉबी एंड पैशन में दोनों में फर्क है. यू नो लॉट ऑफ द टाइम्स पीपल कन्फ्यूज द टू कि भाई अरे आई लव सिंगिंग, सिंगिंग इज माई हॉबी विच इज ग्रेट, बट ऑल्सो देन यू आर नॉट टेकिंग इट लाइक यू नो पुटिंग इन दैट मच एफर्ट. और चलो हो गया, कर लिया कर लिया, साइड में कर लिया, बट देन वॉट इफ यू आर लाइक मोर पैशनेट अबाउट इट? वॉट इफ यू आर लाइक कि नहीं यार आई एम गोइंग टू माई जॉब, ठीक है माई बिल्स आर गेटिंग पेड विद दैट एंड एवरी थिंग, बट आई एम रियली रियली रियली फ्रिकिंग पैशनेट अबाउट दिस लाइक सिंगिंग थिंग एंड यू नो डूइंग दिस ऑन द साइड. तो जिंदगी में कुछ भी हो जाए मैं ये तो करके ही रहूंगा बाय गॉड की कसम. तो आई फील लाइक दैट काइंड ऑफ अ पैशन will keep someone motivated, it keeps you going forward. That passion could be anything. Like for me it is my music. You know when I was growing up, मैंने साल में ना when I was younger तो मैंने गाने वाने बहुत सीखा. like मैंने 8 साल इंडियन क्लासिकल किया, फिर उसके बाद आई वॉज ए परफॉर्मर एंड आई ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया. इनफैक्ट आई इवन वेंट टू मकाओ टू टूर विथ माई बैंड एंड प्ले अ लॉट ऑफ कॉन्सर्ट्स एंड एवरी थिंग. एंड उसके बाद यू नो देन अगेन आई गॉट स्टक इन अ रट बेसिकली द थिंग सेम थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. आई वॉज डूइंग द सेम वेन्यूज, सेम सेट लिस्ट, यू नो वीक आफ्टर वीक वही वही बैंड के साथ. और मैं ना थोड़ा बोर हो गई, मुझे लाइफ में ना कुछ नया चाहिए होता है. आई एम लाइक यू नो समथिंग हैज़ टू बी एक्साइटिंग, समथिंग हैज़ टू बी थ्रिलिंग इन लाइफ. सो देन आई वॉज लाइक अब क्या करें. देन आई फील लाइक कि आई गॉट स्टक इन दिस रट एंड आई वॉज लाइक यू नो वॉट, I need to move to America. That's it. I mean, I had no, you know, ties as such. Of course, my parents were there, but thankfully, my parents are very encouraging when it comes to all this. तूने बोला बेटा, तुम्हें बाहर जाना है? ठीक है, जाओ. हम तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते. हम तो बाहर गए नहीं. हम तो दिल्ली, मतलब वो कैलकटा छोड़ के दिल्ली आ गए 70s में. But that was pretty much the life. कहते हैं अमेरिका में हमारे कोई रिश्तेदार है नहीं, ऑस्ट्रेलिया चले आओ, ऑस्ट्रेलिया में हमें बड़े बड़े सारे रिश्तेदार हैं. मैंने कहा भाई मुझे म्यूज़िक में करियर बनाना है, थोड़ा बड़े लेवल पे जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाके मैं क्या करूँगी? ग्रैमी शैमी तो लोग अमेरिका से ही जीतते हैं ना, तो आई हैव टू गो टू अमेरिका. तो पापा ने बोला ठीक है भाई, तुम्हें अमेरिका जाना है, अमेरिका जाओ. हम तो वहाँ किसी को नहीं जानते, लेकिन जाओ, यू विल काइंड ऑफ हैव टू हैंडल इट ऑन योर ओन, यू नो गेट अ जॉब एंड एवरीथिंग. वी डोंट हैव दैट मनी, वी आर सिंपल मिडिल क्लास फैमिली एंड ऑल दैट. मैंने कहा ठीक है, I will figure it out. And you know what, guys? I did figure it out. And that just inspired me. It lit like a fire in me. And I was like, bas yaar, zindagi mein yehi hai. It's inspiring. It's motivational. You have to keep going. Usi se yaad aaya. That's why. एक्चुअली मैं ना कई बार क्या होता है, मैं कुछ एक बात करते करते ना किसी और बात पे चली आती हूँ. मुझे पता भी नहीं चलता व्हाई आई सेड दैट इन द फर्स्ट प्लेस. बट समटाइम्स इफ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, यू हैव टू बी लाइक अरे इपी, तुम्हारी ओरिजिनल कॉन्वर्सेशन क्या थी? वो तो बताओ. वो मैं बता रही हूँ, ओरिजिनल मेरी कॉन्वर्सेशन ये थी कि दिस इज अर्जुन रामपाल सेकेंड करियर. आई फील लाइक ही इज स्टिल एन एक्टर, दैट्स हिज मेन ब्रेड एंड बटर जहाँ से आते हैं. बट यू नो मूवी बिजनेस इज समथिंग दैट यू डोंट गेट कास्ट इन लॉट ऑफ मूवीज ऑल द टाइम. धुरंधर वॉज अ मैसिव हिट एंड आई थिंक दैट गेव हिम द पुश
टू स्टार्ट हिज आई मीन ही इज बिन डूइंग दिस डीजे स्टफ फॉर अ वाइल, क्योंकि मैं एक टाइम पे इंडिया में भी थी, तो दैट टाइम ऑल्सो ही यूज टू डू दिस डीजेइंग एट दी स्मॉल क्लब्स एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक दैट ही इज बैक इन द टैबलॉइड्स, ही इज बैक इन द न्यूज, एंड आई थिंक ही इज ऑन दिस टूर ऑफ अमेरिका वेयर ही इज डूइंग लाइक 3-day रेसिडेंसीज अक्रॉस द डिफरेंट सिटीज, एंड गेस वॉट गाइज, ही इज कमिंग टू डैलस, इफ यू लाइक टू पार्टी, आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ म्यूजिक ही प्लेज, बट आई डोंट नो इफ इट्स गोना बी लाइक अ बॉलीवुड डांस नाइट और नॉट, बट यू नो यू विल हैव टू गो एंड फाइंड आउट, बट बेसिकली you should go check it out. I think it's going to be fun. And it's nice to encourage somebody in their second career choice. Agar aapne koi second career choice kiya hai, which is your side hustle or whatever it is, whether you're making reels on social media or whether, you know, you are a doctor by the day and a Bollywood singer by night, or if you are, I don't know, engineer by the day and actually dance in a dance group by the night, you know, then call me and tell me. And if not, that's okay too. In the meantime, enjoy this song. I'm taking you down memory lane because it is Memorial Day. This is a great song. I love this song. This is by Shweta Shetty.

जी भाई, हम भी दीवाने हैं और पागल हैं. वी आर अबाउट टू गो इन टू ए शॉर्ट ब्रेक, बट बिफोर दैट दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय ड्रीम होम मॉर्गेज दैट हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज अचीव होम ओनरशिप सिंस 1998. दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स एंड देयर एक्सपर्ट टीम डिलीवर्स स्ट्रेस फ्री टेलर्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस. मेक योर ड्रीम होम अ रियलिटी विद ड्रीम होम मॉर्गेज. फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 972-245-5626 or visit dreamhomemortgage.com.

It's like a melting pot of a lot of the North Indian states. Actually, पूरे ऑल ओवर इंडिया से ये लोग आते हैं, लेकिन देर इज अ ह्यूज हरियाणवी एंड अ ह्यूज पंजाबी पॉपुलेशन. और एक बार एक मेरे स्कूल में ना एक कौन क्या नाम था उसका, ओजस्वी या पता नहीं क्या नाम था उसका, एनी वेज नाम नहीं लेते किसी का, अब वो पता नहीं कहाँ है. तो वो मुझे आके, हम लोग ऐसे ही कुछ, मैं जैसे सबको पता ही है, हैव अ लिटिल बिट ऑफ थोड़ा क्रैक इन माई हेड है ना, तो उसको तो अब हमने इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया है थैंकफुली फनेशिया के थ्रू. तो अब पूरी दुनिया को पता चल गया भाई, पीर के दिमाग में थोड़ा सा सटकना चीज वाली है. ओके, थोड़ा सा क्रैक है उसके दिमाग में, स्क्रू ढीला है उसका. तो वो एक बंदा आके मुझे कहता है, ए बावड़ी हो गए क्या. एंड दैट लाइन वॉज सो आइकॉनिक. ये गाना सुन के मुझे हर बार ही उसी की याद आती है. और वो पता है कितने साल पुराना, कम से कम 20 साल पुरानी बात है ये. वो हर बार याद होता है, ए बावड़ी हो गए क्या. बट एंजॉय द सॉन्ग एंड देन वी गोइंग टू ब्रेक.

0: बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।
1: भाई मेरे को थोड़ा सा उससे नॉस्टैल्जी आ गया भैया। मैंने भी अपने पापा को बोला, पापा मैं जा रही हूँ अमेरिका, मुझे कोई साथी तो नहीं मिला, मैं अकेले ही आ गई यहाँ पे। बट कोई बात नहीं यार, फीलिंग तो काउंट करती है ना, है ना? इट डजेंट मैटर आप किसी के साथ आए हो, अकेले आए हो, पूरी ग्रुप के साथ आए हो, पर आए हो। दुनिया मतलब दुनिया नहीं, सॉरी, इंडिया छोड़ के दुनिया छोड़ेंगे तो कहीं और ही पहुंच जाएंगे। इंडिया छोड़ के आप आए हो, इतने सारे माइल्स फ्लाई करके, यू नो, फ्लाई करके ही आते हैं मोस्टली आजकल तो। बट अगर आप आए हो एंड देन यू नो ऑल द स्ट्रगल ऑफ बीइंग एन इमिग्रेंट एंड फाइंडिंग योर पीपल एंड देन फाइंडिंग अ जॉब एंड यू नो फिगरिंग आउट वेयर इज द इंडियन स्टोर। व्हेन आई फर्स्ट केम, जब मैं डैलस में DFW में फर्स्ट आई थी, आई एक्चुअली वेंट टू डेंटन बिकॉज आई वॉज स्टडिंग इन डेंटन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एट UNT। तो वहाँ पे ना उस टाइम पे अराउंड 8 साल पहले एक भी इंडियन स्टोर नहीं था, एक ही इंडियन रेस्टोरेंट था जिसका खाना मतलब एवं सा था, ठीक ठाक सा था। आई वॉज नॉट अ बिग फैन क्योंकि यू नो आई वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली यू गाइज, और अगर आपको पता है दिल्ली का खाना तो अलग ही लेवल का होता है। तो मतलब मेरे तो टेस्ट बड स्पॉयल हो चुके थे वहाँ का यम यम यम यम हर खाना खा के, चाहे वो रस्ते का हो या पंजाबी बाय नेचर का हो या कहीं का भी हो, इट वॉज ऑल अमेजिंग। और यहाँ आके ना एक वो यूनिवर्सिटी ड्राइव पे एक रेस्टोरेंट था जो पता नहीं मतलब दे वर डूइंग समथिंग, एंड वहाँ पे मैं जाती थी या कोई खाना पका, खुद भी पका लेते थे लेकिन यू नो समटाइम्स यू वांट टू ईट दैट बटर चिकन एंड ऑल दैट ना, तो फिर हम वहाँ जाते थे और फिर मेरे को अपने फ्रेंड्स को बोलना पड़ता था, अमेरिकन फ्रेंड्स बाय द वे, बिकॉज आई वेंट इन टू अ प्रोग्राम लाइक जैज जिसमें देर वर नॉट अ लॉट ऑफ इंडियन फोक्स, यू नो आई वॉज एटलीस्ट इन माई ईयर एंड एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स आई वॉज द ओनली इंडियन स्टूडेंट देर, एंड सम हाउ आई बिकेम लाइक दिस एग्जॉटिक न्यू बर्ड। आई वॉज एंड लाइक ओ माई गॉड यू फ्रॉम इंडिया, डू यू हैव अ कल्चर शॉक, ओ माई गॉड। एंड आई वॉज लाइक नो यू गाइज, आई मीन ऑल द सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड दे आर द सेम, यू नो वेदर यू लिव इन डेली और वेदर यू लिव इन डैलस, I don't think it's very different. Yes, the only thing I miss are my, you know, flavors and spices and everything. And other than that, I don't really miss anything like that. Flavor or spices se yaad aaya mujhe. There is a really amazing restaurant called the Fun Pizza Kitchen. And if you want to, you know, win a gift voucher for around $10... I'm going to announce a question towards the later part of the show after 8 o'clock. So stay tuned. Fun Pizza Kitchen is really cool. They have like these amazing pizzas but with like a desi twist. We'll talk more about it 8 baje ke baad. Par maine socha ab context mein hai to kyun na hum bole uske baare mein thoda sa bol hi dete hain. But anyways, we'll come back to it, okay? Until then, enjoy this beautiful song. This is... We all know KK, right? You guys all know KK. I'm a huge, huge fan of the singer KK. Unfortunately, he passed away, I believe, last year because he was performing a concert somewhere in Kolkata. And it was so hot in the auditorium that poor guy had a heart stroke. He couldn't handle the heat. And then, you know, people tried to sue the venue also or the event organizers. Why didn't they use AC? Yaar, AC is necessary. You are doing a concert on stage. It feels very hard to dance and sing in the song. So we lost a amazing, amazing, amazing voice. And, you know, the voice of the, I feel like the entire millennial generation. Because he sang all the super hits, a lot of the super hits, actually not all of them, a lot of the super hits were in KK's voice, and this is from before he became a really famous Bollywood singer. This is his indie stuff, indie pop from the late 90s. Check it out.

आई एम टोटली फायर्ड अप मैन, दैट सॉन्ग इज सो ग्रेट. मुझे तो हर बार ही वो सुन के ना डांस करने का मन करता है. मैं तो अभी भी एक्चुअली स्टूडियो में डांस करी थी. आई डोंट नो आप वीडियो वाले में देख रहे हो, रेडियो या सुन रहे हो, लेकिन किसी ने मुझे बोला दैट अपेरेंटली पीपल कैन ऑल्सो सी व्हाट आई एम डूइंग ऑन द रेडियो. सो हेलो फोक्स, इफ यू कैन सी मी, आई एम वेविंग एट यू. बट एनीवेज, दैट बीइंग सेड, आपकी दुआ है प्यार हुआ. हाँ जी हाँ जी, प्यार की अगर बातें हम करें तो एक चीज़ पता क्या होती है, मैंने ना उस दिन, यू नो, आई नो अ लॉट ऑफ अस हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ लाइक डूम स्क्रोलिंग ऑन द ग्राम, ओके. एंड आई वाज लाइक डूम स्क्रोलिंग, आई वाज बोर्ड, गए पूरा दिन का काम वाम ख़त्म करके, आई वाज टायर्ड एंड थक हार के, मैंने सोचा चलो भाई थोड़ी डूम स्क्रोलिंग करते हैं, यू नो, माइंडलेस स्क्रोलिंग वाई यू डोंट हैव टू लाइक बेसिकली यूज़ योर ब्रेन एंड यू कैन जस्ट कीप, यू नो, स्क्रोलिंग रैंडम रील्स एंड स्टफ लाइक दैट. सो I came across this really interesting video, and I love watching these cute little animal videos, you guys. And I came across this video where it was this peacock, ठीक है? बिल्कुल एकदम in his element, एकदम पंख वंख फैला के, एकदम रंग बिरंगे उसके जो पंख होते हैं ना, you know, मोर पंख जैसे, पूरे अपने wings spread करके, he was trying so hard to impress these two peahens, ठीक है? दो ladies थी वहाँ पे. You know, and he was trying so hard, बिल्कुल पंख वंख फैला के एकदम डांस कर रहा है, कभी इसकी तरफ जा रहा है तो कभी उसकी तरफ जा रहा है तो कभी इसकी तरफ जा रहा है, और वो दोनों लेडीज जो है ना वो उसको घास ही नहीं डाल रही है बेचारे को. वो बंदा इतनी फाइट कर रहा है, बड़ी देर से वो डांस करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है. बारिश का भी सीजन चल रहा है, यू नो, रोमांटिक सा माहौल हो रहा है, एंड दिस गाय इज लाइक रियली ट्राइंग हिज हार्ड टू इम्प्रेस द टू लेडीज ओवर देयर. एंड दीज पीहेंस, वो लोग कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, और ये पीहेन और ये जो पीकॉक है ना, इनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, ये दोनों के पीछे पड़ा हुआ है. ही इज लिटरली चेजिंग देम कि भाई इधर भी देखो यार, आई एम डूइंग दिस डांस, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रेस यू, भाई मेरी तरफ भी कोई देख लो. और वो पीकॉक कहती है, नो सॉरी, ओह माय गॉड, ही इज सो चेप यू गाइस, पीछे पड़ा हुआ है तो छोड़ ही नहीं रहा है, एकदम वैसी वाली वाइब हो रही थी. एंड आई वाज लाइक, हाय बेचारा, सो सैड. मतलब हम आदमी और यू नो लोगों के बारे में हम क्या बोले, जब पीहेंस पीकॉक कोई नहीं घास डाल रही है, जब एनिमल्स का भी कोई फ्यूचर नहीं हो रहा है, तो हम अपने जेनरेशन मिलेनियल्स और जेंजीज और ये जो जेनरेशन है जो सिंगल है, मेरी तरह सिंगल बर्डीज है, हम लोगों का क्या होगा जब इनको ही नहीं कुछ कोई घास दे रहा है, तो हमारा क्या होगा. एनीवे, सो आई थॉट दैट वाज लाइक रियली फनी बिकॉज इट वाज रिलेटेड टू ये के का जो गाना मैंने अभी प्ले किया, आपकी दुआ, वो भी बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ है इस लड़की के. अरे यार प्लीज, थोड़ी सी तो आपकी दुआ है, प्लीज मुझे थोड़ी सी घास दे दो भाई, आई एम ट्राइंग सो हार्ड टू इम्प्रेस यू. एनीवेज, well, stay tuned. I know we are in the first hour of my segment. I'm going to be here till 10 o'clock today. But if you come back in about 10 more minutes, or not come back, I mean just stick around for another 10 minutes, 8 p.m. to 9 p.m., we're going to talk about a lot of dating stuff, because that is totally related to why I was saying all of that in the first place. Okay, we're talking about what is the new current dating trend, dating apps, situationships, and all of that stuff, because I feel like ये सारी जो चीज़ें होती है ना, वी ऑल हैव स्टोरीज टू शेयर. आई विल टेल यू माई स्टोरीज, यू टेल मी योर्स, वी विल टॉक अबाउट रेड फ्लैग्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट यू नो, वील शेयर, वील डू अ लॉट ऑफ चिट चैट एंड ऑल ऑफ दैट. सो गिव मी अ कॉल ऑन 972-235-5555 एंड वी आर गोना हैव ए फन टाइम. बट अंटिल देन भाई, आई एम तो एब्सोल्युटली सिंगल, मे बी नॉट सो रेडी टू मिंगल, बट उसके उसी के थीम में आई विल प्ले यू दिस सॉन्ग.

हाँ जी भाई, कई बार तो डालस में आके लगता है हमारा भी दिल बिल्कुल तन्हा है, क्योंकि दोस्त तो सारे काम वाम में बिजी रहते हैं। फिर आप करते क्या हो जब आपका फ्री टाइम होता है? व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? मैं तो काम ही करती हूँ यार। फ्री टाइम अगर मेरे पास होता है, मैं सोचू चलो थोड़ा सा और कुछ काम कर लेते, थोड़ा सा और कुछ कर लेते, यार रियाज कर लेते, यार जिम चले आते हैं, यू नो ऐसा सा। आप क्या करते हो मुझे नहीं पता। एनीवेज, बट कई बार जब हम ऐसे तन्हा दिल वाले होते हैं ना, कई बार बहुत ही सीरियस जो सिचुएशन होती है, जैसे आपका कभी एक्सीडेंट वगैरह हुआ है गाड़ी का? है, मेरा तो एकदम कुछ साल पहले ना, आई वॉज लिविंग इन लुइसविल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस टाइम पे मैं बस अपनी लुइसविल वाले रोड से निकल के, बिकॉज आई वॉज अबाउट टू ज्वाइन I-35, और पीछे से ना आके मुझे किसी ने गाड़ी से मार दी। एक तो मेरी गाड़ी वैसी ही पुरानी वाली थी, खटारा सी गाड़ी थी, समहाउ वो चल रही थी, और वो बंदे ने आके घड़ाम से पीछे से मारी, और इतनी जोर से। और मेरे वैसे ही स्ट्रेस हो रहा था लाइफ में उस टाइम, सिचुएशन वॉज इन दैट ग्रेट, और आई हैड लाइक अ मेंटल ब्रेकडाउन। मैं तो वहीं पर हाईवे पे उतर के ही मैं भै भै करके मैं रोने लग गई। बट यू नो आई विश उस टाइम पे मुझे उमर ख्वाजा जी के बारे में पता होता, तो मैं तो जरूर उनके पास जाती। देन आई वुड हैव आस्क्ड हिम कि भैया आप हैंडल करो। वो बंदे ने, और मुझे पता नहीं था, पता है उस टाइम पे क्या करते हैं अगर आपका एक्सीडेंट होता है, इंश्योरेंस नंबर वगैरह जो लेते हैं वो नहीं पता था। I mean, पता था मुझे लेते हैं। मैंने उसको बोला कि भाई तू मुझे अपना इंश्योरेंस का इन्फॉर्मेशन दे, फिर वो कह रहा है यहीं पे है मेरे इंश्योरेंस पेपर, यहीं पे। अरे मैं इंश्योरेंस पेपर नहीं लाया, और मेरा तब दिमाग नहीं चला उस टाइम पे इतने स्ट्रेस वाले सिचुएशन में ना, कि अच्छा इंश्योरेंस पेपर नहीं मिल रहा है, तो ऐप सबके फोन में होता है इंश्योरेंस का नंबर, आप वहीं से ले सकते हो, देन योर इंश्योरेंस कंपनी कैन टेक केयर ऑफ इट, या फिर मे बी समबडी लाइक उमर ख्वाजा कैन हेल्प यू आउट, बट आई डेंट नो। एंड दिस बंदा, यू नो वट ही टेल्स मी, ही इज लाइक ओ आई एम सॉरी आई कॉन्ट फाइंड माई इंश्योरेंस पेपर्स, बट आई कैन गिव यू फ्री मसाजेस। मैंने कहा बट आई डोंट वॉन्ट योर फ्री मसाजेस, यू कीप योर फ्री मसाजेस, एंड इफ बाई चांस यू गाइज माई लिसनर्स ओवर हेयर यू गेट स्टक इन अ कार एक्सीडेंट लाइक दैट, डू नॉट सेटल फॉर समबडीज टेक्स मैसेज सेइंग दैट आई विल गिव यू फ्री मसाजेस। उसने मुझे अपना एड्रेस दिया, मैं उसके घर नहीं गई। आई एम वेरी नाइस लाइक दैट, यू नो, कि मैं किसी के घर जाके नहीं बोलूंगी भाई पैसे निकाल, $2,000 निकाल, मेरे बम्पर चेंज करने के लिए $2,000 चाहिए मेरे को। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन यू गाइज, मेरे पास उतने, आई डोंट हैव सो मेनी सो मच गट्स लाइक दैट। बट इफ यू गेट एवर स्टक इन अ सिचुएशन लाइक दैट, यू नो वॉट यू नीड टू डू, यू नीड टू कॉल उमर ख्वाजा। इफ यू आर एवर स्टक इन अ ट्रक और अ कार एक्सीडेंट और अ स्लिप और फॉल एक्सीडेंट, अटर्नी उमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड ही विल हेल्प यू गेट द कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व। डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज, आई ट्राइड इट, you know what they did, they just increased my premium. It's very stressful. So what you need to do is you need to get an attorney who will make sure that you are compensated for your time and all the stress that you've gone through. You don't pay until you win. Isn't that such a great deal? For a free consultation, call 469-300-5046 or visit attorneyomer.com. And this is brought to you by Umar Khwaja with traffic updates around DFW and blah, blah, blah. Okay. So, guys, we're about to go into another short break. But short break mein jaane se pehle, I'm going to play you a new song. Are you guys fans of Bandish Bandits? Do you guys know what I'm talking about? Nahi pata. So, Bandish Bandits is actually a show that comes on Amazon Prime. Theek hai? I like this too. Actually, maybe शायद time उतना होगा नहीं पूरा गाना बजाने के लिए. When we come back from the break, maybe I can play you the song then. But basically, Bandish Bandits is like this really cool show, which I absolutely loved. It's basically like this pop singer from Delhi who's, I mean, not me. It sounds like me, but guys, I'm not a pop singer. I'm a jazz singer. Okay, so there's this basically this really successful, really famous. She's famous on Insta and she has like sold out shows and everything. So this pop singer from Delhi or Bombay, I don't even remember at this point. But anyways, basically this pop singer who is back on Insta and doing her reels and promoting her concerts and stuff. But people criticize her because apparently she's Besura. गाइज, उसने कभी गाना सीखा नहीं, वो ऐसे ही मन से बनाती है, वो भी सही है, बनाओ क्यों ना बनाओ, लेकिन पूरी दुनिया उसको क्रिटिसाइज करने लगी, भाई तेरे को गाना नहीं आता। तो उसने बोला यार मुझे कुछ नया करना है अपने गाने में। सो शी वेंट टू राजस्थान, शी फाउंड दिस लाइक एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट कॉल राधे, और उसके और राधे के बीच में थोड़ा सा प्यार श्यार उमड़ गया, यू नो, और उन्होंने बड़ा सही एक गाना बनाया, एंड देयर वाज दिस
push and pull of classical versus pop and Indian versus Western. And then, you know, they were like कि नहीं मैं तुम्हें गाना सिखा दूंगा, आई विल हेल्प यू लर्न योर सिंगिंग टेक्निक. और वो कहेगी मैं तेरे को मॉडर्न बना दूंगी, आई विल मेक यू फेमस, यू आर सच अ गुड सिंगर, यू नीड टू बी फेमस एंड ऑल. एंड वो कहता है मुझे फेमस नहीं बनना है, हमारे घराने में ये रूल है कि हम फेमस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम फेमस हो जाएंगे तो हमारे घराने की प्योरिटी खत्म हो जाएगी. यू नो ट्रेडिशन वर्सेज मॉडर्न, क्या वॉट इज अ बैटल एंड ऑल दैट. आई एम श्योर वी ऑल डेल्ट विद समथिंग लाइक दैट एट सम लेवल, आई तो पक्का हैव. बट एनी वेज, अगर आपको ये स्टोरी लाइन पसंद आई, देयर इज लाइक 2 सीजन और लाइक 3 सीजन ऑफ इट, सो यू शुड गो चेक इट ऑन अमेज़न प्राइम. आई रियली एंजॉयड इट. आई एम प्ले यू यार, 1 मिनट में तो ब्रेक में जाने वाले, कोई बात नहीं, आप 1 मिनट के लिए सुनो, बाकी जो ब्रेक से आओगे मैं बाकी का सुना दूंगी. ओके बाय.

0: You guys, that was जानम समझा करो, आशा जी की आवाज में था वो गाना. आई लव दैट सॉन्ग. आई मीन लेजली लुइस ने आई थिंक ही प्रोड्यूस दैट सॉन्ग एंड इट फीचर्स दिस रियली रियली रियली इनक्रेडिबल लुकिंग मेल मॉडल दैट आई वॉज आई हैड अ टोटल क्रश ऑन व्हेन आई वॉज यंगर. बट एनीवेज, रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट दिस गिव अवे. Well, this is the time. Fun Pizza Kitchen. Are you craving something cheesy with a desi twist? Well, this is the time. Fun Pizza Kitchen is a wonderful pizza joint where you can go and have lots of delicious, cheesy, cheesy, yummy, yummy pizza with desi flavors. That's right, my friends. Achari paneer pizza. Ay hai, mere muh mein already pani aa raha hai. इतना पानी आ गया कि खांसी भी आ गई. OMG, पैक्ड विद टैंगी अचार पंच एंड सॉफ्ट पनीर मेल्टिंग इन स्पाइसी मैजिक. ओह, एंड फॉर द मीट लवर्स द तंदूरी चिकन पिज्जा यम यम इज प्योर स्मोकी परफेक्शन स्ट्रेट फ्रॉम द तंदूर टू योर टेस्ट बड्स. सो वेदर यू लाइक इट बोल्ड और ब्यूटिफुली बैलेंस्ड, देयर इज अ स्लाइस वेटिंग फॉर यू एट द फन पिज्जा किचन. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ गिव अवे. सो द सॉन्ग दैट आई जस्ट प्लेड, गाना तो मैंने आपको वैसे बता ही दिया था कौन सा है, लेकिन इन द वीडियो इट फीचर्स दिस रियली अमेजिंग मेल मॉडल, राइट, हु वॉज अ मॉडल, नाउ ऑफकोर्स ही इज एन एक्टर एंड ऑल ऑफ दैट टू. बट इफ यू कैन टेल मी द नेम ऑफ दैट एक्टर, यू नो ही इज क्वाइट अ बिग नेम, इफ यू कैन टेल मी द नेम ऑफ द एक्टर हु वॉज इन द वीडियो एंड यू कैन नेम मी वन मोर सॉन्ग इन विच दिस मेल मॉडल वॉज फीचर्ड. इट्स फ्रॉम द सेम एरा. येस, आई एम मेकिंग इट अ डिफिकल्ट वन यू गाइज. थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा ट्रिकी है, बट आई थिंक यू कैन डू इट. नेम मी द मेल मॉडल इन दिस वीडियो दैट आई जस्ट प्लेड एंड देन नेम मी वन मोर सॉन्ग दैट ही वॉज इन. सो ओ, वी हैव आवर फर्स्ट कॉलर, लेट्स सी. हेलो, यू आर ऑन एयर.
1: Hi.
0: हाय.
1: The answer is Milind Soman.
0: Yes, you're absolutely correct. And name me
1: Yeah.
0: one more song that you
1: Yeah, made in India. Made in India.
0: Yeah, मैं तो वही सोच रही थी. You got it. And what is your
1: Thank
0: name?
1: you. My name is Radha.
0: राधा.
1: Yes.
0: Okay, congratulations, Radha. You have won the $10 gift card from Fun Pizza Kitchen by answering this really tricky question. क्योंकि ये बहुत पुराना गाना है और दोनों गाने
1: Yes.
0: आपको याद आए, तो congratulations, that was really good.
1: Thank you.
0: Of course. So,
1: Thank
0: Radha, call me back. I'm gonna play a song, but call me back after we hang up this call so then I can take your phone number.
1: Okay.
0: And then you know we can just figure. I can tell you how you can go and collect your gift card and everything. Okay,
1: Okay.
0: call me
1: Thank
0: back in
1: you.
0: like a couple of minutes. Okay, thank you.
1: Thank you.
0: Bye.
1: Bye.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: डूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
2: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
1: कैसे?
2: पेज 3 ईटरी?
1: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
2: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
1: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
3: पेज 3 ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट।
4: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
5: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
6: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
5: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
7: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
8: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
4: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
9: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी, पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डैलस।
10: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है, और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से एट 6823464611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
11: मास्टर जी रीडिंग सफर गाइडेंस ओनली ऑन रिसर्च में बेस्ड।
12: सफर खूबसूरत है मंजिल से भी।
13: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
14: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, लॉसिन ट्रैवल। फॉर नियरली 30 years, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
0: Ladies and gentlemen, you're not ready for this. Frisco में इतना प्यार मिलने के बाद पंचतारा is now open at a new location in Allen. वही स्वाद, वही जुनून और वही जबरदस्त मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस। फेमस गर्मा गर्म पराठे, रोज ताजी बनी मिठाइयाँ और फुल सर्विस बार वेटिंग जस्ट फॉर यू। एंजॉय फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस और पंजाबी बफे एवरी डे। कैटरिंग सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल टू मेक योर एवरी सेलिब्रेशन मेमोरेबल। पंचतारा नाउ इन फ्रिस्को एंड एलन। मेंशन अपना पंजाब एंड गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट विजिट।
15: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
16: Hello, hello, my beautiful peeps. We are back And like I said, ye wala jo hamara segment hai, we're gonna keep it fun, we're gonna keep it entertaining, and we're gonna keep it juicy. Yes, we were talking about dating life and everything. और उसके चक्कर में हमने मिलिंद सोमन को भी याद कर लिया, जो आई विश मैं उससे डेट कर पाती, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी काफी बुढ़े हो चुके हैं एंड आई एम स्टिल प्रीटी यंग, सो लेट्स नॉट गेट देयर. आई मीन थोड़ा तो रिस्पेक्ट करना चाहिए, यू नो. बट ही इज स्टिल स्मोकिंग हॉट, यू गाइस. ही इज लाइक येप, टोटली. एनीवेज, लेट मी नॉट एक्सपोज ऑल ऑफ माय अंदर की फीलिंग्स ऑन रेडियो ऑन एयर इन फ्रंट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, बट लेट अस टॉक अ लिटिल बिट अबाउट I don't know who is listening at this hour. I mean, it's not that late. वैसे तो सिर्फ 8:30 बज रहे हैं. I feel like इस टाइम पे तो लोग डिनर कर रहे होंगे या फिर ड्राइव पे जा रहे होंगे, जो भी. Actually, ड्राइव पे जाते हुए याद है, congratulations राधा, जिन्होंने पिछला क्वेश्चन का आंसर एकदम सही से दिया था. एंड राधा, after we hung up, she called me up later and she said ki we are really enjoying your show so much and the choice of music that you're playing, because they were out for a drive, they were about to go home like 10 minutes ago, but because of the music that I'm playing, they have increased their drive and they're taking loops for another 10 minutes. I'm like, thank you so much Radha, you're the best. Kyunki bhai mujhe mera kaam kya hai, mera kaam hai acche acche gaane bajana aur sabko khush karna, kyunki like I like making people happy, you guys. मेरा लाइफ का एक ही पर्पस है, जिंदगी में खुश रहना बनता है. क्या जिंदगी वैसे ही बहुत छोटी है, मतलब पहले मैंने बोला जिंदगी लंबी है, बट आई फील लाइक उस हिसाब से लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी सैड. सो शाइन लाइक अ हीरा, शेक योर हिप्स लाइक शकीरा, एंड देन डांस लाइक गरम तेल में जीरा. I heard that, I saw that somewhere, I was like, guys, I have to share this. Dance like garam tel mein jeera. Wah, sizzle sizzle karte huye, ekdam swaad aana chahiye. Bhai, jeera nahi padega, dal mein, to dal mein swaad kaise aayega? Hai na? Anyways, usko baad mein baat karenge jeere ke baare mein. Hum cooking show nahi run kar rahe, hum thoda fun show run kar rahe hain. We're talking about dating experiences. To, jab dating ki baat karte hain, ya phir pyaar, mohabbat ki baate karte hain, I feel like, जब हम इंडियन गाइस के बारे में बात करते हैं ना, तो हमारे जितने भी इंडियन हैं ना, उनके सारे सबके अंदर ना एक बड़ा एक ग्रैंड जेस्चर वाला एक रोमांटिक सा हीरो सबके अंदर, एक अंदर का एक शाहरुख खान तो होता ही है. मतलब जैसे ही कोई लड़की मिलती है, उनकी आंखों से एकदम दिल निकलते हैं. वो जो कार्टून्स में नहीं आता कि ओहो आई सॉ दिस ब्यूटिफुल गर्ल और मेरी आंखें बन गई, दिल और धड़कने लग गई, वैसी आई फील लाइक ऑल, आई मीन ऑल तो ज्यादा जनरलाइज हो जाएगा, अ लॉट ऑफ इंडियन गाइज आई फील लाइक उनके अंदर का शाहरुख खान निकल आता है जैसे ही कोई उनको एकदम उनको पसंदीदा औरत मिल जाती है. एंड देयर लाइक ओह माय गॉड, शी इज गोइंग टू बी माय फ्यूचर वाइफ. और उसके चक्कर में कई लोग क्या करते हैं ना, उनको पता नहीं चलता कि क्या कौन सा ग्रैंड जेस्चर करें, कहाँ पे क्या फिट बैठता है, तो वो मतलब कुछ भी कर देते हैं. मेरे को कुछ लोगों ने काफ़ी कुछ ऐसे ग्रैंड जेस्चर्स करे हुए हैं, विच आई थिंक आर लाइक अ लिटिल, आई वॉज लाइक ओ ओके, आई सी यू लाइक मी नाउ, ओके. बट अभी मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगी, अभी मैं अपने दोस्त के बारे में बताऊंगी. मेरा एक दोस्त था जब मैं इंडिया में थी, उसको ना एक, हम लोग ना एक म्यूजिक फेस्टिवल के लिए गए थे. दिस गाय वॉज माई गिटार प्लेयर, ठीक है, और वो मेरे बैंड में प्ले करता था. एंड हम लोग एक म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए, वो एकदम पहाड़ों में, एकदम नौकुचिया ताल में एक फेस्टिवल हुआ करता था एक टाइम पे, बोल के एस्केप. नौकुचिया ताल इज लाइक दिस हिल स्टेशन नियर नैनीताल, ठीक है. अब वो 3 दिन का म्यूजिक फेस्टिवल था, उसमें सारे दिन आप वहीं पर टेंट्स में रह रहे हैं. आई मीन यू कैन बुक अ होटल रूम एंड स्टफ लाइक दैट, बट मोस्ट पीपल लाइक द होल टेंट एटमोसफियर. बिल्कुल लेक के पास था, इट वॉज लाइक राइट नेक्स्ट टू अ लेक, एंड वहाँ पे सामने स्टेज हो रहा है, सुबह से रात तक गाने बजा रहे लोग. इट वॉज लाइक अ फुल हिप्पी एक्सपीरियंस. आई मीन यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट कोचेला एंड ऑल, बट यू गाइज दिस वॉज लाइक द रियल स्टफ, दिस वॉज लाइक द रियल कोचेला. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2011, this is like so old, you know, and India mein tab music festivals were quite a big thing, you know, there were a lot of these music festivals and everybody used to come dressed, you know, in their best outfits, like the hippie outfits. Matlab subah se raat tak sharab bhi chal rahi hai, gaane bhi chal rahe hain, sab dance bhi kar rahe hain, there's no rules and regulations, police bhi nahi aa rahi hai, kehte are these young kids, what a... And it was not just young kids, there were a lot of older people also who came because they just simply enjoyed the music, and it was amazing. It was literally like Coachella experience, but a much more mellowed down to earth. Anyway, so our friend here, Sushant, oh ho, अरे यार नाम नहीं बोलना था मुझे, मैंने नाम बोल दिया, कोई बात नहीं. सुशांत अगर तुम सुन रहे हो प्लीज बुरा मत मानना, ये तो तुम्हारी स्टोरी है, बहुत लोगों में वैसे ही बता चुकी हूँ. तो हमारे जो दोस्त हैं वो उनको ना एक लड़की से बड़ा प्यार हो जाता है, उसको लड़की को देख के ना कहता है ओ माई गॉड ये लड़की तो मेरी ही वाइफ बनेगी, आई एम लाइक टोटली इन लव विद हर. तो सुशांत क्या करता है म्यूजिक फेस्टिवल पे तो उसको बड़ा मतलब ही इज गिविंग हर ऑल दी अटेंशन. अरे मैं ये ला दूँ तुम्हारे लिए, मैं ये ला दूँ तुम्हारे लिए, आर यू हंग्री, कैन आई ब्रिंग यू सम स्नैक्स, कैन आई ब्रिंग यू सम ड्रिंक्स, ब्ला ब्ला ब्ला. एंड दिस गर्ल इज लाइक श्योर या व्हाटएवर व्हाटएवर, यू नो शी इज लाइक ओके ऑब्वियसली दिस गाय लाइक्स मी, बट यू नो वी आर एट अ म्यूजिक फेस्टिवल अवे फ्रॉम द सिटी, तो अभी 3 दिन के बाद उसके बाद पीछे नहीं पड़ेगा. बट ये तो हमारे अंदर के शाहरुख खान, इसके अंदर का शाहरुख खान जाग गया, तो इसने बोला भाई मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं तो वापस गुड़गांव जाके आई एम गोइंग टू परस्यू दिस गर्ल. तो उसने उसको फेसबुक पे ढूंढा, उस टाइम पे इंस्टाग्राम उतना नहीं होता था, फेसबुक वॉज द मेन थिंग. तो उसने उसको फेसबुक पे ढूंढा और फेसबुक पे ढूंढ के ही बेसिकली परस्यूड हर फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, ठीक है. एंड फिर उसने बंदी ने बोला कि नहीं यार सुशांत आई एम सॉरी I can't do this. I don't feel the same vibes from you. ये बंदा no नहीं लिया उसने. उसने बोला कि भाई मुझे no नहीं चाहिए, मुझे no नहीं चाहिए, मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा. And what he did was he bought this like really giant bouquet of red roses and सीधा जाके उसकी गाड़ी पे रख दिया. मतलब ये भी नहीं, और गाड़ी पे रख दिया कार्ड शार्ट डाल के. और उसने बोला हे गर्ल, हम उसको बोलेंगे, हम लड़की का नाम नहीं ले रहे हैं, हम लड़की का नाम बोलते हैं गर्ल, ठीक है. कहता है हे गर्ल मैं तुम्हारे ऑफिस के नीचे खड़ा हूँ, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू. एंड दिस गर्ल इज लाइक ओ माई गॉड, इसको यार नो समझ नहीं आता क्या, मैंने तो उसको नो बोल दिया है. फिर वो आती है नीचे, फिर यू नो वो आती है, कहती है, फिर देखती है कि ये क्या हो गया, ये तो फूल शूल लेके आ गया, मतलब एकदम It was too much. I think there was some more stuff with the flowers. Maybe there was like a band or something like that. I don't know. But she was so overwhelmed. कहती है तुम दोबारा आओगे ना मेरे पास, मैं पुलिस को बुलाऊंगी. और उसने उठा के फूल ऐसे ही पटके ना ग्राउंड पे. हाय बेचारे सुशांत का दिल ऐसे 10,000 टुकड़ों में टूट टूट के फैल गया. वो रोजेस के पेटल्स की तरह पूरे जैसे पार्किंग लॉट में फैल गया. उसी के दुख में सुशांत ने, हमारे रोमियो ने, एक बड़ा सही सा गाना भी लिख दिया कॉल्ड मूनलेस नाइट्स, जो कभी आपको अगर समझ मतलब अगर चाहिए तो आप ज़रूर यूट्यूब कर सकते हैं. वो मेरा आई सैंग दैट सॉन्ग क्योंकि ही वॉज माई बैंड मेट. बट आई थिंक दैट वॉज सच अ वंडरफुल स्टोरी. इफ़ यू हैव एनी थिंग लाइक दैट वेयर यू हैव रियली परस्यूड योर गर्ल और गाय and they have rejected you because rejection is hard, or they have been like oh my god totally floored by your grand gesture, then please call me and tell me, let's have some juicy stories. But until then enjoy this next song.

यू गाइस दैट वाज सच अ कूल सॉन्ग. ये तो मेरा जिम मिक्स है, पता है. ये जब मैं जिम में जाती हूँ ना, मुझे थोड़ा सा लाइक ग्रूव करने वाला गाना चाहिए होता है टू डू माई कार्डियो एंड स्टफ और वॉक ऑन द ट्रेडमिल. आई लिसन टू दैट एंड लोग मुझे सोचते हैं जब जिम में मेरे को देखते हैं ना, मैं इन बिटवीन माई सेट्स, यू नो, व्हेन आई एम लिफ्टिंग एंड स्टफ, आई एम लाइक आई ब्रेक इन टू अ लिटिल डांस मूव एंड देयर लाइक, ओ यू आर दैट गर्ल हु डांसेस ऑल द टाइम. आई सेड गाइज माई मिक्स इज सो गुड, ऑफ कोर्स आई हैव टू डांस. आई मीन ऑल्सो हु सेज जिम हैज टू बी बोरिंग? जस्ट बिकॉज यू लिफ्ट सम वेट्स डजंट मीन दैट यू गोना बी बोरिंग, राइट? यू कैन हैव सम फन, यू कैन डांस, यू कैन, यू नो, किक ऑफ दैट शू फॉर अ लिटिल बिट एंड जस्ट हैव सम फन. Honestly, that makes the gym so much more easier. If you're just thinking about कि हाय मुझे आज 100 pounds उठाने हैं और स्क्वाट करना है ला, ऐसे करके अगर हम करेंगे ना, तो जिम डजन इज नॉट दैट मच फन. यू हैव टू मेक इट फन, यू हैव टू इंजॉय. समटाइम्स आई इवन प्रिटेंड दैट आई एम वॉकिंग ऑन द रैम्प, ऑल्दो आई एम नॉट अ मॉडल ऑफ फ्रॉम एनी एंगल, बट समटाइम्स आई इवन प्रिटेंड दैट द ट्रेडमिल इज अ रैम्प एंड आई एम टोटली डूइंग माई मॉडल वॉक, लाइक एकदम, यू नो, आई एम लाइक मिस यूनिवर्स वाइब्स. बट दैट मेक्स इट फन फॉर मी एंड देन आई कैन स्टे ऑन दैट ट्रेडमिल फॉर 30 30 मिनट्स एंड गेट माई स्टेप्स इन यू गाइज. सो यू गॉट अ फाइंड वॉट्स फन फॉर यू. एनी वेज, वी वर टॉकिंग अबाउट डेटिंग स्टोरीज, वी वर टॉकिंग अबाउट लव कन्फेशंस, प्यार के इजहार वगैरह वगैरह. ये तो मेरी दोस्त की स्टोरी मैंने सुना दी, अब मेरी स्टोरी सुनाते हैं. वेन आई वॉज यंगर, आई थिंक आई वॉज वॉट 23 मे बी समथिंग, वे वे यंगर, छोटी सी बच्ची. आई वॉज लाइक अ चाइल्ड बेसिकली, यू नो. आई हैड जस्ट स्टार्टेड माई इंटर्नशिप एट दिस नॉन प्रॉफिट इन इंडिया. आई वॉज स्टिल इन डेली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मैंने अपना अंडर ग्रेड खत्म ही किया था, तो करके मैंने सोचा बिफोर डूइंग माई मास्टर्स आई एम गोना, यू नो, गेट इन टू दिस नॉन प्रॉफिट एंड लाइक वर्क फॉर अ लिटल बिट, साल भर का थोड़ा एक्सपीरियंस कर लेते हैं. एंड आई वॉज, यू नो, प्रिपेयरिंग टू बी अ रिसर्चर. लुक एट दिस, लुक एट वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ. आई एम एन आर जे ऑन फनेजिया 104.9 FM. बट इंस्टेड, यू नो, माई एजुकेशन वॉज समवेयर एल्स, राइट? सो आई हैड जॉइन दिस ऑफिस एंड देर वॉज दिस वन गाय हु वॉज दिस इन्वेस्टमेंट बैंकर हु गॉट सो त्रस्त फ्रॉम हिज जॉब एंड हिज नौकरी. कहता है बट बाहर में जाए इन्वेस्टमेंट बैंकर, मुझे नहीं कमाने पैसे, मैं जा रहा हूँ मोटरसाइकिल राइड पे. तो उसने एक उस टाइम पे रॉयल एनफील्ड वॉज द बिग थिंग, उसने खरीदी एक बुलेट, बुलट बुलट पे आया और कहता है मैं जा रहा हूँ इस एनजीओ में काम करने बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी एंड स्टफ. तो आई मीन द थॉट इज वेरी नाइस एंड ऑल दैट. सो ही वेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वेंट ऑन एन ऑल इंडिया बाइक ट्रिप ऑल ओवर इंडिया. देन आफ्टर दैट ही केम टू दिस एनजीओ टू गिव बैक टू द कम्युनिटी एंड वी वर्कड इन द हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयन रीजन. अब उस बंदे को मैं बड़ी पसंद आ गई एंड यू नो ही वॉज लाइक 5 years ओल्डर देन मी एंड ही परस्यूड मी. एक बार उसने मुझे पूछा डू यू वॉन्ट गो ऑन अ, यू नो, डू यू वॉन्ट गो आउट टू ईट लंच. हमको ऑफिस से लंच देते थे, ठीक है, पर ही सेड कि डू वॉन्ट गो आउट टू द मॉल. उधर गुड़गांव में था हमारा ऑफिस एंड द मॉल सीन वॉज लाइक रियली हिप. सो उसने बोला चलो मॉल चल के लंच करते हैं. मैंने बोला अच्छा मॉल चल के, हाँ दैट विल बी नाइस फ्रॉम दिस लाइक रोटी सब्जी एंड ऑल दैट, लेट्स थोड़ा चेंज करते हैं. तो मुझे पता नहीं, आई डेंट रियलाइज इट वॉज अ डेट. आई वॉज अ 23-year-old किड एंड आई डेंट पिक अप ऑन द सिग्नल्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो मुझे लगा कि भाई अच्छा ये तो पूरा ग्रुप हैंग बनाता है. तो मैंने अपनी सारी जितने कॉलीग्स थे ना, मैंने बोला गाइस वी आर ऑल गोइंग टू लंच टुडे एंड दे वर लाइक ओके या एंड देन वी ऑल वेंट टू लंच. उसके बिचारे के पूरे एफर्ट्स पे ऐसे ही पानी फेर गया. फिर बाद में, यू नो, देर अदर थिंग्स दैट हैपेंड एंड एवरीथिंग, बट एनी वेज लेट्स नॉट गेट देयर. बट आई फील लाइक दैट वॉज हिज वे ऑफ ट्राइंग टू इम्प्रेस मी. And I totally did not pick up on that. If you have a really funny story like that, that you want to share, and that you accidentally ruined it for someone, please call me and tell me on 972-235-5555. We are having fun conversations over here. Guys, also, there is no shame. We've all been through stuff like that. Maine bhi kiya hai, aapne bhi kiya hai, aapki padoos wali aunty ne bhi kiya hai, sab ne kiya hai, matlab aisi thodi harkatein humne sab ne kiya hai. So just come on, call me, and we will talk about all this, okay? All right, see you soon. Enjoy the song.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
3: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़र वे, सुइट 205, फ्रिस्को।
4: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
6: माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट, हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट mytimeequity.com और कॉल सुधीर पाई एट 972-330-2771 और ईमेल wealth@mytimeequity.com टू हेल्प यू अचीव योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव टुडे। टॉक टू सुधीर पाई अबाउट 2025 डिजिटल एसेट और क्रिप्टो फंड।
7: इन्फॉर्मेशन शेयर्ड हियर इज फॉर इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस ओनली एंड डज नॉट कंस्टिट्यूट फाइनेंशियल और टैक्स एडवाइस। इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स रिस्क। ईमेल wealth@mytimeequity.com फॉर प्रोफेशनल एडवाइस।
8: चिकन बनाना,
9: चिकन बनाना
10: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
11: दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस एट सैल्स नैशविल हॉट चिकन। दे डोंट जस्ट मेक इट, दे मेक इट अनफॉरगेटेबल। फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, बोल्ड फ्लेवर्स, जंबो चिकन टेंडर्स, नैशविल सैंडविचेस दैट एक्चुअली हिट। लोकेटेड इन प्लेनो एंड रिचर्डसन, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
12: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
13: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
12: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
13: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
12: Samasya ka pakka samadhan.
13: Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0899. 97 or visit astrologerishwar.com.
14: Tune sunte hi brand click kar gaya na, just like that. When it comes to taxes, only one name pops up, AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
15: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
16: Arre yaar, Dallas mein Punjab?
17: Bilkul, Chandigarh Wale, jahan butter chicken bhi asli aur naan bhi tandoor se garma garam.
18: From buttery curries and fresh naan to street style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
19: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.
1: And we are back, you guys. अच्छा अभी सुशांत की बातें करते करते ना, अभी सुशांत का मैसेज आ गया मेरे को, कहते यार तेरा सुशांत अभी ही इज स्टिल इन इंडिया, ही इज इन इंडिया राइट नाउ एंड ही इज गोइंग टू वर्क। सुबह अब अभी उसके सुबह बज रहे हैं और हमारी तो रात भी खत्म होने को आई है। वैसे एक्चुअली नहीं, रात अभी शुरू हुई है, रात अभी जवान है। तो सुशांत का मेरे को मैसेज आता है, कहता है कि यार तेरा रेडियो शो कब है। मैंने कहा भाई अभी चल रहा है, बाय गॉड। तो सुशांत तेरी स्टोरी अब तो बोलना भी मत, ओवर सेंसिटिव जेंजी पता नहीं क्या अच्छा हम लोगों के इंटरनल जोक्स चल रही है, मैं आपको नहीं बता सकती, आई कॉन्ट टेल यू ऑल द जोक्स, बट दिस शाउट आउट गोज आउट टू सुशांत, थैंक यू फॉर स्पॉन्सरिंग माई प्रीवियस सेगमेंट विथ योर इंटरेस्टिंग ग्रैंड जेस्चर वाली स्टोरी, बिकॉज आई थिंक दैट वॉज लाइक सुपर एंटरटेनिंग. आज के जमाने में कोई ग्रैंड जेस्चर्स नहीं करेगा, 10 साल पहले अगर आप फिर भी डेटिंग कर रहे होते लोग फिर भी ग्रैंड जेस्चर्स करते हैं. आई फील लाइक आज के जमाने में गोस्टिंग ही गोस्टिंग होता है. आपको किसी ने गोस्ट किया? मेरे को तो कितने लोगों ने गोस्ट किया, मतलब आई फील लाइक कॉन्फ्रंटेशन बोल के कोई वर्ड ही नहीं है आजकल के लोगों की डिक्शनरी में. आई मीन इट्स लाइक ओ जस्ट अवॉइड एवरीथिंग बिकॉज हु द हेक वॉन्ट्स टू से ओ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इट्स नॉट द राइट वाइब. आई फील लाइक एवरी वन जस्ट वॉन्ट्स टू बी लाइक या आई एम जस्ट गोना स्टॉप टॉकिंग एंड जस्ट फेड आउट धीरे धीरे, मतलब वो पता ही जो हो जाएगा ऐसे करके. यू नो आई फील लाइक people don't have like guts anymore, you guys. Do you think so? I totally think so. And I don't mean guys, I mean girls and guys both. Anyways, moving on, we are in the last hour of my show. If you have a juicy, fun dating story, a grand gesture story, call me and tell me. We'll put you on air. Also, if you don't want to be on air, that's fine too. You can just tell me and I can share it with anyone. We don't have to tell anybody your name either. Totally, privacy is respected in today's day and age. Yes, I know. My number is 972-235-5555. Because these things are your and my things, so that's why we listen to a new song. But new... इस सेगमेंट में नया गाना सुनते हैं

गाइस वी आर बैक. इन केस यू वर वंडरिंग व्हाट वाज गोइंग ऑन, मैंने दो गाने ऐसे ही लगा दिए एंड आई वाज, अगर आप सोच रहे कि मैं ऐसे कैसे गायब हो गई, गाइस आई हैड दिस इनक्रेडिबल कॉल विथ, वी आर नॉट गोना नेम हिम बिकॉज ही रिक्वेस्टेड अस कि आप प्लीज मेरा नाम मत बोलिए, बट लेट्स कॉल हिम भाटिया. ओके, टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर नेम. ओके, सो भाटिया जो है, अभी वैसे तो वो नॉर्थ इंडियन है नहीं, तो कोई बात नहीं, फिर भी हमने भाटिया नाम रख दिया तो आपको कोई पकड़ ही नहीं पाएगा. ओके, सो ही टोल्ड मी अबाउट हिज अमेजिंग लव स्टोरी विच गाइज हैज स्ट्रेच्ड अक्रॉस डेकेड्स. यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव दिस, दिस इज सो स्वीट. ओके, चेक दिस आउट. सो भाटिया एंड ही यूज टू चेक आउट दिस गर्ल इन हिज सिटी एंड शी वॉज फ्रॉम say Punjabi medium and he used to study in English medium high school. Okay, they were both in like different high schools, lekin uske baad high school nahi, middle school, let's say ye middle school ki pyar ki baatein hai, theek hai. Middle school mein she was in a Punjabi medium and he was in an English medium high school, and but you know he used to check her out and he had the you know love ka keeda for this girl. And then what happened was, once they were graduating and going into high school, what would fate have like that, you know? She actually joined his school. So now she was also studying in English medium. And this guy, Mr. Bhatia, he goes like, OMG, yaar, ye to mere class mein hi aa gayi hai. Wow, ye kya ho raha hai? And then inke to man ke pyaar ke laddu to aise phoot rahe the, jaise pata nahi kya, ekdam... और जैसे पानी में अंडे नहीं उबलते बुट बुट बुट बुट करके, वैसे ही इनके अंदर के लड्डू फूट रहे थे वैसे करके. तो वाओ, दिस इज माय टाइम. और उसके बाद पता क्या हुआ फिर, जब यू नो, बिकॉज ही टोल्ड मी दैट ही वाज अपेरेंटली अ रियली गुड स्टूडेंट, तो उनको मतलब कई लोग आके उनको डाउट्स वगैरह पूछे थे एक्स्ट्रा ट्यूटरिंग, तो इसी ट्यूटरिंग के बहाने मिस पंजाबी मीडियम, यू नो वील कॉल हर पंजाबी मीडियम बिकॉज वी डोंट नो हर नेम, सो वील जस्ट कॉल हर दैट फॉर नाउ. शी वुड गो अप टू हिम, शी वुड लाइक, ओ हे, आई हैव दिस डाउट, कैन यू प्लीज क्लियर दिस डाउट फॉर मी, कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट. एंड ही वाज लाइक, ओ या बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आपको स्पेशल ट्यूटरिंग लेसन्स दूंगा, ऑफ कोर्स माय गर्ल, आई हैव टोटली द प्यार का कीड़ा फॉर यू लाइक दैट. एंड देन धीरे धीरे उनसे इनका क्रश, वैसे मेरे ख्याल से मिस्टर भाटिया क्रश आपका पहले से ही था, वो तो आपने इस टाइम पे एडमिट कर लिया कि बाद में आपका क्रश डेवलप हुआ है, लेकिन आई थिंक आपकी फीलिंग्स पहले से ही थी, तभी तो आप चेकआउट मारते थे. मतलब हमें भी पता है, हमने भी नए नए प्यार के गेम्स नहीं खेले हैं, हम भी बहुत सालों से खेल रहे हैं, यू नो. एंड सो ही वाज लाइक, ऑफ कोर्स आई विल क्लियर योर डाउट्स एंड एवरीथिंग. फिर एक दिन यू नो लाइक ऐसे करके हाई स्कूल खत्म होने को आया, इन्होंने अपनी फीलिंग्स ही नहीं बोली, ऐसे टाइम निकल गया. एंड देन उनके दोस्त ने बोला कि भाई स्कूल इज फिनिशिंग, अभी तू नहीं बोलेगा तो यू विल नेवर गेट दी अपॉर्चुनिटी टू यू नो टॉक टू हर अगेन, यू हैव टू टेल हर योर फीलिंग्स राइट नाउ. तो आर ब्रो ही गोज लाइक, भाई आज तो मौका है, ये स्कूल खत्म होने के पहले मैं अपनी दिल की बातें बोल के ही रहूंगा बाई गॉड की कसम. तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्हें बोला कि चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपनी फीलिंग्स वगैरह बताने को. तो ये गए सीधा इनके घर, मैडम के घर चले गए, एंड घर जाके उन्होंने बोला कि आई लव यू माई डार्लिंग. एंड वैसे आई एम एग्जैजरेटिंग अ लिटिल बिट, बट आई एम श्योर ही डिडंट यूज सो मेनी वर्ड्स. अपेरेंटली देयर वाज नोबडी एट हर हाउस, बट माई ऑडियंस डोंट बी सो नॉटी, वैसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, उन्होंने बस अपनी फीलिंग्स ही बोली है. और ये लड़की जो थी, शी वॉज अ लिटिल, आई थिंक शी वॉज अ लिटिल ओवरवेल्म्ड या टेकन अबैक और फॉर व्हाटएवर रीजन, इन्होंने तो यार इनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया. हाय बेचारे मिस्टर भाटिया का दिल ऐसे टूट गया, 100 टुकड़ों में चूर चूर चूर चूर चूर चूर हो गया. फिर उन्होंने बोला कि आए, उन्होंने मेरे पे तो दरवाजा ही बंद कर दिया. फिर देन शी स्टॉप टॉकिंग टू मी, ऐसे ऐसे करके हम लोगों की फ्रेंडशिप खत्म हो गई. देन ऐसे टाइम बीत गया, शी मैरिड समवन एल्स and he moved to America to pursue his career and this and that. And guess what guys, itne saalon baad fate has kind of brought them back together. They landed up meeting at an event and they started talking again, and then he just found out that she is just recently divorced, I believe that's what he said. And you know, and they started talking again, you know, and he's still single, and now they are
talking again. So let's please pray for Mr. Bhatia, who is actually not Mr. Bhatia, but we are not going to tell his real name because we respect privacy like that. Let's all pray that Mr. Bhatia gets Miss Punjabi Medium, and I hope your love blossoms just like स्प्रिंग में ब्लू बॉनेट्स, जैसे टेक्सस में ब्लू बॉनेट्स ब्लॉसम होते हैं, पर उतने छोटे से टाइम के लिए नहीं. आई होप पूरे साल भर ब्लू बॉनेट्स ब्लॉसम होते रहें, आपका प्यार भी ऐसे ही जगता रहे, और उसी की खुशी में ये नेक्स्ट गाना आपके लिए है. चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, वो इंडिया में हो, आप अमेरिका में हो, आप ज़रूर उस डिस्टेंस को क्रॉस करिएगा. एंड प्लीज़ आई होप यू फाइंड योर लव, एंड कम ऑन गाइज, कॉल मी एंड टेल मी योर स्टोरीज़.

right, we are back and I'm still taking calls. I think there was somebody calling me beech mein and unfortunately aapka call disconnect ho gaya. तो अगर आप मुझे कॉल करने की कोशिश कर रहे थे तो जरूर मुझे कॉल करिए बिकॉज आई वांट टू लिसन टू सम रियली कूल म्यूजिक यू गाइस. तब तक के लिए आप ये वाला गाना एंजॉय करिए. दिस इज वेरी कूल, आई लाइक द सॉन्ग. इसका ग्रुप बहुत सही है.

ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर शो. हमारे पास सिर्फ 10 मिनट ही और है मजेदार गाने बजाने के लिए. सो आई एम गोना टेक एज मेनी रिक्वेस्ट एज आई कैन बिकॉज दिस इज द टाइम. इफ यू वांट टू रिक्वेस्ट अ सॉन्ग और हैव अ स्पेशल डेडिकेशन फॉर स्पेशल समवन देन कॉल मी राइट नाउ विद इन द नेक्स्ट कितने 12 मिनट अगले 12 मिनट तक हम गाने सुनेंगे. ठीक है, लेकिन गाने सुनने से पहले मैं एक लास्ट अनाउंसमेंट कर लूं. दिस पार्ट ऑफ योर शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स. बाय एजी फिनटेक्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन अमेरिका. दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड get you ready for the future. Okay, so call them at 469-942-9888. Right, how many 8s were there? There should be 3 8s. Let me repeat that number, 469-942-9888. Ho gaya. Or visit agfintax.com. simple. Okay, agfintax.com. I think number wahin se bhi mil jayega agar aapko nahi aaya samajh mein. To this next song is a request by Hemant, and it is a special request that goes out to Aridhi and Prakriti. Aridhi and Prakriti, I hope you are having a wonderful Monday evening and a wonderful Memorial Day long weekend. ये आपके लिए, क्योंकि हमें पता है आपको बेस पसंद है. बेस मुझे भी पसंद है, मुझे इतना ज्यादा पसंद है कि एक टाइम पे आई ऑल्सो डेटेड अ बेस प्लेयर, बट दैट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन. लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. बेस नहीं होता गाने में तो लो एंड्स नहीं आते, और लो एंड्स नहीं आते तो गाने में ग्रूव नहीं आती यार. तो बेबी को बेस पसंद है, मुझे भी बेस पसंद है, आपको भी बेस पसंद है, डीजो को भी बेस पसंद है, तभी वो सब वूफर लगाते. चलो आप ये गाना सुनो, बाकी मैं बात से बाद में करूंगी.

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: Alright, thank you everyone for this beautiful Monday evening. आपके साथ मैंने ये शेयर किया, इतना अच्छे अच्छे स्टोरीज हमने शेयर करी, इतने अच्छे अच्छे गाने हमने सुने, आपने भी मेरे साथ अपनी अपनी प्यार की कहानियां शेयर करी. Come back tomorrow from 7 to 10 p.m. Exactly, the same time slot. We're going to listen to some amazing, more amazing music. इतने से म्यूजिक में थोड़ी ना, जिंदगी में इतने गाने हैं, सब सुनने पड़ते हैं यार, मतलब सारे गाने सुनने पड़ते हैं. एनीवेज, तो आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट. माय नेम इज इपी द हिपी एंड यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो एंड व्हाट एल्स, या दैट्स अबाउट इट. या यू आर लिसनिंग टू फन 104.9 फन एशिया रेडियो. And this is my show, An Evening in Dallas, and I will be here every Monday to Thursday from 7 to 10 p.m. Abhi jaake mujhe na thodi ice cream khani hai, theek hai? Abhi aap ye gana suno, kyunki mera dil to chahta hai thodi si ice cream khane ka. So I'm going to go get some cold desserts, and you enjoy this next song.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG FinTax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG FinTax's advisory services.
3: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now, 469-712-3591. Or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
4: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
5: आज की रीडिंग्स ऑफ गाइडेंस ऑन रिसर्च में वेरी।
6: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
7: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
8: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

104.9 FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, Pure Facts, Desi.

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: साथी जिंदगी में करते रहते हो लेकिन काम में तुमने आज तक नहीं की, आदत नहीं है तुम्हें।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

104.9 FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: कितने आदमी थे?
1: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming.

सुबह और शाम हर पहर आपके नाम फनेशिया रेडियो 104.9 FM।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहती है ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें, डीक्लटर योर डेस्क, डीक्लटर योर माइंड। सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि थॉट्स और दिमाग की भी जरूरी है। सो क्लीन स्पेस, क्लीन थॉट्स एंड क्लीन वाइब्स ओनली, यही है फनएशिया रेडियो का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस नेक्स्ट गाने को।

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजर रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी एशिया रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

0: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट. When it comes to taxes, only one name pops up. AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So, is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
1: Dallas, are you ready? Java Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पन एशिया.
2: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
3: तो फिर सिर्फ पन एशिया ही सुनूंगा.

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल। ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

0: ये क्या कर रहे हो चंदर? लाओ मेरा गीता बदलाओ, लाओ।
1: गीतों से मियाँ तानसेन, कानों में शहद तो भरा जा सकता है लेकिन पेट की आग नहीं बुझाई जा सकती, समझे?
0: तुमने फिर शुरू कर दी ना अपनी कीड़ों वाली बोली। जब देखो एक ही लगा रखते हो, भूख लगी है, भूख लगी है। लाओ दबाओ।
1: भूख दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है और इस बात को अपने दिल से तुम भी मानते हो और इसीलिए अपना और मेरा हिस्सा जेब में दबाए रखते हो। मैं तुमसे अपना हिस्सा मांग रहा हूँ।
0: कौन सा हिस्सा? 2 रुपए थे, उसमें से 1 रुपया तुम्हें दे दिया है। दिया है कि नहीं
1: दिया? मैं कहां इनकार कर रहा हूँ। अब 1 रुपया तुम्हारे पास बचा है कि नहीं?
0: बचा है।
1: और उस 1 रुपए में से मैं 50 पैसे मांग रहा हूँ, अपना हिस्सा। 50-50 हमारा परमानेंट एग्रीमेंट है कि नहीं?
0: तेरी तो भूख की ऐसी की तैसी।
2: कमाल के लोग रहते हैं तुम्हारे पड़ोस में, गा रहे थे तो महसूस होता था किसी ने अमृत पिला दिया हो मेरी कविता को। लड़ने लगे तो मरने मारने के लिए तैयार हो गए।
3: पुराने दोस्त हैं, साथ रहते भी हैं, रोज लड़ते भी हैं, मगर दोस्ती में कभी फर्क नहीं आता।

0: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है। और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ है। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 6823464611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
1: Astrology readings for guidance only and results may vary.
2: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
3: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फन एशिया रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क। यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG Fintax, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन, ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा।
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
3: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.

0: capable of anything.
1: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
2: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
5: हेलो गाइस, दिस इज मी किंजल दवे एंड यू आर लिसनिंग एंड वॉचिंग फन एशिया रेडियो.

0: 104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Fact Desi.
1: Music MG. तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शो के इट्स ओके okay, तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: कितने आदमी थे?
1: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.
2: फिर नजरें मिलाती हूँ.

0: और मैं फूल फेंक रहा हूं।
1: तुम?
0: अरे और फिर तुम जाने लगती हो और मजाक कर रहा था ना बिल्ली।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
1: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

0: Your favorite music on your favorite radio.
1: हमारे साथ मेवाड़ चलेंगी पद्मावती, हमारी पत्नी बनकर।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कर लेना।
1: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
2: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: हेल्प मी,
1: काश
0: प्लीज हेल्प मी।
1: तू मेरी आँखें भर दे।
2: ऐसे कैसे गायब हो गए?
3: पता नहीं सर,
2: रिकॉर्डिंग्स लाइंड अप है, शोज ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। कौन करेगा ये सब? पता लगाओ कि कहाँ गए ये दोनों।
3: जी सर, पता लगा रहा हूँ।

देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी।

0: उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
2: एशिया रेडियो।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

देसी स्वैग, देसी स्वैग, बॉलीवुड टैग, फन एशिया, फन एशिया। दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का दिन का

0: As we await the rain today, there should be some coming in between 1 and 8, but isolated here and there now and then. But from 8 p.m., so make sure you're home by then, till 3 a.m. overnight, we do have showers in our forecast. And this weather forecast is brought to you by Malabar Gold and Diamonds. And of course, you know that they are located on Preston Road in Frisco. Let's get you some more messages from our advertisers.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury brilliance celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
3: Kya matlab?
4: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
4: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: Door rehkar bhi desi rehna aasan nahi hota, par jab mile apni culture ki khushbu, apne खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डैलस।
7: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
8: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
9: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
10: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motorworks in Richardson, expert European auto care, precision diagnostic and top tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motorworks, engineered for excellence.
11: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
16: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

बिल्कुल।

0: said in a statement that nations in the Middle East would no longer serve as shields for U.S. bases. He has not appeared publicly since being named as the Supreme Leader on the 8th of March, but made these remarks in his Hajj message and hours after the U.S. carried out fresh strikes in Iran despite a fragile ceasefire and the two sides engaging in negotiations for a deal to end the almost three-month-long war. President Trump's fiery Memorial Day remarks have sparked fresh fears of a major escalation with Iran. Going off script, President Trump vowed that Iran would never obtain a nuclear weapon while honoring 13 Americans killed during Operation Epic Fury. And his sharp comments, delivered during an emotional address, instantly reignited tensions over Iran's nuclear ambitions and America's military posture in the Middle East. Ship tracking data showed three liquefied natural gas tankers pass through the Strait of Hormuz in recent days, heading to Pakistan, China and India, as well as a supertanker with Iraqi crude for China after being stranded for nearly 3 months. Canadian Prime Minister Mark Carney told Israeli President Isaac Herzog that the treatment of activists detained by Israel had been appalling and described the situation in Gaza as catastrophic. Muslim pilgrims from around the world congregated on Mount Arafat in Saudi Arabia today, the second official day of the annual Islamic pilgrimage considered the pinnacle of Hajj. Hajj is one of the five pillars of Islam, required once in a lifetime for every Muslim who can afford it and is physically able to perform it. A surge in voluntary departure agreements in immigration courts is raising concerns that President Trump's administration tactics are unfairly pressuring immigrants into leaving the United States, even if they have a legal right to stay. Voluntary departures during the second Trump administration reached over 89,000 cases as of the first of this month. And President Trump is due to undergo a routine medical checkup at the Walter Reed National Military Medical Center near Washington today. The White House said earlier this month that he would undergo this routine annual dental and medical assessment as part of his regular preventive health care. And Republican Senator John Cornyn's uphill battle for a renomination from his party reaches its conclusion today as voters head to the polls in the Texas primary runoffs. His race against State Attorney General Ken Paxton was considered highly competitive until a week ago when President Trump abruptly backed Paxton and made him the frontrunner for the nomination. And the John Cornyn versus Ken Paxton showdown ends tonight, but the brutal primary has some Republicans worried the party will emerge in tatters. Officials say they've eliminated the threat of a toxic explosion at a storage tank in Garden Grove, California. A crack discovered on the side of the tank helped alleviate internal pressure while firefighters sprayed water to reduce the temperature. Italian luxury car maker Ferrari has unveiled its first fully electric model, the Luce, belatedly joining rivals like Porsche and Lamborghini to offer clean energy driving thrills. The Luce, Italian for light, has a top speed of over 310 kilometers per hour and a range of over 530 kilometers. Pop sensation BTS, the globally popular boy band that recently returned to the world stage after military service, scored the top honor of Artist of the Year at the fan-voted American Music Awards in Las Vegas last night. And the group also claimed Best Male K-pop Artist and Song of the Summer for the single Swim. BTS prevailed in this high-powered Artist of the Year category that included Taylor Swift, winner of the most AMAs of any musician over her career, as well as Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Harry Styles, Lady Gaga, and others. You're listening to the World News on the FunAsia Network. North Korea fired several projectiles, including at least one short-range ballistic missile, towards waters of the country's west coast and launched around the afternoon from North Korea's North Pyongyang province. We will have more news and we'll get it to you in the next hour of the program. Stay with us.
1: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth at mytimeequity.com for professional advice.
3: अपनी roots भी और Texas का swag भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में. Royal Sona Masoori Rice हो, नानक पनीर हो या Parle Ji Biscuits. वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं. एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन. तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ. HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर.
4: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी. सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
5: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
4: K2 ड्राइव मतलब
5: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है.
4: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
5: 100%
3: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner. Same order again, same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
6: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है. पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है. और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी. पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं. प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है. साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं. आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshigram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस
7: लाए.
8: यार, बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है. हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस.
9: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं.
8: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
9: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू. उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है.
8: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे.
9: एग्जैक्टली. अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर.
8: नंबर बोल जल्दी.
9: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com.
10: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश.
11: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
12: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
13: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
12: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
14: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
15: इन प्लेनो.
14: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
11: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
16: आर यू अ सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर एंड हैव प्रॉफिट्स? स्ट्रेस्ड आउट बिजनेस के कुछ सिम्टम्स है. प्रॉफिट्स है बट नो कैश लिक्विडिटी. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी. डायग्नोसिस क्लियर है. आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी. एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी. फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन. कॉल 4253954318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज.
17: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

0: It's 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadoo? Dhuaan dhuaan. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता, जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
8: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
9: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
10: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
11: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
10: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
11: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
9: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
12: Chicken banana. Chicken banana?
13: Bro, banana nahi. Banana. Matlab, make the chicken right.
10: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
14: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.scodialcpa.com.
15: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
16: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर। लॉसिन ट्रैवल। फॉर नियरली 30 years, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
10: Ritesh, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
17: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
10: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
17: वेट, व्हाट?
9: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
18: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
9: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
19: मुबारक ईद मुबारक।
20: Grand
0: Bazaar is hosting Grand Chandrat Super Sale Eid Expo on Tuesday, May 26th at Frisco Hall Event Center from 12 p.m. to 12 a.m. 50 plus boutiques from different states, varieties of food vendors, food trucks, kids' rides, henna artists, and much more. Free entry and free parking. For booth and sponsorship, call or text Grand Bazaar organizer Sharmeen Hussain at 214-592-5259. Frisco Hall, located at 121 and Independence Parkway.
9: Of course, as we approach Eid, we have this track here for you, very soulful and emotional Islamic song that captures the sacred spirit of the Hajj pilgrimage and that profound connection to the Kaaba.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338 myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
2: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
3: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant sarees, bridal jewelry, men's and kids wear.
5: Wait, itna sab aur price?
4: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
6: Main hi to in hu.
7: Sab kuch saaf rakh sakte ho,
8: par mujh pe kisi ki nazar nahi jaati. Koi nahi sochta mere bare mein.
9: Kyunki ye kaun bola?
8: Ye hum bol rahe hain aapke ghar ka duct. जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
10: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
11: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
12: Desi cravings simple nahi hoti, unke levels hote hain. Level 1, mix veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3, Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema mutton. Rich, bold, no compromises.
13: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai, new on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGBT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao, flavor hum sambhal lenge.
14: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Phoenicia Radio.
15: Thank you very much for joining us in this final hour of our morning show today on the airwaves of the Fun Asia Network. The number here in the studios, for those of you who'd like to reach us, and we will take, of course, we always take requests and dedications, but any comments, feedback, suggestions, always welcome. 972-235-5555.

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
5: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
4: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
5: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
6: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
7: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
8: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
6: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
9: Tune sunte hi brand click kar gaya na? Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up: AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
7: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
10: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
11: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now, 469-712-3591. Or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
1: मामू देखो क्या हो गया।
2: ओ क्या हो गया?
1: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
2: ओए जर्मन का कमाल है।
1: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
2: ओए नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
3: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
4: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
5: Is shehar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadoo? Dhuaan dhuaan. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
6: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
7: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
8: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
9: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
10: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो।

आरडी बर्मन स्वैन सॉन्ग देयर फ्रॉम द फिल्म 1942 ए लव स्टोरी, जिसमें एक और गाना जो है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, उसी का जो एक अलग वर्जन एक जो टाइटल सॉन्ग बना एक फिल्म का, जिसमें सोनम कपूर वी सॉ अलोंग विद राजकुमार राव एंड ऑफ कोर्स अनिल कपूर इन दैट फिल्म. लेट्स गेट इट गेट यू दैट वन देयर हियर एंड इट इज गपशप गली विद मी टू दैट यू आर ट्यून्ड इनटू. एंड हमारी ये दीवानगी है म्यूजिक की जो हमें एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आती है, और ये प्लेटफॉर्म है फनीशा रेडियो 104.9 एफएम, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. नाउ लिसन, ये जो दीवानगी है हमारी सिर्फ गानों तक नहीं, खाने तक भी रहती है, और इसीलिए हमारी डैलस में इतने सारे देसी रेस्टोरेंट्स हो गए हैं कि कुछ रेपिटेटिव ही लगने लगा है कुछ रेस्टोरेंट्स का टेस्ट तो. और ऐसे में जब हमें वो फ्यूजन मिलता है बिटवीन दैट इंडियन स्ट्रीट स्टाइल फूड और एक मॉडर्न फ्लेयर के साथ जब उसे सर्व किया गया एक ऐसे एम्बियंस के साथ जहां पर कि यू नो यू वुड वांट टू हैंग आउट लिटिल लॉन्गर आफ्टर यू हैव फिनिश्ड योर फूड एंड एवरीथिंग एज वेल. तो ये है वो जगह जिसका नाम है पेज 3 ईटरी, जहां पे आपको सिजलिंग कबाब से लेकर वो फ्लेवरफुल चाट्स, उसमें जो उनका फ्यूजन तड़का है, सारा कुछ यू विल एंजॉय इट. इट इज एट हब 121, इट्स पेज 3 ईटरी.com दैट यू मस्ट गो एंड चेक आउट द मेन्यू एंड विजिट द प्लेस पेज 3 ईटरी. लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. रोचक कोहली के ने कंपोज किया ये आर डी बर्मन साहब का एक अलग अंदाज के साथ, एंड इट इज डेफिनेटली ए टॉल ऑर्डर, राइट? लेकिन उन्होंने फिर भी दिल जीता. ऑल द क्रेडिट गोज टू रोचक कोहली द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा फॉर द फ्रॉम द फिल्म दैट इज टाइटल द सेम.

अच्छा, मेरी ना एक लिसनर से बात हुई अभी, और उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ लाइंस लिखे थे अपने ही अंदाज में, बिकॉज उनको लगा कि भाई एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा ही क्यों हो, एक खवातीन या एक खातून को देखकर भी तो कुछ लग सकता है ना. और उसी के लिए उन्होंने कुछ 5-6 लाइंस लिखी थी. आई आई कुडंट गेट दोज लाइन्स कभी. आई होप शी शेयर्स विद अस. और जिस तरह से उन्होंने जनाब के साथ भी कंपेयर किया था, इट वॉज ब्यूटिफुल. एक्चुअली दो एक लाइन्स ही उन्हें याद आई थी, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन हर ऑन एयर. लेकिन मजा आ गया सुन के यार. सीरियसली आई डू बिलीव इन इंक्लूसिविटी एंड द पर्सपेक्टिव वॉज वेरी वेरी नाइस. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. कुछ मौसम की बातचीत हो जाए यहाँ पर, क्योंकि कल जो सिवियर काफी रहा मौसम, जिसका नतीजा ये हुआ कि डैलस फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेस्ड मेजर ऑपरेशनल प्रेशर आफ्टर रिकॉर्डिंग 392 डिलेज एंड 85 कैंसिलेशंस, मेकिंग इट द मोस्ट डिसरप्टेड एयरपोर्ट्स ग्लोबली. और उसका रिपल इफेक्ट इफेक्ट ऑब्वियसली होना ही था टू द डिफरेंट प्लेसेस, यू नो, राइट फ्रॉम शिकागो ओहेयर टू बॉस्टन लोगन टू मायामी फीनिक्स स्काई हार्बर to Seattle, Tacoma, and also LA International and San Francisco International, Denver International, Orlando International, and Philadelphia International. They all were impacted. And international connecting involving Mexico, Canada, UK, Germany, France, Japan, South Korea, UAE, Qatar, Turkey,

Orlando International and Philadelphia International. They all were impacted. And international connecting involving Mexico, Canada, UK, Germany, France, Japan, South Korea, UAE, Qatar, Turkey, Australia, China, ये सारे इन्होंने एक्सपीरियंस किए डिलेज बिकॉज ऑफ डैलस फोर्ट वर्थ ऑपरेशंस. एंड दैट वॉज प्योरली बिकॉज ऑफ द सिवियर वेदर, सिवियर थंडरस्टॉर्म्स, हैवी रेन एंड फ्लैश फ्लड वार्निंग्स दैट अफेक्टेड स्केड्यूल थ्रू आउट द रीजन, कॉजिंग द ऑपरेशनल स्लो डाउन्स एंड एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स डिलेज एट द डैलस फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट. वील टॉक अबाउट द वेदर इन जस्ट अ बिट हियर. लेट्स गेट यू अनदर रोचक कोहली और दर्शन रावल के साथ ये गाना, जो कि है टाइटल्ड बारिश, और उसी का 2.0 वर्जन जब ये क्रिएट किया गया, इट वॉज ब्यूटिफुल. आई थॉट लेट्स गेट दिस वन एज वेल ऑन गपशप गली विथ मी टू.

0: That's Darshan Rawal, ladies and gentlemen. और रोचक कोहली ने इसे री इमेजिन किया टू प्रेजेंट यू बारिश 2.0. बारिश का ही जो मौसम है जो कल काफी सिवियर था, जिसके कारण काफी फ्लाइट्स में डीले हुए, जो जिसका रिपल इफेक्ट आज भी चलेगा डैलस फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे. तो अगर आपका कुछ ट्रैवल प्लान्स रहा है तो आई एम श्योर नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी हैं आपके पास. काफी सारे कैंसिलेशन, 392 डीलेज दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, राइट? इट इज एट द डैलस फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट. अमेरिकन एयरलाइंस फेस्ड ऑपरेशनल इम्पैक्ट विद 81 कैंसिलेशंस एंड 228 डिलेज अलोन. जी हाँ, अमेरिकन एयरलाइंस की बात हो रही है. वैसे वेदर के बारे में बताते हुए, लेट्स गेट यू द वेदर अपडेट राइट हियर ऑन फनेशा रेडियो. आज जो हुआ है हमारा स्टार्ट काफी ड्राई है. टेम्परेचर्स हमारे 60s और 70s में शुरू हुए हैं. राइट नाउ वी आर क्लोज टू 80 और आफ्टरनून तक हमारे कुछ पॉपअप थंडर स्टॉर्म्स जो हैं, इसी के बारे में बताना चाहती हूँ. देयर वर प्लेंटी ऑफ फ्लडिंग इश्यूज अक्रॉस टैरेंट काउंटी येस्टरडे एंड DFW इज अंडर राइट नाउ ए लेवल 2 out of 4 रिस्क फॉर फ्लडिंग अगेन गोइंग इन टू टुमारो मॉर्निंग आवर्स. तो रेन्स जो हमने आज वेस्टर्न काउंटीज जो इवनिंग से शुरू होने वाला है आज, दैट इज गोइंग टू पुश ईस्ट ओवरनाइट एंड द हेवीएस्ट ऑफ द रेन लुक्स टू मूव इनटू द DFW बिटवीन 12 midnight to 4 a.m. While there will be lingering showers and wet roadways for tomorrow morning's commute, the heavy rain will be eased by that point. Level 2 out of 4 risk of flooding shifts mainly southeast on Wednesday. और ये आप लोगों के लिए weather warning जो हम लेकर आए हैं, it is on Fanesha Radio 104.9 FM. Today's high around 86. Tomorrow's high will be around 81 and low will be around 69. Keep listening, ladies and gentlemen.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
5: माँ, रियल्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to करना ही पड़ेगा मैडम.
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
2: अरे यार, डालस में पंजाब?
1: बिल्कुल, चंडीगढ़ वाले, जहां बटर चिकन भी असली और नान भी तंदूर से गर्मा गर्म.
11: From buttery curries and fresh naan to street-style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
12: Mubarak Eid Mubarak.
13: Is hosting Grand Chandrat Super Sale Eid Expo on Tuesday, May 26th at Frisco Hall Event Center from 12 p.m. to 12 a.m. 50 plus boutiques from different states, varieties of food vendors, food trucks, kids rides, henna artists, and much more. Free entry and free parking. For booth and sponsorship, call or text Grand Bazaar organizer Sharmeen Hussain at 214-592-5259. Frisco Hall, located at 121 and Independence Parkway.
14: Tracks that put you on the right track.

यू आर ट्यून इन टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. इस सेगमेंट में फीफा की बातचीत होगी क्योंकि जल्द ही जो डैलस में जो पूरा एक जमघट लगने वाला है उसकी तैयारी जितने जोर शोर से सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्वॉल्व इन मेकिंग इट वर्क हियर एंड ए सक्सेस हियर वो तो इन्वॉल्व है ही, लेकिन हम सारे जो फैंस बिल्कुल आंखें बिछाए बैठे हुए हैं फॉर द वेरियस प्लेयर्स एंड द टीम्स दैट विल बी एबल टू सी स्टार्टिंग June 14th. वैसे तो June 11th को शुरू होगा लेकिन June 14th से हमारे यहाँ पे जो वो राउंड मैचेस जो यहाँ पे शुरू होने वाले हैं दैट इज वॉट वी गोइंग टू सी एट डैलस स्टेडियम एंड इन एंड अराउंड डैलस स्टेडियम यू कैन इमेजिन कितनी ज़्यादा भीड़ वगैरह होने वाली है. उसी की तैयारी के चलते लेट्स टॉक अबाउट द म्यूरल विच हैज़ बीन ए पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्योंकि जो वेलिंग वॉल था उसके बारे में कई बार बता चुकी हूँ कि वो जो आर्टिस्ट थे उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ एक जो डिसलाइक अपना प्रोजेक्ट किया है एंड ही इज टेकिंग एन एक्शन ऑन दैट. ऑल ऑफ दैट असाइड राइट नाउ द म्यूरल इज रेडी, द न्यू म्यूरल इज रेडी एंड आर्टिस्ट एंड सिटी लीडर्स वर on hand for the unveiling of this largest public art mural in Dallas yesterday. The work has been visible for a couple of weeks और ये जो बनता हुआ लोगों को देखा लोगों ने उसको भी enjoy किया काफ़ी और internationally acclaimed Dutch artist Roselle de Graaf वो involved रही हैं इस को बनाने में along with few other Texas artists who helped her to create the detailed masterpiece of 250 wide by 150 feet high in 14 days that they completed it. और इस mural का नाम है One Field Infinite Smiles, overlooks the future 250-acre Harold Simmons Park being built between downtown Dallas, the design district and Trinity Groves. Organizers का ये कहना है कि ये जो इनका goal है, it is basically to connect art community and the outdoors for thousands of international visitors. और ये mural, it is on the Trinity Park Conservancy and ये आप जाके देख सकते हो. Trinity Park Conservancy building at 305 West Commerce Street. If you are into checking it out before the big crowd comes for FIFA World Cup, ज़रूर जाइए. The park is not expected to be completed until 2028, लेकिन ये mural आप लोगों के लिए open हो चुका है. So do check it out before we see the bigger crowd coming in very, very soon. June 11th से शुरू हो चुका है. Mexico City में it is going to kick off 2026 FIFA World Cup, ladies and gentlemen.

And it is FIFA that we are going to continue talking about. And we must tell you about, this special offer that New York City Mayor has offered. Mamdani ki baat kar rahi hu yahan par. Aur unhone jo ek residence ke liye ek lottery system nikala hai for the chance to purchase $50 tickets to the 2026 FIFA World Cup. Way reduced price that it is. People are excited about it. Winners को एक round trip free भी मिलेगा, bus transportation जो मिलेगा to MetLife Stadium. और ये जो है, ये इन्होंने अपने partnership जो की है with NYNJ host committee and have secured 1,000 reduced price tickets across 7 matches, 5 group stage games and 2 knockout round matches, but not the final, with approximately 150 tickets allocated per game. और इसके लिए सिंपल सी चीज है कि आपको जाना है regnyctix.com. I'm going to say it. It's regnyctix.com. और ये लॉटरी खुल चुका है कल और ये सैटरडे मई 30th तक मिडनाइट तक ये लॉटरी जो है ओपन रहेगा. एंड 15 एंड ओल्डर में एंटर वंस पर डे विथ अ डेली कैप ऑफ 50,000 एंट्रीज. जो कल जब खुला तो 3 मिनट के अंदर इट मैक्सड आउट. एक्चुअली द डेली लिमिट इट मैक्सड आउट. और ये बहुत ही कमाल का डील कंसिडरिंग टिकट प्राइसेस आर स्काई हाई. और वहां पे फैंस को ये मौका मिल रहा है थैंक्स टू ममदानी. A self-described lifelong soccer fan that he is, he wanted to make it convenient for the fans and affordable for the fans more so.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
4: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
3: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
4: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
5: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
6: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
7: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
6: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
7: वेट, व्हाट?
3: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
8: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
3: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
9: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
10: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
9: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
10: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
9: ये क्या होता?
10: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
11: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
12: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
13: Chicken banana?
14: Bro, banana nahi, banana. Matlab, make the chicken right.
11: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
15: This is Uday Chopra and you are listening to Fun Asia Radio.

1978 सुपरहिट फिल्म डायरेक्टेड बाय चंद्र बरोट स्टारिंग अमिताभ बच्चन. हमने डॉन का गाना सुना एंड यू प्रोबेबली नो डॉन का गाना क्यों सुना है. अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो आपको पता है कि डॉन 3 की कंट्रोवर्सी छाई हुई है पूरी. तो वील टॉक अबाउट दैट इन ए बिट. लेकिन कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई कॉन्ट्रोवर्सी ना हो, इसीलिए प्रोफेशनल्स के साथ जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इफ इट इज टू डू विद कार एक्सीडेंट, स्लिप और फॉल केस या फिर वर्क प्लेस इंजरी अगर कुछ है. तो अटर्नी ओमर ख्वाजा के साथ आप जरूर जुड़े बिकॉज दे विल मेक श्योर कि आप बिना स्ट्रेस के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी भाग दौड़ के आपको वो कॉम्पनसेशन मिल जाए. और पता है कमाल की बात यह है कि आपको तब तक उन्हें पे नहीं करना है जब तक वो जीत नहीं चाहते. कुल मिला के अगर वो आप जीतते हो, अगर आपको अपना कॉम्पनसेशन मिलता है, दैट इज वेन यू हैव टू पे देम, अदरवाइज यू डोंट हैव टू. और उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो कमाल का है एंड दैट इज ए गारंटी दैट दे कम विथ. सो जरूर जाए, फ्री कंसल्टेशन करें एंड पता करें कि वो आपकी कैसे मदद कर सकते हैं आपके केस को लेकर. 4693005046 इज द नंबर. attorneyomar.com इज द वेबसाइट. डॉन 3 की कॉन्ट्रोवर्सी विल टॉक अबाउट एंड आस्क योर ओपिनियन ऑल्सो फॉर द कॉन्ट्रोवर्सीज दैट वी आर हियरिंग इन बॉलीवुड. तो ये सेगमेंट कॉन्ट्रोवर्सीज के नाम, जो आप सोशल मीडिया पे कॉमेंट्स डालते हैं उनके नाम, और जो यू नो दिल ही दिल में या आपस में फ्रेंड्स के और फैमिली के डिस्कस कर लेते हैं, उनके लिए भी लाइंस ओपन रहेगी टू गिव योर इनपुट आल्सो राइट हियर ऑन फनीशा रेडियो 104.9 FM. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

दिस वॉज फ्रॉम द 2006 डॉन, जिसमें शाहरुख खान ने स्टार्ट किया ये फ्रेंचाइज, और ये फ्रेंचाइज गया टू द सीक्वल विच केम आउट इन 2011, और उसके बाद अब 2003 की ये जो डॉन 3 की जो ये तैयारी है, दैट इज व्हाट आई डू वांट टू मेक श्योर दैट वी ऑल आर इन द सेम पेज विथ. अगर आपके कोई ओपिनियंस होना इसके बारे में जरूर बताइएगा, आई वुड लव टू नो, क्योंकि हम सब इतने ओपिनियटेड होते हैं, जो कभी तो हम सोशल मीडिया पे स्पिल करते हैं, तो कभी अपने ड्राइंग रूम डिस्कशंस में, लिविंग रूम डिस्कशंस में स्पिल होता है. तो इसीलिए चाहती हूँ कि ये डिस्कशन यहाँ पे लेकर आते हैं कि आपको क्या लगता है, What is it that they should have done? या तो फिर कि रणवीर सिंह का स्टांस वर्सेस फरहान अख्तर का स्टांस क्या है. दिस इज अबाउट द डॉन 3 फ्यूड बिटवीन फरहान अख्तर्स प्रोडक्शन हाउस एंड रणवीर सिंह. अभी एक अलग ही एक्सप्लोजिव लेवल पे जा चुका है, और फरहान अख्तर फाइल्ड एन ऑफिशियल कंप्लेंट ऑन अप्रैल 11th टू द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज FWICE आफ्टर द एक्टर एब्रप्टली वॉकड आउट जस्ट 3 weeks बिफोर द इंटरनेशनल शूट was supposed to start. Just FYI, the Federation of Western India Cine Employees, जिसकी मैं बात कर रही थी, ये सबसे बड़े और सबसे बड़ा और सबसे पुराना फिल्म ट्रेड यूनियन है इंडिया का, acting as the parent organization for 38 different craft associations and representing over 500,000 film and television workers. Aur ye Mumbai mein hai, and it oversees the rights and working conditions for everyone from spot staff to technicians. To Ranveer Singh ke matter mein is federation ne strong stand liya hai against him. The film body has issued a non-cooperative directive against Ranveer Singh and alleging that he failed to respond to their invitation to appear in person and discuss the issue despite 3 reminders. Now, according to the film body, Excel Entertainment ne 2 ghante ki meeting 45 crore rupees ke audited bill submit kiye, jo 200 se zyada workers ke hotels, locations and travel par jo kharcha hua tha, un sab ko lekar tha. And it is not a hearsay, they have concrete evidence for that. And the producers emphasized that Ranveer had signed a 3-film contract and was fully involved during all the script modifications and location recce as well. लेकिन जब उन्हें उन्होंने रणवीर सिंह को अपना साइड बताने के लिए इनवाइट किया, तो इन रिमाइंडर्स के बावजूद ही हैज इग्नोर्ड द इन्विटेशन. और ये चीज काफी दूर तक गया है. Angered by this kind of reaction, federation leaders have decided to send a message to the industry that a superstar is not bigger than the ethics and the rules and regulations of the cinema fraternity. They have issued a non-cooperative directive until Ranveer Singh decides to meet them. This would mean that none of their 500,000 sitting workers across India, jo include karta hai technicians, pot boys, etc., they will not work with Ranveer Singh. And mind you, it's not a ban, they wanted to clarify it. Ye ban kisi kisam ka bhi nahi hai, lekin ye ek non-cooperation rahega. Agar koi apne personal level pe kaam karna chahta hai to zarur kar sakte hain, lekin in general everybody, because they are a part of this organization, to sab generally is pe amal karne wale hain, aisa lagta hai. To iska asar itna bada ho sakta hai ki ab India ka jo wo spot boy ya technician ya वैनिटी वैन सप्लायर, ये सारे जो लोग हैं वो रणवीर सिंह के साथ अगर काम करने से मना कर देते हैं, तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट हिज मूवी करियर एंड एड फिल्म्स आल्सो. तो इसके बारे में क्या कहना है आप लोगों का? आप लोग ने पढ़ा कि रणवीर सिंह एक्चुअली उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिन्होंने आज ही बताया कि भाई ही इज स्टिल वेरी कीन अबाउट दिस फ्रेंचाइज टू go on and be a success, lekin ye unke liye nahi tha, and that is why he has exited the project, and he wishes them well and all of that, and he thinks ki ye inke jurisdiction mein nahi hai ki kaun unke sath kaam karega ya nahi karega, ye decide ho is organization ke zariye. So if you have any comments, please let me know, let's discuss if it is something that
has made you think as to what is right and what is wrong, zarur batayega. 45 crores of money that has already been spent on this project, thinking about, considering, you know, Ranveer Singh as the Don 3 guy. So batayega.

It is the Dawn 3 controversy that I wanted to take up with all of you and find out what's your opinion on it. Dawn 3 में जो exit उन्होंने 3 weeks international shoot के पहले जो उन्होंने 3 weeks पहले रणवीर सिंह exited this project of Dawn 3, फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की का ये जो project, इस पर काफ़ी पैसा लग चुका था, 45 crores टू बी प्रिसाइज ये लग चुका था. लेकिन ये जो रणवीर सिंह का exit हुआ, इसके कारण जो नॉन कोऑपरेशन एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ है. लेट्स सी वेयर इट गोज. एंड रणवीर सिंह इज कीपिंग हिज काम एंड ही हैज सॉर्ट ऑफ नॉट रिस्पॉन्डेड वेरी पब्लिकली ऑन दिस वन, बट उनके रिप्रेजेंटेटिव ने आज कहा है कि कुछ ऐसा हुआ था अपेरेंटली कि वाइल ही वॉज ऑन द प्रोजेक्ट दे वर लुकिंग फ्रॉम फॉर सम अदर एक्टर. ये बहुत सारी बातें सुनाई दे रही हैं. दिस इज़ वॉट वन ऑफ द कॉलर्स टोल्ड मी. सो लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन एंड आई एम श्योर कि ये अभी आगे काफ़ी चलने वाला, क्योंकि काफ़ी एक पब्लिक डिस्प्यूट हो गया है. दिस शुड हैव बीन बिहाइंड द डोर्स, कंसिडरिंग कि फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी, रणवीर सिंह, ये इतने बड़े बड़े नाम हैं. अपेरेंटली आमिर खान ऑल्सो ट्राई टू कूल इट ऑफ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. और ये कहां तक पहुंचेगा ये तो वक्त ही बताएगा. होपफुली इट इज रिजॉल्व, क्योंकि ये सारे जो लोग इन्वॉल्व हैं काफी मेच्योर लोग हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और किसी के साथ भी ऐसा होना नहीं चाहिए. आई थिंक द वर्किंग रिलेशनशिप यहां से इनका कभी भी सही नहीं हो पाएगा, फॉर श्योर. बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, दैट्स व्हाट आई कैन से. एक और कॉन्ट्रोवर्सी जो चल रही है, और इसके बदले में आप लोगों के लिए एक गिव अवे है, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि मुझे आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए यहाँ पर, बिकॉज दिस इज द सोशल मीडिया डिस्कशन दैट हैपन्स ऑन दीज थिंग्स एंड आई लाइक टू नो योर ओपिनियन सीरियसली, क्योंकि कभी कभी कभी कुछ एक अलग पर्सपेक्टिव भी जब सामने आता ना तो काफ़ी एक आउटलुक आपका चेंज कर सकता है. सो दैट कॉन्वर्सेशन आई वॉन्ट टू हैव वेरी फ्रीली विद ऑल ऑफ यू राइट हियर ऑन फनेशा रेडियो 104.9 FM. सोशल मीडिया के ऐसे ही कुछ हम टॉपिक्स लेकर आएंगे एंड वील मेक इट अ डिस्कशन पॉइंट ऑन फनेशा रेडियो 104.9 FM. एक और डिस्कशन जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आना चाहती हूँ इन जस्ट ए बिट, उसके पहले मैं आप तक ये पहुँचाना चाहती हूँ दिस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. इफ इट इज़ टू डू विथ H1B F1 L1, यू नीड टू हैव समबडी यू नो हु इज who has the right skills and who can really help you through and through. तो ऐसे में सीमा मेहता लॉ ऑफिसर्स का नाम आता है. If you are on an H1B, F1, L1 or any other non-immigrant visa and are planning your path to US permanent residency, तो जितनी भी सारी conversation चल रही है, जितनी भी सारी आप सुन रहे हैं, the new rule that has been applied, आप उसके चलते find out how they can help you. Attorney Seema Mehta and her experienced team specialize exclusively in immigration law, including EB-5 investor visas, and then of course family and employment visas, perm labor certification and US citizenship as well. आपको अगर EB-5 investor visa program के बारे में कुछ additionally जानना है, तो you must know that you have to email them at info@seemamehtalawfirm.com. That's info@seemamehtalawfirm.com. The law offices of Seema Mehta, ladies and gentlemen, do remember that. You are tuned into Fanisha Radio 104.9 FM. Ek aur controversy in the next segment that we are going to talk about. Keep listening to Fanisha Radio 104.9 FM. Keep the number handy, 972-235-5555, number in the studio. This is Gapshap Gali with me too. We are going to head into a short commercial break. Phir hogi baat aapse.

0: रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डायलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
1: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
3: भूख लगी
4: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
5: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
6: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
7: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna, that's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
8: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas, because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican inspired menu, and trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
11: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
12: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
11: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
12: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
10: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself, free of charge. Services provided under written contract with a 3-day

द सीरीज कॉल कॉल मी बेब इट स्टार्ड अनन्या पांडे लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका गाना सुना आप लोगों ने. यू आर लिस्निंग टू फनेश रेडियो 104.9 एफएम, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. ये है गपशप गली विथ मीठू. और मैंने कहा ना, एक और कंट्रोवर्सी जिसके बारे में बात की जाएगी आप लोगों से, जो चीज़ आप सोशल मीडिया पे डिस्कस करते हो, हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे भी हम कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आएं और कुछ पर्सपेक्टिव लोगों का सुने और सोचें और थोड़ा समझने की कोशिश करें चीज़ों को. क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कभी कभी कुछ छोटी छोटी चीजें बिल्कुल इट्स ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन थैंक्स टू सोशल मीडिया एक्चुअली. और वो तिल का ताड़ शायद सोशल मीडिया के लिए ये कहावत बना होगा जमाने पहले. यू नो, यू आर लिस्निंग टू गपशप गली विथ मीठू. और जो गली हम घुसने वाले हैं वो है अनन्या पांडे की फिल्म चांद मेरा दिल, जो ओवर द वीकेंड रिलीज हुआ. लेकिन फिल्म के बारे में कोई नहीं बात कर रहा, सब बात कर रहे हैं उस डांस फ्यूजन के बारे में, विच वॉज ए फ्यूजन बिटवीन हिप हॉप, लॉकिंग एंड प्राइमरीली भरतनाट्यम, क्योंकि भरतनाट्यम का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है अनन्या पांडे ने. और इसके बारे में इतने सारे ट्रोलिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है अनन्या पांडे की कि क्या ही कहा जाए. एंड इट इज़ काइंड ऑफ सैड टू सी. ऑनेस्टली दिस इज़ नॉट समथिंग आई वॉन्ट टू बी प्रीची हियर. आई रियली वॉन्ट टू फाइंड योर ओपिनियन. आई वॉन्ट टू रियली टैप योर ओपिनियन हियर. क्योंकि ये मैं मानती हूँ कि जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो जो अच्छा या बुरा पूरा क्रेडिट उन्हीं को मिलता है, लेकिन बिहाइंड दैट देर इज एन एंटायर टीम हु मेक्स दम डू इट. लेट्स से ए डांस कोरियोग्राफी, लेट्स से ए सीन और ए सॉन्ग दैट दे डू, इसके पीछे एक टीम है. एक्टर्स तो एक समझिए पपेट की तरह आके एक अपना काम करके चले जाते हैं. दे डू इट गुड और बैड इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट दिस इज वॉट दे आर सपोज टू डू. और अगर कुछ जो है पर्दे पर या यू नो स्क्रीन पर अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो ये उस टीम की जिम्मेदारी भी होती है, प्राइमरीली उनकी जिम्मेदारी होती है टू करेक्ट इट. सो अनन्या पांडे का जो ये जो भरतनाट्यम का जो ये डांस जो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको उसको ट्रोल किया है,

इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, बिकॉज राइट फ्रॉम प्रोफेशनल्स टू द ले मैन एवरीबडी हैज स्पोकन अबाउट हाउ बैड शी वॉज एट डूइंग दिस वन, कि भरतनाट्यम का भी पूरा एक क्लासिकल आर्ट का पूरा कचरा बना के रख दिया है इस फ्यूजन डांस ने. एंड लॉट ऑफ things that people are saying, do you have an opinion about it? 972-235-5555. हमने कई बार देखा है ऐसे क्लासिकल आर्ट फॉर्म को, यू नो, नॉट जस्ट भरतनाट्यम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, लेकिन हमने गानों में भी देखा है कि देर इज अ फ्यूजन ऑफ यू नो टूडेज रिदम एंड टूडेज म्यूजिक इन टू दोज क्लासिकल, you know, be it song or dance that I'm talking about, उसमें हमने वो fusion देखा है और ये काफ़ी ज़माने से चल रहा है और कभी ये hit रहा है कभी ये miss रहा है. In this case it's a big miss, ये बात तो समझ में आ गई है. ये लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा, ये बात भी समझ में आ रही है, लेकिन अब the conversation has moved to completely different, you know, angle एक जो ले चुकी है ये. और यही मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आपकी ओपिनियन क्या है इस बारे में. 972-235-5555. Guess what? आप लोगों को पंचतारा रेस्टोरेंट के तरफ से एक गिव अवे है. आप में से एक जन को मिलेगा from Panchtara restaurant and it is Alu Kulcha ya Chole Bature that you can win, and it is also mandatory for all of you to remember ki jo bhi jeetega na unke liye main ye kehna chahti hu ki Panchtara restaurant ko Instagram pe jaake zarur follow kare aur saath mein apna punjab.ht3 ko bhi zarur follow kare. Aur aapke liye ek code hai, wo hai Fanesha, that you must use to redeem it, and one of you can win Alu Kulcha या फिर छोले भटूरे, डिपेंडिंग ऑन विच डे यू गो एट देयर्स. इट कैन बी दैट एलन लोकेशन और द फैब फ्रिस्को लोकेशन. सो वंस अगेन 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो. व्हाइल आई प्ले दिस नेक्स्ट ट्रैक, सोचिए और बताइए व्हाट्स योर टेक ऑन इट. क्लासिकल आर्ट फॉर्म, चाहे वो गाना हो डांस हो, उसमें फ्यूजन का जो ये एक एस्पेक्ट आता है, क्या आप उसे अप्रूव करते हैं या नहीं. एंड टिल देन, चांद मेरा दिल का एक अच्छा सा गाना लगाऊं मैं आपके लिए.

यू आर लिस्निंग टू फर्नीचर रेडियो 104.9 एफएम. चांद मेरा दिल जो 22 को रिलीज हुआ अनन्या पांडे एंड लक्ष्य कपूर की, ये फिल्म के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस क्लिप फ्रॉम द फिल्म विच हैज बीन इम्पॉसिबल टू मिस ऑनलाइन एंड इट इज शोइंग अनन्या पांडेज कैरेक्टर ब्लेंडिंग भरतनाट्यम विथ हिप हॉप एंड लॉकिंग और उनके को स्टार जो एक एडमिरेशन में देख रहे हैं. दिस इज जस्ट 10 मिनट्स इन टू द मूवी एंड पीपल आर सेइंग हु आर ट्राइंग टू sort of protect Ananya Pandey and the entire team. या तो यू कह लीजिए कि एक जो perspective है ये भी है कि फिल्म देखकर आपको context समझ में आएगा उसका और not to take it outside the context of the film. And ये जो dance है ये काफ़ी criticize किया जा रहा है तो इसके बारे में अगर आपकी कोई opinion है that's what I wanted to know. So clearly आप में से या तो कोई you know इस controversy के बारे में होगा कि जानते नहीं है इसीलिए you do not want to talk without knowing it well, understood and it's fair enough. या फिर दूसरे लोग होंगे जो इस मुद्दे पे ज़्यादा कुछ अपना दिमाग लगाना ही नहीं चाहते हैं. मैंने सोचा कि यार सोशल मीडिया का कुछ टॉपिक्स लेकर आया करेंगे सेगमेंट में एंड वी वुड लव टू फाइंड आउट फ्रॉम यू ऑल एंड सी इफ यू हैव एनी कॉन्ट्रीब्यूशन इन यू नो टेलिंग अस योर पर्सपेक्टिव क्योंकि हम सबकी पर्सपेक्टिव होती है और बड़ी स्ट्रांग होती है जो सोशल मीडिया पे ऐसी छलकती है कि इट समटाइम्स बिकम्स टॉक्सिक. सो वो टॉक्सिसिटी तक ना पहुँचे और यहाँ पे मैंने सोचा कि कुछ डिस्कशन करेंगे हम बातचीत करेंगे और पता करेंगे कि क्या है पर्सपेक्टिव. नाउ द एंटायर इंटरनेट इज़ ब्रूटली रोस्टिंग दिस डांस सीक्वेंस और अनन्या पांडे की एक्टिंग अपेरेंटली काफ़ी अच्छी है रही है इस फिल्म में लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है. और किसी ने तो ये भी कमेंट किया कि भरतनाट्यम इवॉल्व्ड इन 200 BCE एंड एंडेड विथ अनन्या पांडे इन 2026. क्लासिकल डांस एंथुजियास्ट एंड इवन प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस हैव जंप्ड इनटू द कमेंट सेक्शंस क्लेमिंग हर स्टिफ रोबोटिक स्टाइल ऑफ डांसिंग. अब वो कितना अच्छा करती हैं या नहीं करती हैं भरतनाट्यम वो अपने आप में एक डिस्कशन पॉइंट बन सकता है क्योंकि भरतनाट्यम एक कुछ महीने भर की प्रैक्टिस से आप नहीं सीख सकते हो. इट्स ईयर्स आफ्टर years that you learn this art और तभी आप उसमें अच्छा कर सकते हो. But this was the call of the director कि भाई वो भरतनाट्यम का कुछ एक अलग रूप लेकर आए more modern which the Gen Z's will probably appreciate and like and love. That's what they thought and therefore this dance piece probably. लेकिन अगर आपका once again कुछ अगर input रहे इसमें would love to find out from all of you. चंकी पांडे केम आउट टू सपोर्ट हिज डॉटर एंड अंडरस्टैंडेबली सो राइट. ये एक बॉइलिंग पॉइंट रीच कर चुका है ये ट्रोलिंग. आई एम श्योर शी इज गॉन इन टू अ शेल एंड इट इज डिफिकल्ट टू टेक सो मच ऑफ ट्रोलिंग ऑन अ फिल्म दैट जस्ट रिलीज राइट. तो उन्होंने अपनी डॉटर को थोड़ा सा डिफेंड करने के लिए ही क्लैरिफाइड टू द मीडिया दैट द सीक्वेंस वॉज कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड एंड वॉज नेवर मेंट टू बी ए प्योर क्लासिकल रिसाइटल. उनका कहना है कि ये सिर्फ एक रेगुलर कॉलेज कल्चरल इवेंट का एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन डांस था जिसे लोगों ने बिना कॉन्टेक्स्ट के समझने की कोशिश भी नहीं की और बस जज करना शुरू कर दिया है लोगों ने. सो लिटिल एम्पथी आई थिंक शुड हेल्प. एंड यहाँ पे चंकी पांडे की बात कर रहे थे तो व्हाई नॉट टेक यू टू दिस नेक्स्ट ट्रैक राइट हियर.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सब को थोड़ी हेल्प करती हैं, तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
10: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
11: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
12: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूंगी।
13: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
14: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant sarees, bridal jewelry, men's and kids wear.
13: Wait, itna sab aur price?
14: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
15: Main hero in hu.
16: Beta, itni der se baithe ho, homework hua?
17: Mama, koshish to kar raha hu, par samajh mein nahi aa raha.
16: रोज का सेम प्रॉब्लम।
18: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। लुमडी लर्निंग सेंटर, जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं। लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मकिनी आईएसडी स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है।
19: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 टू 13, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रांग क्रिटिकल थिंकिंग।
2: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को।
13: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फनएशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ। Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
1: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
6: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
3: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

एंड इट इज एक्चुअली थ्री पीपल इन द कपूर फैमिली जिनका अनाड़ी फिल्म के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता है. अनाड़ी एक तो राज कपूर साहब की ये फिल्म जो काफ़ी हिट रही थी, बहुत पॉपुलर हुआ था, इट्स 1959 दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. और उसके अलावा 1975 में भी एक अनाड़ी आई थी विच स्टार शशि कपूर इन द फिल्म. और फिर एक आई थी 1990s में एंड इट वॉज ऑन दिस डे इन 1993 जो फिल्म रिलीज हुई थी, उसका नाम है अनाड़ी लेडीज एंड जेंटलमैन. उसी का एक गाना मैं आप लोगों के लिए लगाने वाली हूँ विच स्टार करिश्मा कपूर. और इसका एक मैसिव साउथ कनेक्शन भी है. इट इज़ अ रीमेक ऑफ दैट यू नो तेलुगु ब्लॉकबस्टर विच वॉज इन टर्न रीमेड आफ्टर तमिल ब्लॉकबस्टर चिन्ना थम्बी. और वो 1991 में आई थी, उसके बाद वो तेलुगु फिल्म आई और सुपर डुपर हिट रही. और उन्हीं स्टार को लेकर, वेंकटेश को लेकर ही बॉलीवुड डेब्यू उन्होंने किया इस फिल्म के साथ. एंड दैट इज़ अनाड़ी दैट रिलीज्ड ऑन दिस डे. और इसीलिए ये अगला गाना मैं आप लोगों के लिए प्ले करना चाहती हूँ विच वॉज अ सुपर डुपर हिट. इनफैक्ट द एल्बम दैट मेड मिलियंस वो था आनंद मिलन का क्रेडिट. और दो गाने जो पर्टिकुलरली बहुत पॉपुलर हुए थे उनमें से एक ये गाना. लेट्स प्ले इट फॉर यू राइट हियर. आपको मुझे बताना है द name of the playback singer here. It is such an easy giveaway I'm giving you here. Ek tagda sa grocery hamper from Desi Mandi that you, it can be yours. Agar aap mujhe bataye singer ka naam, kyunki maine aapko bata diya music composer ka naam, aapko batana hai singer ka naam, lyricist ka naam Sameer, chaliye ye bhi bata diya. Bas ek baat jo reh jata hai wo hai ki bhai kaun hai singer is gaane ke. Let's hear it from you. Venkatesh and Karishma Kapoor featured in this one.

It is on this day that the film released in the year 1993. Film ka naam hai Anaadi and Karishma Kapoor and Venkatesh. And Karishma Kapoor ke liye ye turning point tha because iske pehle tak unki films nahi chal rahi thi and this was that breakout year for Karishma Kapoor and she got her due in the film industry going forward. Aur Karishma Kapoor ko bade dinon se humne kisi film mein nahi dekha tha na. Now is the chance क्योंकि जल्दी आने वाली है एक वेब सीरीज जिसका नाम है ब्राउन और ब्राउन में रीटा ब्राउन का किरदार निभाने वाली है करिश्मा कपूर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज शी बिलोंग टू द 90s और 90s में कुछ एक टिपिकल फिल्म्स जो बनी है उसमें हम उनकी एक्टिंग स्किल्स उतना देख नहीं पाए. शायद जो बेस्ट मैंने देखा उनकी एक्टिंग स्किल्स की अगर बात करूँ तो दैट वॉज जुबैदा जिसमें उनका एक अलग साइड ही दिखा एंड आई एम श्योर देर आर फ्यू अदर्स which I am not able to recall it off the cuff. Lekin just saying ki Karishma Kapoor, she definitely deserves her own web series kyunki after all hum jante hain ki Kapoor khandan ke har ek actor mein wo acting ka jo ek natural ek flair tha. तो ये सही नहीं होगा कि आज के ज़माने में जहाँ पे इतने OTT प्लेटफॉर्म से इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं उसमें अगर हम करिश्मा कपूर का नाम दोबारा क्रेडिट्स में नहीं देखते हैं तो यस करिश्मा कपूर शी इज़ गोइंग टू प्ले दिस पुलिस ऑफिसर इन कोलकाता पुलिस फोर्स इन्वेस्टिगेटिंग डिस्टर्बिंग क्राइम्स वाइल बैटलिंग हर ओन पर्सनल डीमंस और इसी का टीजर कल रिलीज हुआ है. इट इज़ गोइंग टू कम ऑन Z5. इट इज़ कॉल्ड ब्राउन एंड quite looking forward to that. इसी बात पे एक और गाना हो जाए और मैं बताना चाहती हूँ by the way, yes, I had asked a question. The name of the singer before the song even started, I got it from Prashant. Congratulations. आपको मिलता है देसी मंडी की तरफ से that तगड़ा gift hamper that I was talking about. जी हाँ वो जाता है प्रशांत को. आनंद मिलिंद के म्यूजिक में गाया था उदित नारायण ने इस गाने को. अब ये अगला गाना जो है it is in the voice of अभिजीत once again featuring करिश्मा कपूर alongside Sunil Shetty in this one. ये है गपशप गली with me too. एक और सवाल आप लोगों के लिए आ रहा है with एक और give away that I have for you.

All right, ladies and gentlemen, once again, thank you so much for tuning in. करिश्मा कपूर के बैक टू बैक गाने के बाद अब एक और गाना हो जाए और एक और ऐसी फिल्म के बारे में बात करना चाहती हूँ जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी. अगर आप तारीख भूल रहे हो आज का तो वो भी याद दिला देती हूँ, 26th of May, ladies and gentlemen. लेकिन 20 साल पहले आज ही के दिन 26th of May 2006 में एक कमाल की फिल्म रिलीज हुई थी जिसको डायरेक्ट किया कुणाल कोहली ने. और कुणाल कोहली की ये फिल्म बहुत स्पेशल है क्योंकि इस फिल्म में पहली बार हमने काजोल और आमिर खान को एक साथ पेयर्ड देखा. देखिए, हमने उनको पहले देखा है एक फिल्म में, 1997 की फिल्म में इश्क जिसका नाम था, लेकिन नॉट ऑपोजिट ईच अदर. इट वाज अजय देवगन एंड जूही चावला हु वाज स्टार्ड ऑपोजिट देम, राइट? आमिर खान एंड काजोल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो ये फिल्म वाकई में बहुत स्पेशल था एंड दिस इज द ओनली फिल्म दैट दे हैव बीन कास्टेड ऑपोजिट ईच अदर, राइट? सो ये बहुत ही स्पेशल फिल्म हो जाता है फॉर दैट रीजन अलोन. और इसीलिए ये अगला गाना जो मैं प्ले करने वाली हूँ आप लोगों के लिए इस बहुत ही पॉपुलर गाने के पीछे जो लाइंस हैं वो आप अच्छी तरह से जानते होंगे और बस वो लाइंस को ही आप लोगों से जानना चाहती हूँ मैं, ठीक है? आई एम गोइंग टू प्ले ए लिटिल बिट ऑफ द म्यूजिक ऑफ दिस गाना. इट इज सच अ पॉपुलर वन कि जतिन ललित का ये जो प्रिल्यूड है वो सुनते ही आपको गाने के लिरिक्स भी पता होंगे कि क्या कौन सा गाना मैं बताने वाली हूँ आपको. तो लेट्स लिसन टू इट एंड एक गिव अवे जो आपके लिए यहाँ पे मैं लेकर आना चाहती हूँ, इट इज़ फॉर ए रीज़न, ठीक है? इट इज़ पंचतारा की गाना और खाना जो कहते हैं ना एक साथ चलते रहना चाहिए, तो बस पंचतारा की तरफ से एक आलू कुलचे या फिर छोले भटूरे आपके नाम करने वाले हैं हम अगर आप मुझे बताते हैं. ठीक, मेरा तो कुछ इरादा बदल रहा है एक्चुअली. मैं वही बात करते करते आई थॉट लेट मी प्रोजेक्ट दिस टू यू, ठीक है? मैं आपसे कहने वाली थी कि भाई प्रिल्यूड से गाना गेस करना है. आई एम गोइंग टू चेंज दैट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई विल टेल यू द रीजन ऑल्सो. दो सिंगर्स ने इस गाने को गाया है, उन दोनों का नाम मुझे चाहिए, ठीक है? एंड आई विल टेल यू द रीजन फॉर इट. ओके, चलिए, यू लिसन टू द सॉन्ग एंड हूएवर कॉल्स मी इज द फर्स्ट कॉलर विल गेट दिस पंचतारा गिव अवे. ये फ्री गिव अवे आप लोगों के लिए आलू कुलचे या फिर छोले भटूरे. Two singers in this one, I want the name of both the singers. Film ka naam Fana, of course.

सुभान अल्लाह, दैट्स द ओनली लाइन दैट कैलाश खेर सैंग. और इस गाने के लिए उन्हें अवार्ड मिला अलॉन्ग विद शान, हु वॉज ऑल्सो हिज को सिंगर इन दिस वन. द एंटायर सॉन्ग वॉज इन शान्स वॉइस, लेकिन एक ही लाइन सुभान अल्लाह जो है वो बोला था कैलाश खेर ने, वो गाया था एक्चुअली कैलाश खेर ने. और चांद सिफारिश को फिल्म फेयर अवार्ड्स मिला. बोथ दी सिंगर्स गॉट दी अवार्ड, एंड देयरफॉर आई वॉन्टेड टू नो द नेम ऑफ बोथ द सिंगर्स एंड द गिव अवे फ्रॉम पंचतारा, यानी कि आलू कुलचे और छोले भटूरे नूतन इंजॉय करने वाली हैं. पता है आपको, पिछले गिव अवे के लिए भी नूतन ने कॉल किया था, लेकिन उनको तब नहीं मिला था, लेकिन अब मिल गया. अब बताइए, मतलब ये होती है ना किस्मत, मतलब आज लिखा ही हुआ है नूतन या बहुत सारा कुछ जीतोगे. और नूतन आपके नाम से ना मुझे नूतन जी की याद आ गई, द एक्ट्रेस, द लेजेंडरी एक्ट्रेस इन बॉलीवुड. और उनकी उनकी ग्रैंड डॉटर, यस, उनके बेटे की बेटी, उनका नाम है प्रणूतन. उन पर एक बहुत ही कमाल का गाना था, दैट्स व्हाट आई थॉट आई विल प्ले फॉर ऑल ऑफ यू एज सून एज आई फाइंड वेयर आई हैव लाइंड इट अप फॉर ऑल ऑफ यू. ऑल राइट, लेट मी सी इफ आई कैन डू इट वेरी क्विकली फॉर ऑल ऑफ यू. एंड इट इज फ्रॉम द फिल्म नोटबुक, जिसमें जाहिर इकबाल के साथ, यानी कि सोनाक्षी सिन्हाज हस्बैंड, करंट हस्बैंड जो हैं उनके, तब उनके फियांसे थे जाहिर इकबाल. एंड दैट्स द सॉन्ग आई एम गोना प्ले फॉर ऑल ऑफ यू एंड वाइंड अप माई शो फॉर टुडे.

तो हम घूम रहे थे, लेट सो के उठ रहे थे, कोई ऑफिस या कॉलेज का टेंशन नहीं था, पर आज लैपटॉप खोलते ही सब कुछ ऐसा पेंडिंग पेंडिंग सा दिख रहा और इतना बुरा लग रहा है, मैं क्या बताऊं। एक्सपेक्टेशन तो यही होती है कि लॉन्ग वीकेंड के बाद ऐसा मस्त ऐसा रिफ्रेश फील करे, नए नए जोश के साथ आए, लेकिन इस ट्यूजडे इज द न्यू मंडे का क्या करे बताइए। एक काम कर सकते हैं, आप मेरे साथ सुनते रहिए मेरा शो आफ्टरनून अड्डा, एंड आई विल इंश्योर कि आपकी लाइफ में एनर्जी और पॉजिटिविटी है ना वापस आ जाए। वैसे इन सब में एक चीज अच्छी हुई है, अगला वीकेंड जो है अब वो जल्दी से आ जाएगा। यस गाइस, किसी महानुभाव ने कहा है कि द वीकेंड आफ्टर द लॉन्ग वीकेंड इज सूनर, और वो महानुभाव कौन है मालूम? मैं ही हूँ, हाँ जी, आरजे सिमी। अब यही बचा है मोटिवेशन लाइफ में यार, तो अब यही कर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, और क्या ही करें।

हाँ जी, कौन है मेरा आपके बिना? मैं हूँ आरजे सिमी और आप सुन रहे हैं मेरा शो आफ्टरनून अड्डा। अ वेरी गुड आफ्टरनून माय देसी पीपल। आई मीन लॉन्ग वीकेंड जो है ना खत्म हो चुका है और रियलिटी ने आज सुबह सुबह अलार्म मार के उठाया है। आज ऑफिशियली तो ट्यूसडे है लेकिन फील्स पूरी मंडे ब्लूज वाली हैं जी। कल तक

हम सब लापता हैं जी। लॉन्ग वीकेंड का फीवर अभी उतरा नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं लॉन्ग वीकेंड के बाद वाली ट्रबल्स के बारे में। और ऑनेस्टली लॉन्ग वीकेंड के बाद नॉर्मल रूटीन में आना थोड़ा डिफिकल्ट तो हो ही जाता है। देखो, लाइफ में ब्रेक्स इंपॉर्टेंट है, पर उन ब्रेक्स के बाद कम बैक करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बस रीस्टार्ट कर लो, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, या बस लाइफ फिगर आउट कर रहे हो। रिमेम्बर दैट एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग टुडे, वो लोग भी जिन्होंने इंस्टा पे मस्त वेकेशन के पिक्स डाली है। हाल फिलहाल तो ये है कि ये गाना सुनते रहिए और थोड़ा मूड अपलिफ्ट कीजिए। मैं हूँ आरजे सिमी और आप सुन रहे हैं फनेशिया रेडियो 104.9 FM।

डियर सर्वाइवर्स, अगर आपको आज लग रहा है कि ब्रेन थोड़ा स्लो चल रहा है आफ्टर द लॉन्ग वीकेंड, थोड़ा बॉडी पेन है, आंखें थोड़ी स्लीपी सी हो रखी हैं, एनर्जी लो है और यू नो लास्ट वीकेंड थोड़ा याद आ रहा हो, तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। और अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास ना इसका एक इलाज है, मतलब अच्छा खाना तो हर प्रॉब्लम का ही इलाज होता है, और अगर आपको ये फ्री में मिल रहा हो तो सोचो। जी हाँ, देसी मंडी लेके आया है आपके लिए अमेजिंग ऑफर्स। मंडे और वेंसडे को अगर आप देसी मंडी में जाते हैं, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर इन टाउन, तो आपको मिलता है बाय वन गेट वन फ्री ऑन बिरयानी, नूडल्स एंड फ्राइड राइस। यही अगर आप ट्यूसडे एंड थर्सडे को जाते हैं तो आपको मिलता है बाय वन गेट वन फ्री ऑन डोसाज एंड चाट्स। और ये वीकडे के लिए है ये ऑफर, और 5 बजे से रात के 9 बजे तक कोई मिक्स एंड मैच नहीं हो पाएगा। और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं जो कि आपको स्टोर पे पता कर लेना चाहिए। मतलब मुझे तो बड़ा ही मजा आ गया यार कि मोर फ्लेवर्स एंड मोर सेविंग्स, वाई ना। देसी मंडी अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ लोकेटेड है तो मैं बता दूं कि इट्स इन लुइसविल, तो आप जाएं और इस अमेजिंग ऑफर्स का खूब सारा लुत्फ उठाएं।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
4: घर की याद नहीं आई तुझे जब से?
5: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
6: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
5: सच में बिल्कुल घर जैसा।
6: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन अर्विंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
6: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
5: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
6: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
8: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
9: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
10: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
9: कैसे?
10: पेज 3 ईटरी?
9: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
10: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
9: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
11: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
12: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG FinTax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG FinTax's advisory services.
13: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
14: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Ron believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.

0: गुड आफ्टरनून डैलस, आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो विद मी यानी कि आरजे सिमी। और अभी इस वक्त हमारे साथ है SBA लोन एक्सपर्ट। वैसे मुझसे कई बार लोगों ने एक्सप्रेस किया है कि यू नो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है फंडिंग का। और उसके लिए हमारे साथ अवेलेबल हैं मिस्टर शाहिद पंजवानी जी। हेलो शाहिद, लिसनर्स कैन हियर यू, यू आर ऑन एयर, से हाय।
1: हाय, थैंक्स फॉर हैविंग मी।
0: ओके शायद शायद आपसे एक सवाल है कि बहुत लोग जो है ना बिजनेस खरीदने का सोचते हैं, फ्रेंचाइजी स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उसके लिए बहुत ज्यादा कैश और बहुत अच्छी क्रेडिट होनी चाहिए। क्या ये सच है और आपका क्या ओपिनियन है इस पे?
1: एक्चुअली ओपिनियन नहीं, आई विल गिव द फैक्ट्स। ये एक मिथ है, काफी टाइम लोग अज्यूम करते हैं उनका ड्रीम होता है बिजनेस शुरू करना या बिजनेस खरीदना, बट देन दे जस्ट होल्ड ऑन टू दैट ड्रीम एंड अज्यूमिंग कि मुझे बहुत सारा पैसा डाउन लाना पड़ेगा या आई विल हैव टू पुट टू मच मनी आउट ऑफ इट, एंड एट द सेम टाइम क्रेडिट स्कोर भी बहुत एक्सीलेंट 750-800 स्कोर होना चाहिए। सो दैट्स नॉट द फैक्ट। आई विल टेल यू व्हाट जनरली यू कैन बाय अ बिजनेस विथ एज लो एज 10% डाउन। मैं यूजुअली हमेशा $500,000 का एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप एक बिजनेस खरीद रहे हो, चलता हुआ बिजनेस खरीद रहे हो या फ्रेंचाइज खरीद रहे हो, और आपका टोटल परचेज प्राइस, क्लोजिंग कॉस्ट, फ्रेंचाइज और फीस सब मिला के अगर $500,000 है, ऑल यू नीड टू डू इज 10-12% डाउन, 50-60K के बीच में आपको डाउन देना है और रेस्ट ऑफ द मनी कैन बी फाइनेंस्ड। क्रेडिट क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू हैव एक्सीलेंट क्रेडिट, 750-800 होने की जरूरत नहीं है। We have done loans with as low as 625-640 score पे भी हमने लोन किया है। खाली एक ही जरूरी चीज है क्रेडिट में, वो है कि नेगेटिविटी, नेगेटिव चीज या डेरेगेटोरी आइटम्स नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई कलेक्शंस है या पास्ट बैंक्रप्सी है या फोरक्लोजर्स है, वैसा कुछ ना हो। भले ही स्कोर कम हो, देन लोन कैन स्टिल बी डूएबल। If you are buying a business that does not involve real estate, one more thing that is a myth, people think कि अगर मैं property खरीद रहा हूँ या खरीद रही हूँ तो ही मुझे loan मिलेगा। If you are buying a business that does not involve real estate, you can still get a loan to buy that business.
0: Isn't that a happy news for all our listeners? और शायद जी, क्या आप एक और चीज में help कर देंगे, बताएंगे कि step by step process क्या होना चाहिए business franchisee अगर कुछ खरीदना है, कुछ start करना है हमारे listeners को? तो
1: the most important part I would say is the first step is to do the due diligence, and if you need help doing the due diligence, call us. What I mean by due diligence is ki agar aapko ek business mila hai market mein broker ke through ya direct by owner, aur aap janna chahte ho ki ye business loan ke liye qualify hoga ya nahi, at the same time what would be my down payment, what would be my interest rate, what would be my monthly payments on it, and will I even qualify for the loan to buy this business or not. We can help you with that due diligence. अगर आपको कोई business समझ में आ गया है, callers will help you कि उनसे, seller से या realtor से क्या information आपको मांगनी चाहिए और how to analyze those numbers. And we can do it for you as well as we can walk you through the process of the due diligence and crunch the numbers for you. That way, जो आपको decision लेना है कि yes, this works for me or this will not work for me, we can help you make the decision easier.
0: ग्रेट शाहिद जी, अगर हमारे लिसनर्स को आपसे कनेक्ट करना है तो व्हाट शुड बी योर कॉन्टैक्ट एंड वेबसाइट एड्रेस?
1: दे कैन रीच मी डायरेक्टली, दिस इज माय डायरेक्ट लाइन, 817-786-3338, 817-786-3338, एंड वेबसाइट इज dsbaloanexperts.com. वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, we specialize in SBA, but at the same time we can, if someone does not qualify or is not eligible for SBA ya unko non SBA loans chahiye, we can help you with those too.
0: Thank you so much Shahid ji, we'll connect with you again. Have a good day.
1: Thanks for that.
0: दोस्तों, ये सिलसिला जो है अच्छे म्यूजिक का, अच्छे सॉन्ग का, ये तो अब चलता ही रहेगा हमारे साथ, और एंजॉय कीजिए क्योंकि इसके बाद मैं लेके आई हूँ गिव अवेज फॉर यू ऑल। सो स्टे ट्यून एंड कीप लिसनिंग टू फनेशिया रेडियो 104.9 FM।

वक्त आ गया है एक अमेजिंग से गिव अवे का। जी हाँ, अगर आप ये राउंड जीतते हैं गिव अवे का, तो आपको मिलता है नियॉन कैक्टस की तरफ से $20 का डिस्काउंट ऑन डाइन इन। आई मीन, नियॉन कैक्टस इज वेरी फेमस फॉर इट्स मेक्सिकन फ्यूजन और इनके पास बहुत सारे वेजिटेरियन चॉइसेस भी हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक सवाल करूंगी और आपको जो है उसका जवाब देना है मुझे कॉल करके, और ये एक रिडल होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। रेडी? ओके। तो आज का सवाल है कि प्यास लगे तो पी सकते हैं, भूख लगे तो खा सकते हैं, और अगर ठंड लगे तो उसे जला भी सकते हैं, क्या है ये? आपको इसका नाम बताना है। जी हाँ, प्यास लगे तो पी सकते हैं, भूख लगे तो खा सकते हैं, और अगर ठंड लगे तो उसे जला भी सकते हैं। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप मुझे कॉल कीजिए एट 972-235-5555 पे। आई एम वेटिंग फॉर योर करेक्ट आंसर।

अधूरा तो आज का हमारा रिडल था, लेकिन आप सबके जवाब ने उसे पूरा कर दिया है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। आप सबके जवाब बिल्कुल सही थे। सवाल था कि प्यास लगे तो पी सकते हैं, भूख लगे तो खा सकते हैं, और अगर ठंड लगे तो उसे जला भी सकते हैं, क्या है ये? और जवाब है कोकोनट, नारियल। जी हाँ, और सबसे पहले जवाब दिया है चीनू जी ने, सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर चीनू जी। चीनू जी, आपको मिलता है नियॉन कैक्टस की तरफ से $20 का डिस्काउंट ऑन डाइन इन। और जैसा कि मैंने गिव अवे के पहले बताया कि दिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट इज वेरी मच फेमस फॉर इट्स मेक्सिकन फ्यूजन। इनके जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस से इन्होंने तैयार किया होता है, और यूज करते हैं ये फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, जबीहा हलाल ऑप्शन है इनके पास, और बहुत सारे वेजिटेरियन चॉइसेस भी हैं। और इनकी जो वाइब है ना रेस्टोरेंट की, मतलब एकदम यंग, कलरफुल, मॉडर्न, एनर्जेटिक और परफेक्ट डेस्टिनेशन है ये हैंगआउट्स के लिए, डेट नाइट्स के लिए, या फिर अगर आपको एवे चिल करना है तो। और इसके साथ है ना, इन बहुत अच्छे कॉकटेल्स और मॉकटेल्स भी सर्व करते हैं ये, और इनके हैप्पी आवर्स भी होते हैं मंडे से फ्राइडे, और इनके लिए हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल डील तो होता ही होता है। तो बिल्कुल आप लोग जाए यहां पर, इंजॉय कीजिए एट नियॉन कैक्टस। एंड फॉर गुड म्यूजिक यू हैव टू कीप ट्यूनिंग इन टू फनेशिया रेडियो 104.9 FM। मैं हूं, I'll just be back with this after this song. Yeah.

0: माइंड तू करे ब्लो, बाकी करे शाइन तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज तू है सैवेज बेबी तू है रॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ। बेबी लेट्स गो राइट नाउ, देखो मुझे वेट ना इतनी कराओ।
1: कहां गया, कहां रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहां है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को। श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर। विजिट श्रीकृष्णा.com।
4: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
5: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
6: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
7: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
3: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
2: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
8: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
2: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
8: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
2: ये क्या होता है?
8: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
9: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
10: गुडनेस इज अ ब्यूटीफुल थिंग, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.

आ गई भाई, आ गई। कहा था ना वापस आऊंगी। आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिम्मी और लेके आई हूँ आज का नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ माय शो विच इज द आफ्टरनून अड्डा। आई विल टॉक अबाउट द ट्रेंडिंग टॉपिक। जी हाँ, रणवीर सिंह वर्सेस डॉन 3 कॉन्ट्रोवर्सी जो है काफी हाईलाइटेड है आजकल, और रणवीर सिंह पे लगाया गया है नॉन कॉपरेशन डायरेक्टिव बाय फिल्म मेकर्स बॉडी विच इज FWICE। ये एक इंडस्ट्री लेवल का नॉन कॉपरेशन नोटिस है, मतलब फिल्म मेंबर्स को बोला गया है कि टेम्पररली उनके साथ काम ना करें। और ये हुआ है आफ्टर रणवीर सिंह एग्जिट फ्रॉम द मूवी डॉन 3 डायरेक्टेड बाई फरहान अख्तर। अब इस पे जो है ना सोशल मीडिया दो टीम्स में डिवाइड हो गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि रणवीर को टारगेट किया जा रहा है आफ्टर द धुरंधर कमर्शियल सक्सेस आउट ऑफ जेलेसी, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फिल्म एग्रीमेंट्स में रूल्स मैटर करते हैं, अगर एक बार आपने साइन कर दी तो फिर वर्क एथिक्स है और आपको एग्रीमेंट अगर ब्रेक हुआ है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। आपका क्या कहना है इस पर, आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं 972-235-5555 पे।

नहीं, आपका कोई कसूर नहीं है। क्या हो गया अगर आपने मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड से अपने लिए कोई डायमंड ज्वेलरी खरीद ही ली तो? उनका कलेक्शन है ही शानदार, मतलब वो इतने एलिगेंट डिजाइन्स हैं, टाइमलेस ब्यूटी है, और हर एक पीस जो है क्राफ्ट किया गया है शाइन करने के लिए, चमकने के लिए और आपको चमकाने के लिए। फ्रॉम ब्यूटिफुल रिंग्स एंड इयररिंग्स टू डार्जलिंग नेकलेसेस एंड कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल्स, आपको यहाँ पे अपना परफेक्ट पीस मिल सकता है फॉर एंगेजमेंट्स, एनिवर्सरीज, सेलिब्रेशंस, या फिर अगर आपको अपने आप को एक छोटा सा प्यारा सा कुछ भी ट्रीट देना हो तो। आप एक्सपीरियंस करते हैं अनमैच्ड क्राफ्टमैनशिप्स एट मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स एंड ब्रिलियंस टू, और ये लोकेटेड है इन फ्रिस्को, और अब तो इनके जो है मोबाइल ऐप भी आ चुका है मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स के नाम से, तो आप इसको बेशक डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए कि क्या क्या लेटेस्ट कलेक्शंस आए हैं, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या खरीदना है आपने।

मस्करी करते रहना चाहिए, यू नो बहुत जरूरी है लाइफ में एक्साइटमेंट बने रहने चाहिए। और आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आरजे सिमी को ऑन फनेशिया रेडियो 104.9 एफएम। मैं लेके आई हूँ आपके लिए माय टाइम इक्विटी के डिटेल्स और दिस इज ब्रॉट टू यू बाय सीपीए सुधीर पाई, जो कि हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज को एक स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज बनाने में। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के थ्रू रियल स्टेट अपॉर्चुनिटीज भी वो आपको एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं और बहुत सारे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी देते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए, रिटायरमेंट के लिए, या फिर सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो माई टाइम इक्विटी इज परफेक्ट सोल्यूशन फॉर यू बिकॉज दे ऑफर पर्सनलाइज सोल्यूशंस डिजाइंड अराउंड योर गोल्स। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू शुड कॉल माई टाइम इक्विटी को एट 4697021272। I'll repeat the number for you, 4697021272, या फिर विजिट कीजिए उनका वेबसाइट विच इज mytimeequity.com।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस. ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क. ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न. या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर.
3: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा.
2: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए.
4: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में.
5: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA Loan Experts. Faisla Clarity ke saath.
6: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
7: Excuse me. It's called being loyal.
6: It's called being predictable.
7: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
6: And what's so special at Neon Cactus?
7: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
6: Not bad.
7: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
6: Okay, this I didn't expect from you.
7: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
8: Ritesh, कभी सोचा है? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
9: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
8: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
9: वेट, व्हाट?
10: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
11: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
10: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
16: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
17: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
18: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
19: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m., join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a pan-India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization in DAW.
20: For booth and sponsorship contact admin at ambuj.us.

दोस्तों, ईद इज अराउंड द कॉर्नर और आई नो कि बहुत सारे प्लान्स चल रहे होंगे. एंड ईद मुबारक टू एवरीवन हु इज सेलिब्रेटिंग. एंड स्पेशल थैंक्स टू सोहेल एंड मरियम जिन्होंने जो है ये सॉन्ग रिक्वेस्ट किया और ईद के बारे में बताया. तो हम कल और बातें करेंगे ईद के बारे में. फिलहाल हम अपने गिव अवे राउंड टू में आते हैं. जी हाँ, हमारे पास दो दो गिव अवेज होते हैं दोस्तों. और आज जो है दिलीप जोशी जी का बर्थडे है, हु प्लेज द लीड एक्टर रोल ऑफ जेठालाल इन तारक मेहता का उल्टा चश्मा. तो हमारे क्वेश्चन भी उसके अराउंड ही होगा आज का. और आपको जीतने पे मिलेगा आपको फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड. तो दोस्तों एकदम तैयार हो जाइए. और जितने भी तारक मेहता के उल्टा चश्मा के फैंस है, आई नो कि आपको ये आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा. लेट्स सी. तो ये जो शो है TMKOC विच इज तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें जो जेठालाल जी हैं वो किस इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप को ओन करते हैं, उसका नाम बताना है आपको. ऑल सेट? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. यू कैन कॉल मी एट 972-235-5555 पे.

मुबारक है जी मुराद जी को, जिन्होंने सबसे पहले जो है हमारे गिव अवे राउंड का आंसर दिया था। क्वेश्चन था कि तारक मेहता के उल्टा चश्मे में जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जेठालाल जी की, उसका क्या नाम है? और उसका सही जवाब है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मुराद जी। आपको मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। और फन पिज्जा किचन है ना, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। अगर आप वेजिटेबल लवर्स हो, वेजिटेरियन हो, तो अचारी पनीर पिज्जा, यहाँ पे आपको टैंगी अचार पंच मिलता है। सॉफ्ट पनीर जो है मेल्ट करते रहते हैं एकदम स्पाइसेस के मैजिक में। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, मीट खाना पसंद करते हो, तो तंदूरी चिकन पिज्जा इज अ प्योर स्मोकी परफेक्शन स्ट्रेट फ्रॉम तंदूर टू योर टेस्ट बड्स। और अगर आप या तो आपको बोल्ड पसंद है या फिर आपको एकदम बैलेंस्ड है ना, मतलब स्पाइस लेवल्स चाहिए अच्छे से, तो आपके लिए एक स्लाइस वेट कर रहा है एट फन पिज्जा किचन। अगर आपको इस पे और जानकारी चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं funpizzakitchen.com।

ओफो, कितना कम समय बचा है मुझे आपके साथ, सिर्फ सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। यू आर लिसनिंग टू मी विच हु इज आरजे सिमी, एके आरजे देसी गर्ल, और शो का नाम है आफ्टरनून अड्डा। एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय ओमर ख्वाजा विथ हिज ट्रैफिक अपडेट्स अराउंड डैलस एंड एक्सीडेंट रिपोर्ट। अगर आप किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गए हैं या फिर किसी स्लिप और फॉल इंसिडेंट में, तो ओमर ख्वाजा जी जो है ही विल हेल्प यू विद द केस, क्योंकि यू नो कभी कभी जो है इंश्योरेंस कंपनी से डील करना काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है, आपको प्रोसेस पता नहीं होता, यू आर सो जस्ट सो लॉस्ट, और कभी कभी तो इंजरीज वगैरह भी होके रखती हैं। तो ऐसे सिनेरियो में ओमर ख्वाजा विल मेक श्योर दैट यू आर कॉम्पनसेटेड एंड यू डू नॉट हैव टू पे अनटिल एंड अनलेस यू विन द केस। अगर आप फ्री कंसल्टेशन लेना चाहें फ्रॉम अटर्नी ओमर ख्वाजा एंड हिज टीम, तो कॉल कीजिए 4693005046, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जाके डिटेल्स शेयर कर सकते हैं और डिटेल्स उनके बारे में जान सकते हैं, विच इज attorneyomar.com।

ऑल राइट डैलस और उसके स्टोर ओनर्स, जी हाँ, मैं लेके आई हूँ बहुत ही अमेजिंग न्यूज फॉर द स्टोर ओनर्स। रवि का जो समर किक ऑफ सेल है ना, इट्स बैक। जी हाँ, मार्क योर कैलेंडर्स, जून 3rd और 4th को हो रहा है ये, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। और इस साल ना ये और भी बड़ा, और भी बेहतर और भी अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि इनका पूरा का पूरा वेयर हाउस जो है एक ट्रॉपिकल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट होने वाला है। यहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रेजी डील्स, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस और फ्री गिफ्ट्स ऑल द डे लॉन्ग। अगर आपको वेंडर्स मीट करना है, यू नो, बेस्ट सेलर्स डिस्कवर करना है कि क्या है मार्केट में ट्रेंडिंग वगैरह, जिसपे आपको अच्छी से अच्छी डील्स मिल रही हो, तो आपको जरूर रवि इम्पोर्ट्स वेयर हाउस जाना चाहिए, विच इज लोकेटेड एट 11029 हैरी हाइंस बुलेवर्ड, बिल्डिंग ए, डैलस। जी हाँ, तो फिर इंतजार किस बात का है, और वक्त हो गया है मेरे यहाँ से जाने का। अब आरजे किरण आरती ही होंगी आपके लिए, बहुत सारे नए नए गाने और नए अमेजिंग शो लेके आएंगी, और मैं आपसे मिलूंगी कल 12:30 से 2:30 बजे तक विथ माई शो आफ्टरनून अड्डा। दिस इज आरजे सिमी साइनिंग ऑफ with this song.

A very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Fun Asia Radio. सुन रहे हैं आप, मैं हूं किरण आपके साथ. This is your afternoon drive time with Sunehri Kiran. Monday to Friday, 2:30 PM till 5 PM. मैं रहती हूं आपके साथ 972-235-5555 के थ्रू. आप भी रहते हैं मेरे साथ. स्टूडियो का नंबर तो डेफिनेटली अब तक तो वो कहते हैं ना, रट गया होगा आपको, लेकिन फिर भी याद नहीं तो रिपीट कर देते हैं, 972-235-5555. और आज है जी ट्यूसडे, और आप जानते हैं कि ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में हर रोज मैं आपके लिए लेकर आती हूँ एक नया फ्लेवर, कुछ नए चीजें होती हैं, नए आइडियाज होते हैं और नए नए थीम्स होते हैं. और हर ट्यूसडे को आपके लिए आता है बॉलीवुड स्पॉटलाइट. स्पॉटलाइट डाली जाती है एक ऐसे सितारे पे जिन्होंने अपने काम से हमें कुछ ऐसे बॉलीवुड के गाने

होती हैं, नए आइडियाज होते हैं और नए नए थीम्स होते हैं. और हर ट्यूसडे को आपके लिए आता है बॉलीवुड स्पॉटलाइट. स्पॉटलाइट डाली जाती है एक ऐसे सितारे पे जिन्होंने अपने काम से हमें कुछ ऐसे बॉलीवुड के गाने दिए जो मैं और आप वी एब्सोल्युटली लव लिसनिंग टू देम. बॉलीवुड स्पॉटलाइट हैज बीन अ पार्ट ऑफ ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण फॉर मेनी इयर्स. सुनहरी किरण पे मैं आपके लिए कई सालों से बॉलीवुड स्पॉटलाइट लेकर आ रही हूं और अब जो है ट्यूजडेज को आप सुनते हैं दिस बॉलीवुड स्पॉटलाइट राइट हियर ऑन आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. और आज की स्पॉटलाइट किस पे डाली है? नन अदर देन अनुष्का शर्मा.

बिल्कुल पहली फिल्म अनुष्का शर्मा की, दिस वॉज रब ने बना दी जोड़ी, और उसी फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना, शी वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट शाहरुख खान। और बताएं आपको जी, 1 May 1988 इज हर डेट ऑफ बर्थ। ना सिर्फ एक बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस हैं बल्कि फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, और शी हैज़ वन मेनी अवार्ड्स इंक्लूडिंग फिल्म फेयर्स एंड आईफा अवार्ड्स और फोर्ब्स इंडिया।

बैंड बाजा बारात से सुन रहे थे आप ये गाना। 2010 की ये एक्सप्लोसिव बॉलीवुड डेब्यू था रणवीर सिंह का अलोंगसाइड अनुष्का शर्मा। इससे पहले अनुष्का शर्मा तो डेफिनेटली काम कर चुकी थी, कौन सी फिल्म में जी, रब ने बना दी जोड़ी, और 2008 में उनकी ये फिल्म आ चुकी थी और वो बन चुकी थी हीरोइन, उनका डेब्यू हो चुका था। लेकिन रणवीर सिंह का डेब्यू हुआ इस फिल्म के साथ, और क्या कमाल का डेब्यू हुआ, क्या जोड़ी बनी रणवीर और अनुष्का की। रणवीर ने अच्छा एक मजे की आपको बात बताती हूँ कि कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं इस फिल्म के, शानू शर्मा, उन्होंने रणवीर सिंह को 7 बार कॉल किया लेकिन रणवीर सिंह ने इग्नोर कर दिया उनकी कॉल को, क्योंकि वो उन्हीं के मुताबिक वो डेट पे थे या पता नहीं क्या चक्कर था। तो शी इवेंचुअली लेफ्ट अ मैसेज अबाउट एन ऑडिशन फॉर यश राज फिल्म विच ऑफकोर्स चेंज्ड हिज लाइफ, क्योंकि फिर उन्होंने जाहिर है मैसेज छोड़ा तो रणवीर सिंह ने सुना, और जब उन्होंने सुना तो फिर उन्होंने कहा ओहो ये तो अपॉर्चुनिटी दरवाजे पे दस्तक दे रही थी, कुछ थोड़ी सॉफ्टली दे रही थी और मैंने कॉल मिस कर दी, बट लकीली देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। अभी तो खैर दोबारा से वो खबरों में है रणवीर सिंह फॉर नॉट सम वेरी गुड रीजंस, डॉन 3 की एग्जिट की वजह से ही हैज बीन इन न्यूज, और कुछ बैन की बात हो रही है। लेकिन बहरहाल आज हमारा इस वक्त फोकस है अनुष्का शर्मा, और अनुष्का ही पे पिक्चराइज कुछ गाने आपके लिए प्ले कर रही हूँ। एक जो अगला गाना है दैट इज टेकन फ्रॉम द मूवी बदमाश कंपनी। 2010 में ये मूवी आई थी जिसमें उन्होंने बुलबुल सिंह का रोल प्ले किया था। द मूवी वॉज लाइक नॉट पॉपुलर थी, इट वॉज अ गुड मूवी, लेकिन द सॉन्ग्स वर प्रीटी गुड। दिस इज अय्याशी।

My Time Equity, led by Sudhir Pai, helps individuals and families build smarter financial strategies through portfolio management, real estate opportunities, या फिर alternative investments. चाहे आप long-term wealth प्लानिंग कर रहे हो, या आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो, या फिर इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने की प्लानिंग आपकी चल रही है, माई टाइम इक्विटी आपको ऑफर करेंगे पर्सनलाइज सॉल्यूशंस दैट आर डिजाइंड अराउंड योर गोल. सो अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप माई टाइम इक्विटी को कॉल कीजिए. दे विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. दैट नंबर इज 4697021272 4697021272 इज दैट नंबर. या फिर आप उनको उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए, विच इज माई टाइम equity.com. Right now, our spotlight is on Anushka Sharma, right here on your afternoon drive time with Suneri Kiran. This is Bollywood Spotlight. Special.

0: राधा।
1: नाइस। सिस्टर, थोड़ा गर्म गा सकती है?

0: This part of our show is brought to you by AG Fintechs, one of the fastest growing tax firms in the US. Offer karte hain ji innovative financial services with untapped potential for both individuals as well as business. Aap business owner hain ya aap personalized koi cheez karwana chahte hain, AG Fintechs is here to help you. They're trusted, they're efficient, and they get you ready for your future. So you have any questions, koi sawal aapke zehen mein aaya hai, to AG Fintechs ko call kijiye 469-942-9888. 469-942-9888, or you can visit their website, which is agfintechs.com. I will see you after the break. Stay tuned.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG Fintax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
3: अरे सुनना, आज ऑफिस से आते हुए मैंने फ्रिस्को में एक नया स्टोर देखा।
4: कौन सा?
3: कैरेट लेन।
4: वेट, व्हाट? कैरेट लेन, इंडिया वाला?
3: हाँ वही।
4: थैंक गॉड, यहाँ हर रोज पहनने लायक कुछ मिलता ही नहीं था इजीली।
3: देखा, ढूंढ के दिया ना।
5: इंडियाज मोस्ट लव्ड एवरीडे ज्वेलरी ब्रांड नाउ इन फ्रिस्को, लाइट वेट रियल डायमंड्स मेड फॉर एवरीडे। कैरेट लेन, अ टाटा प्रोडक्ट।
6: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
7: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग, या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, लॉसिन ट्रैवल। फॉर नियरली 30 years, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 और विजिट lawsontravel.com।
8: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है।
9: प्लान या होप?
8: मतलब है
9: प्लान, मतलब स्ट्रेटजी, होप मतलब देखते हैं क्या होता है।
8: ओके, तो मेरा वाला होप है।
9: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं।
8: क्यों?
9: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं, स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है।
5: वेल्थ टैक्टिक, Retirement Planning with Clarity and Strategy. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
10: मामू, देखो क्या हो गया।
11: ओ, क्या हो गया?
10: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
11: ओए, जर्मन का कमाल है।
10: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
11: ओए, नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623, कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
5: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
12: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी, पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
13: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है, और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 1234646611 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाएं।
14: Astrology readings for guidance only and results may vary.
15: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
16: Hi, this is Akshay Kumar, and you're listening to FunAsia Radio.
17: डालस की धड़कन 104.9 FM FunAsia Radio

You tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. मैं हूं किरण आपके साथ. This is your afternoon drive time with Sunehri Kiran. We are listening to Bollywood Spotlight. Anushka Sharma पे आज डाली है Spotlight. कुछ उन्हीं के ऊपर पिक्चराइज्ड खूबसूरत गाने आपके लिए प्ले कर रही हूं. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं जी, श्री कृष्णा ज्वेलर्स एक ऐसी जगह है जहां ज्वेलरी सिर्फ एक एक्सेसरी नहीं है, बल्कि इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, एलिगेंस एंड टाइमलेस ब्यूटी. क्लासिक गोल्ड डिजाइन आपको पसंद है, या आपको स्पार्कलिंग डायमंड ज्वेलरी पसंद है, या फिर आप ट्रेडिशनल इंट्रिकेट कुंदन का काम पसंद करते हैं, या फिर स्टनिंग पोल की कलेक्शन आप देखना चाहते हैं या चाहती हैं, हर पीस इज क्राफ्टेड टू सेलिब्रेट the special moment that you are going through, that you are having. So, Shri Krishna Jewelers, zarur visit kijiye. Unki nayi location operate kar rahi hai ab Frisco mein. Their address is 13145 Suite 220 Main Street, Frisco 75035. Shri Krishna Jewelers, 1967 se aapke liye jewelry bana rahe hain, jo ke aapke cherished moments ko bana deti hai aur bhi zyada खूबसूरत, जैसे कि ये गाना.

अनुष्का शर्मा पे डाली है हमने आज बॉलीवुड स्पॉटलाइट में स्पॉटलाइट। कुछ अनुष्का पे पिक्चराइज्ड खूबसूरत गाने आपके लिए प्ले कर रही हूँ। अच्छा जी, रब ने बना दी जोड़ी से जो करियर का आगाज किया अनुष्का ने, तो फिर अभी जो लास्ट उनकी फिल्म आई थी वो आई थी एज अ कैमियो, उन्होंने अपेयरेंस दी थी कला मूवी में और उसकी वो को प्रोड्यूसर भी थी। उसके दरमियान कोई 15-20 फिल्में उनकी रिलीज हुई, जैसे कि बदमाश कंपनी, बैंड बाजा बारात, लेडीज वर्सेस रिकी बहल, जान जब तक है जान, मातृ की बिजली का मंडोला जिसका ये गाना आप अभी सुन रहे थे, पीके, NH10, ओ माय गॉड NH10, ना सिर्फ ये कि वो उसमें लीडिंग लेडी थी बल्कि शी वाज आल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी एंड आई एब्सोल्युटली वाज, वो जैसे होते ना कुछ मूवियां देख के आप शॉक हो जाते हो आप, मतलब आई डोंट नो व्हाट आई वाज फीलिंग, इट वाज इट जस्ट फ्लैबगैस्टेड मी, आई डिडंट नो व्हाट टू से। बहुत ही कमाल का काम किया था अनुष्का ने। एक हाईवे पे जा रहे होते हैं और किस तरह से वो एक ग्रुप के दरमियान फंस जाते हैं और फिर क्या होता है, दैट इज़ द एंटायर थीम ऑफ दैट मूवी। अच्छा जी, तो ये तो हुई ये बात और उसके आगे भी बहुत सारी फिल्में थी। तो अभी जब हम पीके की बात कर रहे हैं जो कि 2014 में आई थी, जिसमें उन्होंने जग्गू साहनी यानी कि जगत जननी जग्गू साहनी का रोल किया था, उसका ये गाना आपके लिए प्ले कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग्स, दिस इज चार कदम।

पी के फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना, और अनुष्का शर्मा, आमिर खान और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत पे पिक्चराइज. दिस वॉज एन एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल सॉन्ग. द फिल्म वॉज क्वाइट इंट्रीगिंग, बड़ा मजा आया था फिल्म देख के. और अब आगे बढ़ रही हैं जी, मैं आपको लेके जा रही हूँ ब्रेक की तरफ. ब्रेक पे ले जाते हुए आपको बताऊं कि इंडिया बाजार, जो कि फोर्ट वर्थ में लोकेटेड है, आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर. इंडिया बाजार सबसे पहले तो वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जो कि ऑथेंटिक इंडियन ग्रोसरीज आपके लिए प्रोड्यूस कर लेके आते हैं. फ्रेश प्रोड्यूसर्स, स्पाइसेस, स्नैक्स और जो आपके डेली देसी एसेंशियल्स जो हमारे होते हैं ना, वो सब के सब आपको इंडिया बाजार में मिलेंगे. दे आर लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड है ये तो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि अगर आप ये ग्रोसरी हैम्पर जीतना चाहते हैं, यू लिव इन केलर, फोर्ट वर्थ, हर्स्ट, हैसलेट, तो आप मुझे कॉल कीजिए 972-235-5555 पे और मुझे बताइए कि इंडिया बाजार, जो कि फोर्ट वर्थ में लोकेटेड है, उनका पूरा एड्रेस क्या है जिप कोड के साथ, और जीत लीजिए ये स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर जो कि लेके आया है इंडिया बाजार आपके लिए. तो 972-235-5555 नंबर है स्टूडियो का, कॉल कीजिए और बताइए वंस अगेन द स्पेशल द एड्रेस ऑफ इंडिया बाजार और जीत लीजिए ये स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर. 972-235-5555.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग। देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
2: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
3: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
2: K2 ड्राइव मतलब
3: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है। लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
2: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
3: 100%
0: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402। Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
4: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
5: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
4: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
6: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
7: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
8: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
9: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadoo? Dhuaan, dhuaan. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? Kabhi padhai, to kabhi naukri ki chinta. Zindagi ke raaste dhundle ho gaye hoon. To waqt hai sahi disha ka.
10: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
11: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
12: सब कुछ साफ रख सकते हो,
13: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
14: क्योंकि ये कौन बोला?
13: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
15: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
0: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
16: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा page 3 में होना मेरी गारंटी है।
0: कैसे?
16: page 3 eatery?
0: No, not another restaurant again.
16: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
0: मतलब great food, great drinks, and great company. यानी कि मैं।
17: page 3 eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
18: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
19: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
0: इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
3: मैं हीरो।
1: Oh,
12: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.
20: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM।

All right, you tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. Thank you so much for connecting with me this afternoon. This is your afternoon drive time with Sunehri Kiran. Giveaway लेकर आई थी आपके लिए और ब्रेक पे जाते हुए और इस गाने से पहले आपसे पूछा था सवाल कि इंडिया बाजार जो कि फोर्ट वर्थ में लोकेटेड है उसका पूरा एड्रेस बताइए और जीत लीजिए ये स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर जो इंडिया बाजार आपके लिए लेकर आया है. आप सबकी फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया. और हमारी जो लकी विनर है आज की वो है जी कैथी पैरक. कैथी कॉन्ग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. दो दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ लोकेशन पहुंचाने के लिए और उसके बाद आपके पास 5 से 6 दिन का टाइम है टू गो टू द इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ लोकेशन विच इज लोकेटेड एट द करेक्ट एड्रेस 5152 क्वाड्रंट वे इन फोर्ट वर्थ. जाइए और अपने इस ग्रोसरी हैम्पर को अवेल कीजिए. एंजॉय योर देसी ग्रोसरी शॉपिंग एज वेल एज विजिटिंग इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया बहुत बहुत शुक्रिया. फनी जैसे तरह के बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेकर आता है. ऑल यू हैव टू डू इज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड. आई हैव वन मोर गिव अवे फॉर यू बट दैट विल बी आफ्टर द सॉन्ग.

ऑलराइट जी, स्पॉटलाइट में हमने डाली है स्पॉटलाइट अनुष्का शर्मा पे. कुछ खूबसूरत गाने अनुष्का शर्मा पे पिक्चराइज्ड आपके लिए प्ले कर रही हूँ. बोर्न इन अयोध्या एंड रेज्ड इन बैंगलोर, अनुष्का शर्मा हैड हर फर्स्ट मॉडलिंग असाइनमेंट फॉर द फैशन डिजाइनर वेंडल रॉड्रिक्स. ये 2007 की बात है. उसके बाद शी मूव टू मुंबई टू परस्यू अ फुल टाइम करियर एज अ मॉडल. उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू शाहरुख खान के ऑपोजिट किया फॉर द टॉप ग्रोसिंग रोमांटिक film of the year Rab Ne Bana Di Jodi, that was in 2008, and she rose to prominence with the roles like Yash Raj ki Band Baja Barat aur usi ke saath Jab Tak Hai Ja. Band Baja Barat 2010 mein aayi thi, Jab Tak Hai Ja 2012 mein aayi thi. Meri favorite film unki aaj tak Band Baja Barat hai. I absolutely love that movie. Bittu Sharma unko bahut zabardast Ranveer Singh ne compliment kiya, aur Ranveer ki to khair wo pehli film thi जबकि अनुष्का की वो दूसरी तीसरी फिल्म थी. एंड बोथ ऑफ देम कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर ब्रिलियंटली एंड द स्टोरी लाइन वाज डिफरेंट, इट वाज यूनिक, इट वाज समथिंग यू नो जो हमने नहीं देखी हुई थी. और मुझे उनकी फिल्म ये वाली, उनका रोल भी मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद है, बैंड बाजा बारात का. आप मुझे कॉल करके बताइए कि आपको अनुष्का शर्मा का कौन सा रोल पसंद है, क्योंकि ये आ रहा है आपके लिए कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण, ब्रॉट टू यू बाय द फ्लेवर लाउंज. दिस इज योर चांस टू विन दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी. और आप जो है फ्लेवर लाउंज से ये जीत सकते हैं. दे आर लोकेटेड ऑन प्रिस्टन रोड इन फ्रिस्को. लेकिन डाइन इन ओनली ऑप्शन है जी. इफ यू विन यू हैव टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड डाइन इन एंड एंजॉय योर दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी. आपको ये जीतने के लिए क्या करना है, अगर आप पिछले एक महीने में ये गिव अवे जीत चुके हैं फनेशिया के किसी गिव अवे पे, तो काइंडली एक महीने का इंतजार कीजिए. यू कैन ओनली बी अ विनर वंस अ मंथ. और लेकिन कॉन्वर्सेशन कॉर्नर में आपको बिल्कुल पार्टिसिपेट कीजिए, बस बता दीजिए कि आप जीत चुके हैं और आपका नाम विनर्स लिस्ट में ना डाला जाए. अच्छा जी, क्योंकि दे विल प्रोबेबली नॉट ऑनर इट इफ यू आर रिपीटिंग इट इन बिटवीन अ मंथ. सो मुझे कॉल कीजिए 972-235-5555 और कॉन्वर्सेशन कॉर्नर में विद सुनहरी किरण मुझे बताइए कि अनुष्का शर्मा का फेवरेट रोल आपका कौन सा रहा, जैसे कि मेरा बैंड बाजा बारात का रहा. विच वन इज योर अनुष्का शर्मा's फेवरेट मूवी? वंस अगेन 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो.

और अजी फ्लेवर लाउंज की तरफ से आया था आपके लिए ये दाल मखनी या फिर धाबा स्टाइल चिकन करी. यू हैड द चांस ऑफ विनिंग दिस. फ्लेवर लाउंज लोकेटेड ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को. सवाल आपसे पूछा, सवाल क्या बात ही कर रही थी कि बताइए कि अनुष्का शर्मा की आपका कौन सा फेवरेट रोल है या कौन सी फेवरेट फिल्म है. और आप सबकी फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया. कुछ हमने एक दो ऑन एयर ली और उसके बाद ऑफ एयर बिकॉज गाना चल रहा था. तो श्री का कहना है सुई धागा, निराली का कहना है रब ने बना दी जोड़ी, संजय ने हमें बताया कि जी मुन्ना भाई MBBS में वो थी तो नहीं लेकिन एक सीन था जहां पे संजय दत्त जो है वो पहली बार ग्रेसी सिंह से मिलते हैं और वहां पे पीछे वॉल पे अनुष्का शर्मा का पोस्टर लगा है. मुझे ये बात मालूम नहीं थी संजय, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी दैट. अगली बार मैंने वो फिल्म देखी तो मैं इस बात को जरूर याद रखूंगी. गौरवी आपने एक ऐसी फिल्म मुझे बताई जो कि मेरी लिस्ट पे भी अनुष्का शर्मा की टॉप टू टॉप थ्री लिस्टों में होती है एंड दैट इज NH10. NH10 एक अजीब सी फिल्म थी. जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रही थी NH10 के बारे में कि थ्रिलर फिल्म थी जिसमें अनुष्का शर्मा थे और किस तरह से वो एक नेशनल हाईवे NH10 नेशनल हाईवे 10 पे होते हैं दैट कनेक्ट्स दिल्ली टू द टाउन ऑफ फजिलका और वो हरियाणा से होके गुजरती है और फिर कैसे वो वहाँ फंस जाती हैं और क्या क्या होता है उनके साथ. दैट इज द स्टोरी ऑफ NH10. आप सबकी फोन कॉल्स का और पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया. और आज के हमारी जो विनर हैं वो हैं निराली कपाटिया. निराली कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. हमें दो दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर फ्लेव लाउंज पहुंचाने के लिए एंड देन यू विल हैव 5 to 6 डेज टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल योर दाल मखनी या फिर धाबा स्टाइल चिकन करी. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया एज ऑलवेज बहुत बहुत शुक्रिया. दैट वॉट मैटर्स मोस्ट इज योर पार्टिसिपेशन. फानीजा इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए ऑलमोस्ट हर शो में लेके आता है. थैंक यू.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
8: कौन सा?
7: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोल की भी है.
8: अरे सारे तो सेम है.
7: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
8: ओ हाँ, ये तो अलग है.
9: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
10: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
15: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
16: अरे यार, डालस में पंजाब?
13: बिल्कुल, चंडीगढ़ वाले, जहाँ बटर चिकन भी असली और नान भी तंदूर से गर्मा गर्म.
17: From buttery curries and fresh naan to street style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
13: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.scodialcpa.com.
18: Chicken banana.
19: चिकन बनाना?
20: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट.
17: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
21: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
22: Calculating route, rerouting.
21: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
22: Look
0: लोकेशन अपग्रेडेड नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ
1: क्यों
0: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ
22: अच्छा तो सीधा वही ले चलो
23: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
0: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
24: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.
25: कितने आदमी थे?
26: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

104.9 FM फनीशर रेडियो सुन रहे हैं आप. बॉलीवुड स्पॉटलाइट आज आपके लिए लेकर आई हूँ. एवरी ट्यूसडे लेकर आती हूँ ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. बॉलीवुड स्पॉटलाइट में स्पॉटलाइट डालते हैं एक ऐसे सितारे पे जिन्होंने हमें कुछ ब्यूटीफुल गाने दिए, बॉलीवुड में कुछ ब्यूटीफुल काम किया उन्होंने. और आज की स्पॉटलाइट डली है अनुष्का शर्मा पे. और जी, बातें बहुत सारी हुई उनकी, गाने भी मैंने बहुत सारे प्ले किए. दो तीन गाने और लाइंड अप हैं और उसके बाद हमारा सेगमेंट ये खत्म हो जाएगा. आपको बताते चलें कि कुल मिला के अनुष्का शर्मा ने 80 नॉमिनेशंस पाई हैं अपने करियर में फॉर डिफरेंट अवार्ड्स, चाहे वो फिल्म फेयर अवार्ड्स हों, चाहे वो यू नो आईफा अवार्ड्स हों, स्क्रीन अवार्ड्स हों, स्टार गिल्ड अवार्ड्स हों. 80 में से 34 टाइम्स अनुष्का शर्मा हैज वन दीज अवार्ड्स. साथ आपको ये भी बताऊं कि 2009 से जो उनकी जर्नी शुरू हुई, रब ने बना दी जोड़ी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड की नॉमिनेशंस पाई उन्होंने, बेस्ट एक्ट्रेस एज वेल एज बेस्ट फीमेल डेब्यू. और इसी के साथ फॉर बैंड बाजा बारात फॉर फिल्म फेयर शी वॉज वंस अगेन नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, जबकि जीती नहीं, आईफा के लिए वो बेस्ट एक्ट्रेस जीती. हॉटेस्ट पेयर विद रणवीर सिंह भी उन्होंने जीता आईफा अवार्ड में फॉर 2011 बैंड बाजा बारात के लिए. लेडीज वर्सेस रिकी बहल के लिए भी उन्होंने नॉमिनेशंस पाई. जब तक है जहां के लिए बहुत सारी नॉमिनेशंस मिली उन्हें. फिल्म फेयर अवार्ड्स में उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की नॉमिनेशन मिली. बाकी बहुत सारे डिफरेंट अवार्ड्स में नॉमिनेशंस पाई. पीके वाज अनदर मूवी दैट गार्नर्ड हर अ लॉट ऑफ नॉमिनेशंस. और NH10 सबसे ज्यादा करियर में शायद जितनी नॉमिनेशंस उन्हें मिली होंगी वो NH10 मूवी के लिए मिली. उसके बाद दिल धड़कने दो के लिए नॉमिनेशंस पाई, सुल्तान के लिए, ए दिल है मुश्किल, परी एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म आई थी, इट वाज अ हॉरर मूवी जिसमें उन्होंने जो है प्रोड्यूस भी किया था उस फिल्म को. एंड मैंने वो मूवी देखी थी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वॉच, जरूर देखिए. उस मूवी के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस की नॉमिनेशन मिली, साथ ही साथ फेवरेट मूवी एक्टर फीमेल की नॉमिनेशन मिली एंड मैनी मोर. सुई धागा मेड इन इंडिया ये एक फिल्म आई थी वरुण धवन के साथ उनकी, विच गार्नर्ड हर अ लॉट ऑफ नॉमिनेशंस एज वेल. और उसी के साथ बुलबुल उन्होंने एक OTT बेस्ड वेब सीरीज बनाई थी जिसके लिए उन्होंने बेस्ट फिल्म वेब ओरिजिनल की नॉमिनेशन पाई. अच्छा, अभी सुई धागा का एक गाना मेरे पास आपके लिए लाइंड अप है. और उससे पहले बात हो रही थी NH10 मैं आपके लिए गाना, हाँ जी, NH10 का ही गाना आपके लिए प्ले करने लगी हूँ. दिस इज संग बाय कनिका कपूर. NH10 में बहुत पसंद किया गया अनुष्का शर्मा के काम को. आई एम पर्सनली अ फैन ऑफ NH10. दिस इज टेकन फ्रॉम छिल गए नैना.

एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट मूवी NH10 अगर आपने अब तक नहीं देखी तो जरूर चेकआउट कीजिए. यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लाइक इट. लेकिन कोई फन, बहुत ज्यादा फन मूवी नहीं है जी, जरा सीरियस सी मूवी है. परेशान भी हो सकते हैं आप उसे देख के, इसीलिए थोड़ा सा यू नो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही खूबसूरत उनकी फिल्म आई सुई धागा विद वरुण धवन, जिसमें यू नो देयर वाज अ स्ट्रगल ऑफ कपल्स लाइफ और किस तरह से वो अपना करियर बनाते हैं और अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं. बहुत मजे की फिल्म. उसका एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, उस गाने को लगाते हुए आपको बताएं कि जो है एक्चुअली पहले गाना सुनते हैं और उसके बाद मैं आके आपको चंद एक और बातें बताती हूँ. दिस इज टेकन फ्रॉम द मूवी सुई धागा.

सुई धागा फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना। 2018 में रिलीज हुई ये फिल्म। दिस वाज अ हार्टवार्मिंग ड्रामा चैंपियनिंग सेल्फ रिलायंस एंड लोकल क्राफ्ट्समैनशिप। और जो फिल्म थी दैट फॉलोज अ स्मॉल टाउन कपल जो लॉन्च करते हैं अपना गारमेंट बिजनेस अगेंस्ट ऑल ऑड्स। और कहा जाता है कि दिस वाज इंस्पायर्ड बाय द गवर्नमेंट्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। और सेवरल बिहाइंड द सीन डिटेल्स इसके बारे में जब बन रही थी फिल्म तो अवेलेबल की गई थी। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको सुई धागा की बताऊं कि वरुण धवन जो थे ही स्पेंट अ फुल मंथ लर्निंग टेलरिंग वाइल बोथ ही एंड अनुष्का शर्मा स्पेंट 4 days वर्किंग इन अ टेक्सटाइल फैक्ट्री टू अंडरस्टैंड द स्मॉल स्केल बिजनेस। यानी कि पूरे होमवर्क के साथ उन्होंने की थी अपनी इस फिल्म की तैयारी। और सुई धागा के रिलीज होने के बाद रिलीज हुई अनुष्का शर्मा की एक दो और कमाल की मूवीज, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब उसके बाद बस ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कि अनुष्का वॉज प्रॉबली साइनिंग ऑफ फ्रॉम द मूवीज। शी वर्कड इन जीरो, गेव अस सम ब्यूटिफुल सॉन्ग्स इन जीरो। ऑल्दो मुझे जीरो मूवी बहुत ज़्यादा बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन गाने उस मूवी के बहुत अच्छे थे। सो जीरो मूवी के साथ ये गाना, और फिर कला मूवी में उन्होंने एक कैमियो दिया था और साथ ही साथ वो उसकी को प्रोड्यूसर थी। इन दोनों गानों के साथ करने वाले हैं, फिल्मों के गानों के साथ करने वाले हैं हम बॉलीवुड स्पॉटलाइट ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण का रैप अप।

और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बस इस आखिरी गाने के साथ इस सेगमेंट का रैपअप कर रहे हैं जी. ये गाना टेकन फ्रॉम द मूवी कला. कला मूवी में कैमियो अपीयरेंस दिया था अनुष्का शर्मा ने, और उसी के साथ वैसे तो इस मूवी में तृप्ति डिमरी थी, लेकिन मूवी वॉज को प्रोड्यूस्ड बाय अनुष्का. कुछ बहुत बेहतरीन फिल्में अनुष्का ने को प्रोड्यूस की हैं या प्रोड्यूस की हैं, कला वॉज डेफिनेटली वन ऑफ देम. सो लेट्स मूव ऑन टू दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग. दिस इज हम सब का फेवरेट, घोड़े पे सवार.

0: is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में। रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
3: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco. Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। AG फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 4253954318 और विजिट agfintax.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद AG फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
4: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
5: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
4: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
5: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
3: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटिन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को। कॉल 972-666-1181। मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ।
6: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
7: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
6: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
7: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ।
3: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है, क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट। नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम। कॉल 1-800-400-9468। Zeno क्रेडिट रिपेयर, फिक्स योर स्कोर, फिक्स योर लाइफ। Zeno क्रेडिट रिपेयर डज नॉट गारंटी रिजल्ट्स। यू हैव द राइट टू डिस्प्यूट इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन योर क्रेडिट रिपोर्ट योरसेल्फ, फ्री ऑफ चार्ज। सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद अ 3-डे राइट टू कैंसिल।
8: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to karna hi padega, madam.
11: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
13: हाय, दिस इज शर्वरी, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।

0: सुन रहे हैं आप 104.9 FM Financial Radio. This is your afternoon drive time with Sunehri Kiran. It is time now to connect you with the URA Debt Relief Segment. हमारे साथ मौजूद हैं अमन जी, जो हमें बताएंगे कि URA Debt Relief Segment आपको कैसे हेल्प कर सकता है इन मेकिंग श्योर योर डेट इज अंडर कंट्रोल. लेट्स वेलकम हिम ऑन द एयरवेव्स ऑफ फाइनेंशिया. गुड आफ्टरनून अमन जी, हाउ आर यू डूइंग?
1: गुड आफ्टरनून फाइनेंशिया सुनने वाले सभी लिसनर्स को URA और अमन की तरफ से नमस्कार. सो दोस्तों, ये महीना तो बाय बाय कहने को तैयार है, लेकिन अगले महीने वो गलती हम सब लोग ना करें जो इस महीने या उसके पिछले या उसके पिछले साल की थी, यानी कि मिनिमम पेमेंट. हम क्रेडिट कार्ड की जब स्टेटमेंट आती है तो आंखें बंद करके क्रेडिट कार्ड की मिनिमम देने में लग जाते हैं, लेकिन मिनिमम पेमेंट से आपका नुकसान नंबर वन की हाई इंटरेस्ट, 40% आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जिसके कारण आपका क्रेडिट कार्ड का कर्जा कभी उतरता ही नहीं है. दूसरा नुकसान ये है कि अगर आप मिनिमम पेमेंट पर टिके रहते हैं तो की पेइंग मिनिमम पेमेंट, जिससे आपका डेट टू इनकम रेशियो इंप्रूव नहीं होता और उसके कारण आपका स्कोर कम होना शुरू हो जाता है. और अगर आप क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट दे दे के परेशान हो चुके हैं, क्रेडिट कार्ड का कर्जा नहीं उतर रहा है, तो जस्ट कॉल अस, URA को कॉल कीजिए. ये बैंकरप्सी नहीं है, ये सिंपल स्टेट सेटलमेंट है, जिससे आपका डेट टू इनकम रेशियो इंप्रूव होगा, क्रेडिट कार्ड का कर्जा उतर जाएगा और वो भी इंटरेस्ट फ्री और आधे से ज्यादा कर्जा माफ हो जाएगा. ना सिर्फ आपका क्रेडिट कार्ड, बल्कि अगर आपका पास कोई पर्सनल लोन भी है, जैसे पर्सनल लोन हम लोग कोई यूरोप ट्रिप के लिए लेते हैं या घर की रेनोवेशन के लिए लेते हैं या किसी बच्चे की शादी के लिए पर्सनल लोन लिया है, तो उसको भी आप नेगोशिएट करके आधे से ज्यादा माफ करवा सकते हैं. या फिर दूसरी सिचुएशन है कि गाड़ियों का लोन, जो गाड़ी रीपोजेस हो गई है या गाड़ी टोटल हो गई है, लेकिन अब गाड़ी टोटल हो गई, गाड़ी तो गई, अब इंश्योरेंस ने आधा क्लेम अप्रूव किया, आधा आपको पे करना है, तो जो आधा आपको पे करना है उसमें से भी आधा माफ करवाया जा सकता है. या फिर गाड़ी अगर रीपोजेस हो गई है बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट, वो जो लोन आपके सर पर है उसको भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं. तो इसलिए मिनिमम पेमेंट आंखें बंद करके देते रहेंगे तो वो इट्स गोना बी टेक 30 years. और ये आपकी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट के ऊपर लिखा है कि अगर आप पे करते हैं मिनिमम पेमेंट तो 15, 20, 25, 30 साल लगेंगे. तो अगर आप 25-30 साल तक मिनिमम पेमेंट पर रहना चाहते हैं, बी माई गेस्ट. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का कर्जा उतर जाए और आप डेट फ्री हो जाए, ताकि आपको होम लोन इजीली मिल जाए, गाड़ी का लोन आराम से मिल जाए और आप डेट फ्री हो जाए, तो कॉल कीजिए URA को. हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914. और अगर आप मुझसे सीधी बात करना चाहते हैं, कॉल मी डायरेक्टली ऑन माई सेल फोन 9167763555 9167763555. एक बार फिर से 9167763555. और हमारी वेबसाइट है www.ura.org. तो फिर मिनिमम पेमेंट से पहले इस कॉल जरूर कीजिएगा, अगले महीने वो गलती नहीं करनी है.
0: थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस दिस आफ्टरनून अमन जी. वी विल टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम.
1: थैंक यू.
0: यू हैव अ गुड वन.

0: तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे गलत मत समझना, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: नहीं सिर्फ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा।

अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर देर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो ऐसी सिचुएशन कैन बी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल एंड यू रियली डोंट वांट टू डील विद द इंश्योरेंस कंपनी, द लीगैलिटी, द पेपर वर्क एंड एवरीथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद इट योरसेल्फ. आपको एक अटर्नी की जरूरत है जो आपके लिए आपका केस फाइल करें, एंड दैट अटर्नी इज अटर्नी उमर ख्वाजा. नॉट ओनली विल दे हेल्प यू फाइट योर केस, दे विल हेल्प यू गेट द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको कुछ नहीं पे करना अंटिल यू विन. सो फॉर फ्री कंसल्टेशन, अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, समवन you know is going through such a situation, this is the number for free consultation. Attorney Umar Khwaja, 469-300-5046. 469-300-5046 is their number. Ya phir unki website visit kijiye, which is attorneyumar.com. Aur ji, while I was telling you about Attorney Umar Khwaja, main soch rahi thi ki aapko traffic ki bhi update saath hi deti chalun, kyunki usi cheez se related hain bahut sari cheeze. Aur is waqt jo best news hai wo ye hai ki traffic mein मुझे कोई इंसिडेंट राइट नाउ रिपोर्ट हुआ हुआ नजर नहीं आ रहा. देयर इज नथिंग दैट आई कैन सी ऑन द रोड्स ऑफ डैलस राइट नाउ, व्हिच इज एन अमेजिंग न्यूज. आफ्टर दिस सॉन्ग आई विल वी विल टॉक अबाउट वेदर, करेंसी एज वेल एज गोल्ड प्राइस अपडेट. बने रहिए मेरे साथ, बहुत कुछ अभी आपके लिए बाकी है इन द नेक्स्ट 14 मिनट्स दैट आई एम हियर विद यू टिल 5 PM.

ट्यूसडे मई 26 4:49 PM इन द स्टूडियो. और इस वक्त मौसम कैसा है जी? सिटी ऑफ मिकिनी में इस वक्त है 75 degrees. इट फील्स लाइक 75 एज वेल. बारिश हो रही है, पार्टली दिन तो पार्टली सनी पार्टली क्लाउडी रहा. 50% चांस यानी कि कुछ जगहों पे बारिश हुई कुछ जगहों पे नहीं हुई. हाइज जो हैं वो मिड 80s में रहे, जबकि शाम रहेगी पार्टली क्लाउडी. इन द इवनिंग अ चांस ऑफ थंडर स्टॉर्म्स और उसके बाद जी अ चांस ऑफ शावर्स इन द इवनिंग. और मिड नाइट के बाद भी मौसम जो है वो कुछ अबर आलूद और बारिश वाला ही रहने वाला है. लोज जो है वो अपर 60s में होने वाले हैं. इसी के साथ जब इतनी बारिश होती है तो पोलन काउंट थोड़ा सा कम चला जाता है. सो पोलन काउंट आज का है 6.3 विच इज मीडियम एंड इट इज ऑफकोर्स गुड. यूवी इंडेक्स अलबत्ता इज स्टिल 9. तो अगर आप बाहर हैं तो सूरज जितनी तेज है जी भले बादल हैं लेकिन फिर भी अपने सनस्क्रीन हैंडी रखिए. कीप योरसेल्फ्स हाइड्रेटेड. सनराइज आज का हुआ 6:20 AM पे जबकि आज का सनसेट होगा 8:26 PM. और इसी के साथ कल का भी आपको बताऊं कि कल भी मौसम कुछ ऐसे ही बारिश का सा रहेगा. पार्टली सनी पार्टली क्लाउडी, चांसेस ऑफ शावर्स, थंडरस्टॉर्म्स इन द मॉर्निंग. और 70 डिग्रीज जो हैं वो हाइज अपर हाइज अपर 70s तक हाइज रहेंगे जबकि शाम भी क्लाउडी रहेगी. फिर थंडरस्टॉर्म्स और शावर्स जो हैं वो लेट इवनिंग में होंगे और मिड नाइट तक जाएंगे और लोज जो हैं वो आपके अपर 60s तक रहेंगे. सो दैट इज योर वेदर फोरकास्ट दैट आई हैव फॉर यू टुडे.

एंड विद दैट इट इज टाइम नाउ टू गिव यू द गोल्ड प्राइस अपडेट. इस वक्त है जी गोल्ड प्राइस पर आउंस $4,507.47, जबकि एक ग्राम सोने की कीमत इस वक्त है $144.92. कल की नस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में $2.06 की कमी हुई, जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $64.01 की कमी हुई. दैट वॉज फ्रॉम goldprice.org एंड दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू वेयर योर यू नो फाइनेंस मैटर्स राइट हियर ऑन सुनहरी किरण. अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि देर इज नो इंसिडेंट्स ऑन द रोड्स ऑफ डालस, बट राइट नाउ अभी एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है जो आपको बताती हुई आपसे विदा लूंगी. दैट इज रिपोर्टेड एट IH-30 टूवर्ड्स जिम मिलर रोड ईस्ट बाउंड, जिसकी वजह से वन लेन इज ब्लॉक्ड राइट नाउ. द सिवेरिटी ऑफ द इंसिडेंट इज रिपोर्टेड हाई. तो अगर आप यहां पहुंचने वाले हैं तो चूंकि अभी रिपोर्ट हुआ है, लॉट्स ऑफ बैकअप विल बी पाइल्ड अप हियर, सो बी केयरफुल, बी विजिलेंट, ड्राइव सेफ, हैव अ लवली रेस्ट ऑफ योर इवनिंग. आई विल सी यू टुमारो राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण, 2:30 PM till 5 PM. टिल देन हैव अ गुड वन.

जी हाँ लिसनर्स, ये वर्ड जो है रेजिलियंस, इसके पीछे बहुत शक्ति है. रेजिलियंस इज द टाइम व्हेन यू गेट अप एंड यू कम बैक इन ऑल सेटबैक्स विद ट्वाइस द स्ट्रेंथ. यू गेट अप एंड यू कम बैक. यू टेक वन माइक्रो स्टेप एंड डोंट ओवरवेलम योरसेल्फ विद द फाइनल डेस्टिनेशन. डू जस्ट वन प्रोडक्टिव थिंग टुडे टू मूव द नीडल ऑन योर गोल. साइलेंस द नॉइज. Step away from social media or external pressures for a few minutes. Listen to what you truly value and need. So be resilient. You're tuned into Phanesia Radio 104.9 FM, bringing the community together.

जो नेक्स्ट गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ वो भी इसी जज्बे के साथ है। ऐसा कोई मोटिवेशनल गाना नहीं है, लेकिन ऐसा गाना है कि सुन के मन तृप्त सा हो जाता है। आपको वो फीलिंग आ जाती है कि यार लाइफ हैज़ अ लॉट ऑफ लाइक इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर फन, इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप टू हैव अ ग्रेट टाइम। एंड ये गाना डेफिनेटली गुड़ की तरह मीठा है। आई एम श्योर यू गोना एंजॉय इट।

बात हो रही है दोस्तों सेटबैक्स की. एवरी सेटबैक कैरीज अ लेसन एंड एवरी स्टॉर्म रन्स आउट ऑफ रेन. सो रिमेंबर दैट देयर विल बी सनशाइन आफ्टर द रेन. यू हैव गॉट द पावर टू ओवरकम एनीथिंग इन योर पाथ. फॉर एन एक्स्ट्रा बूस्ट ऑफ इंस्पिरेशन यू शुड लिसन टू अ लॉट ऑफ मोटिवेशनल टॉक्स बिकॉज दीज टॉक्स डेफिनेटली हेल्प यू गेट आउट ऑफ अ सर्टन लूप विच कैन बी पुलिंग यू डाउन. And also another great technique is to reflect and reframe. Write down a recent challenge you faced. Instead of focusing on the obstacle, identify one lesson or skill you gained from it. और इसके बाद जो मैं आपके लिए गाना प्ले कर रही हूँ, आई एम कंटिन्यूइंग विद दैट पंजाबी फील. और ये गुरु रंधावा का गाना है. बहुत ही मज़ा आएगा, वधिया वधिया गाना है. तो तुसी सुनो. Ethe, right here.

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट.
2: Because you don't travel with Lawson. चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर. Lawson Travel. For nearly 30 years, Lawson Travel has been helping families plan stress-free international trips with the best airfares, vacation packages, cruises and customized travel solutions. Lawson Travel makes every journey smooth, affordable and tension-free. Call now 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
3: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
4: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
5: Ladies and gentlemen, you're not ready for this. Frisco में इतना प्यार मिलने के बाद पंचतारा is now open at a new location in Allen. वही स्वाद, वही जुनून और वही जबरदस्त मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस. फेमस गर्मा गर्म पराठे, रोज ताजी बनी मिठाइयाँ और फुल सर्विस बार वेटिंग जस्ट फॉर यू. Enjoy fine dining experience और पंजाबी बफे every day. Catering service is also available to make your every celebration memorable. Panchtara now in Frisco and Allen. Mention अपना पंजाब and get exclusive discount on your first visit.
6: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
7: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
6: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
7: वेट, व्हाट?
8: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
9: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
8: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
10: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है. पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी. पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं. प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है. साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं. आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshigram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई.
11: Astrology readings for guidance only and results may vary.
12: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
13: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
14: पर ही आते हैं।
15: वेलकम लिसनर्स, बात हो रही है कि किस तरह पॉजिटिविटी लेके आया जाए, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो मैंने पढ़ी। योर एनर्जी रियली मैटर्स, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड द एनर्जी यू पुट आउट इनटू द वर्ल्ड थ्रू योर थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस हैज अ पावरफुल इम्पैक्ट। व्हेन यू कल्टिवेट पॉजिटिव एनर्जी एंड अ हाई वाइब्रेशन, यू अट्रैक्ट गुड थिंग्स इनटू योर लाइफ। Radiate positivity and watch how it transforms your experience. तो इससे पहले जो मैं गाना मैं चला के चलाया हुआ था, मैंने आप लोगों के लिए गुरु रंधावा का गाना, उसको कंप्लीट करते हैं, सूट वाला कूल सा गाना है। एंड आफ्टर दैट आई हैव अनदर रियली अमेजिंग सॉन्ग लाइंड अप फॉर यू, बट ये गाना डेफिनेटली कंप्लीट करना तो बनता है। उसके साथ साथ आपको मैं जानकारी भी देना चाहती हूँ, दैट स्पेशली अटेंशन देसी फूड लवर्स and smart shoppers, your next grocery run just got a whole lot better at Desi Mandi in Louisville. From fresh vegetables and authentic Indian groceries to halal meat, spices, sweets, snacks and delicious hot food, Desi Mandi brings the taste of home all under one roof. Whether you are shopping for daily essentials or planning a family feast, you'll find quality, variety and unbeatable desi flavor waiting for you. So grab your shopping list and head to Desi Mandi today. Desi Mandi, where the desi community shops, eats and feels at home.

0: से,
1: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
2: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे।
1: एग्जैक्टली। अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
2: नंबर बोल जल्दी।
1: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
3: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश।
4: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
2: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna, that's our commitment. So, is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
10: Goodness is a beautiful thing. And good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadaqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 non-profit organization.
11: लिसनर्स, ब्रेक से थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी कि ये स्ट्रीट डांसर 3D से लिया जो गाना गैरी एंड जैस्मिन ने गाया था, उस पर डांस ऑफ हुआ था वरुण धवन एंड श्रद्धा कपूर का। अभी बात जैस्मिन सैंडल्स की हो रही है। आपको पता है कि शरारत, जो कि धुरंधर में फर्स्ट जो आई थी फिल्म, उन्होंने उसमें जो गाया था शरारत, उनके साथ एक और थी सिंगर, द सॉन्ग डिड रियली वेल। लेकिन अभी न्यूज़ ये है दैट धुरंधर सिंगर जैस्मिन सैंडल्स हैज़ अनाउंस्ड A multi-city dream girl India tour. That's huge. The multi-city tour is scheduled to hit major entertainment hubs across India, including, of course, Delhi NCR, Mumbai, Bengaluru, and Chandigarh across July and August of this year. So it's happening not far. I mean, July and August is right around the corner. Known for belting out chart busters such as Jai Sajna, Shararat, और मैं और तू, पंजाबी सिंगिंग सेंसेशन जैस्मिन हैज़ अनाउंस्ड दिस ड्रीम गर्ल इंडिया टूर। एंड यू नो, शी इज़ सेइंग कि वेन्यू भी बहुत बढ़िया होंगे। साथ साथ शी आल्सो सेड इन अ स्टेटमेंट, दिस टूर इज़न्ट जस्ट अबाउट प्लेइंग बिगर वेन्यूज, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ स्पेस वेयर माई म्यूजिक इन द ऑडियंस बिकम वन पल्स। माई जर्नी हैज़ ऑलवेज बिन अनफिल्टर्ड एंड डीपली टाइड टू द पीपल हु लिसन टू मी। With the Dream Girl Tour, we are tearing down the walls and building an arena experience that feels incredibly intimate yet absolutely explosive. I'm bringing my rawest energy, raw, that is, bilkul raw energy leke aa rahi hain, and I expect India to bring theirs. Oh, I bet India will bring theirs. The tour's moniker services as a personal homage to her journey, tracing her path from a young lyricist to a global heavyweight. Definitely. She made her presence felt in Shararat because she's also, you know, there on the screen. You can see her. Well, with that, I'm going to move right ahead. The next song I have for you is Mast Kalandar, जिसमें मिक्का सिंह है उनके साथ हैं. Yo, yo, honey sing in the house, all you people. तो यही रहिए और एक giveaway भी आने वाला है चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से 6 बजे के ब्रेक के बाद. As of now, let me tell you this information that this part of our show is brought to you by AG Fintechs, one of the fastest growing tax firm in the US. They offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. They are trusted, efficient, and get you ready for the future. For the number, you have to call this particular number, and for the website, I'll give you both. The number for AG Fintechs is 469-942-9888, and their website is agfintax.com. And here it is, the number I had promised.

कंपोजिशन ट्रेडिशनल थी और बहुत ही कूल गाना था ये मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर. एंड आपने देखा कि इसमें मिका सिंह की आवाज़ यू कैन नेवर मिस, एंड उनके साथ साथ हनी सिंह की भी इसमें ही वाज आल्सो प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर ट्रैक आई वुड से. आई हैव अनदर रियली कूल सॉन्ग फॉर यू. थोड़ी देर में जब ब्रेक आएगा उसके बाद चंडीगढ़ वाइज की तरफ से एक गिव अवे आ रहा है. लिसनर्स, I hope you're having a wonderful time. Agar aapki koi request hai, then you can certainly give me a call and I will try my best to fulfill it. With that, listeners, baat thodi der pehle ho rahi thi how courage is important, resilience is important, and one thing is very, very important, which is embracing your own uniqueness. Don't shrink your dreams to fit into the expectation of others. Your true power comes from owning your individuality and trusting your own inner voice. Action drives courage also. When you choose growth over comfort and action over excuses, you unlock a power that has always been there within you. And definitely respecting each other is very important, be it in any relationship. जहाँ रिस्पेक्ट है वहाँ रिलेशनशिप है, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ रिलेशनशिप नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन बन के रह जाता है, एक जस्ट एक जिसे कहते हैं ना एक मजबूरी बन के रह जाती है. बट लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, रेजिलियंस इज व्हेन यू कैन कम बैक टुवर्ड्स द सेटबैक विद डबल द स्ट्रेंथ, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस. जो नेक्स्ट गाना मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ, मैं बता रही थी कि ऐसे गाने कुछ होते हैं, दे मे नॉट बी डायरेक्टली सेइंग ओ गेट अप एंड लाइक यू नो रन एंड अटेन ऑल योर गोल्स, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कि इतने पेपी होते हैं दैट यू दे गेट यू इन द मूड. लॉट ऑफ पीपल गेट अफेक्टेड बाय म्यूजिक, म्यूजिक इज सपोज टू हैव दैट पावर. एंड सर्टन सॉन्ग्स, अब कुछ ऐसे आइकॉनिक गाने हम सुनते हैं चाहे इंडियन इंडस्ट्री से या पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक से या कहीं से भी हॉलीवुड से, एंड हमारी अपनी मेमोरीज होती हैं. अभी माइकल फिल्म आई है, हाउ क्रेजी पीपल हैव बिकम, एंड यू नो द रिवाइवल ऑफ माइकल जैक्सन is just an excuse because his music has never really left us. So some music, some songs, they bring out the best in us, and that's the idea. I'm going to play some peppy numbers for you, or is particular gaane ke baad 6 baje ke break ke baad I'm going to give away Chandigarh Bites with a quiz. So get ready to win that.

जी हाँ लिसनर्स, ड्राइव टाइम चल रहा है, थोड़ी सी देर में ब्रेक आ रहा है और एक स्पेशल गाना जा रहा है टू विहान. ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर ट्राई आउट्स. दिस वन इज फॉर यू बिकॉज यू नो व्हाट, यू आर द रियल सिम्बा. हियर यू गो.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury Brilliance Celebration, Tanmay Jewelers in Irving.
4: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back. June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
5: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Yaar, boss ne fir se daant diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
10: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
9: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
10: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
9: ये क्या होता है?
10: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
11: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
12: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
13: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
14: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
15: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
16: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
13: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
17: मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक।
18: ग्रैंड बाजार
17: Star is hosting Grand Chandrat Super Sale Eid Expo on Tuesday, May 26th at Frisco Hall Event Center from 12 p.m. to 12 a.m. 50-plus boutiques from different states, varieties of food vendors, food trucks, kids' rides, henna artists, and much more. Free entry and free parking. For booth and sponsorship, call or text Grand Bazaar organizer Sharmeen Hussain at 214-592-5259. Frisco Hall, located at 121 and Independence Parkway.
18: All right, listeners, अभी हम लोगों ने खूब मस्ती मारी, कुछ पंजाबी गाने बहुत सारे सुने. गुरु रंधावा था ऑफ कोर्स, दिलजीत दोसांझ, हनी सिंह, मिक्का सिंह एंड प्रॉपर पटोला. ऑल दैट वॉज फन. एंड नाउ शिफ्टिंग द गियर्स अ लिटिल बिट, आई हैव अ सॉन्ग फॉर यू इन विच आई एम गोना आस्क यू कि ये गाना जो आप सुनने वाले हैं कौन सी फिल्म से लिया गया है, इस फिल्म का नाम क्या है, इस फिल्म ने में म्यूज़िक किसने दिया है एंड उसके साथ साथ डायरेक्शन किसने करी है, और वही नहीं हीरो हीरोइन कौन है. काफ़ी इसमें जिसे कहते हैं मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस नहीं बट मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, और उसके साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है तभी इतना कुछ मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से हेज़ योर चांस टू विन द कढ़ाई पनीर और कढ़ाई चिकन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन, प्लस एंजॉय द स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेज रोटेटिंग डेली फॉर लंच ओनली, लोकेटेड ऑफ मैकडरमॉट ड्राइव इन एलन. विजिट chandigarhbites.com फॉर डिटेल्स. And also, this is a giveaway. In case you have won it within the last month, then you will not be able to qualify. किसी और प्रोग्राम में भी अगर आपने एक फर्स्ट लाइक एक महीने के अंदर आप एक ही बार जीत सकते हैं ये प्राइज. और वंस यू गिव मी ऑल द इन्फॉर्मेशन, देन योर इन्फॉर्मेशन विल बी शेयर्ड विद चंडीगढ़ बाइट्स एंड विद इन 24 to 48 hours दे विल गेट योर इन्फॉर्मेशन. एंड आफ्टर दैट वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अवेल दिस वाउचर विद इन द नेक्स्ट 7 days. And here's a song that I have for you all ready to go. Tell me the questions I just asked you to win that voucher from Chandigarh Bites. The song is going out to Vihan.

जी हाँ, गाना तो थोड़ी देर में कंटिन्यू डेफिनेटली करेंगे. सिंस आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, आई एम नॉट श्योर इफ़ यू कैन हियर मी, बट इफ यू कैन डेफिनेटली गिव मी कॉल 972-235-5555. आई लाइक टू राइट नाउ गिव यू द इन्फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिंग अमेरिका. विद कनेक्टिंग अमेरिका यू कैन टर्न योर बिजनेस एक्सपेंसेस इनटू अ पावरफुल इनकम स्ट्रीम थ्रू अ यूनिक इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी डिजाइंड टू बूस्ट योर बॉटम लाइन. एंड इट डजंट स्टॉप देयर, दे ऑल्सो हेल्प homeowners pay off their mortgage in 10 years or less. So don't wait. Call James today at 321-888-7345. Or you could also visit connectingamericafinancials.com and start turning your daily expense into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash. And now to the song you were listening to.

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: अरे सुनना, आज ऑफिस से आते हुए मैंने फ्रिस्को में एक नया स्टोर देखा।
2: कौन सा?
1: कैरेट लेन।
2: वेट, व्हाट? कैरेट लेन, इंडिया वाला?
1: हाँ वही।
2: थैंक गॉड, यहाँ हर रोज पहनने लायक कुछ मिलता ही नहीं था इजीली।
1: देखा, ढूंढ के दिया ना।
3: इंडियाज मोस्ट लव्ड एवरीडे ज्वेलरी ब्रांड नाउ इन फ्रिस्को, लाइट वेट रियल डायमंड्स मेड फॉर एवरीडे। कैरेट लेन, अ टाटा प्रोडक्ट।
4: एक बात बता, रिटायरमेंट में सबसे स्कैरी क्या होता है?
5: क्या?
4: सैलरी बंद हो जाती है
5: और बिल्स बंद नहीं होते।
4: एग्जैक्टली, इसलिए स्मार्ट लोग वेल टैक्टिक्स से स्ट्रेटजी बनाते हैं।
5: मतलब
4: ऐसी स्ट्रेटजी जहां इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता।
3: द वेल्थ टैक्टिक स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर योर रिटायरमेंट इयर्स। फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
6: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
7: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer ab Dallas mein.
6: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
7: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
6: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
7: Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
8: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
9: Calculating route, rerouting.
8: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
9: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
8: क्यों?
9: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या Pooja essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
8: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
10: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
9: Your new destination has arrived.
11: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. I felt completely stuck. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
3: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR. द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा, आपका हक, उनके जिम्मेदारी.
12: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
13: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
14: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
8: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
14: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
15: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
16: इन प्लेनो.
15: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 469-298-3870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
13: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
14: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
15: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
14: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
15: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
6: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है, क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट. नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम. कॉल 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
17: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman and you're listening to me on Fun Asia Radio.
18: The heartbeat of Dallas. Fun Asia Radio, 104.9 FM.

0: Hello, we have a caller on air. Who's this?
1: Bina.
0: Bina, अच्छा जी बताइए, आपने जो मैंने गाना प्ले किया था, मैं फिर से एक जो मैं थोड़ा सा सुनाती हूँ. ये वाला जो गाना मैंने प्ले किया था, इसका क्वेश्चन जो था, आप रेडी हैं? आर यू रेडी टू आंसर? हाँ बताइए कि ये कौन सी फिल्म से लिया है गाना.
1: बाजीगर मस्तानी.
0: जी हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला, ये बाजीराव मस्तानी से लिया गया है. अच्छा आप ये बताइए कि कौन सी इसमें डायरेक्शन किसकी है?
1: डायरेक्शन तो नहीं आईडिया, मगर गाया है विशाल ददलानी.
0: हाँ हाँ, विशाल ददलानी ने गाया, बिल्कुल सही बोला आपने. लेकिन डायरेक्शन तो बहुत ही फेमस है, वो बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं. संजय लीला बंसाली, बिल्कुल आपने सही बोला. तो संजय लीला बंसाली भी बता दिया आपने, विशाल ददलानी भी बता दिया. अब बस इसमें ये जो आपने बाजीराव मस्तानी भी बता दिया, आपको बस ये बताना है कि इसमें अब हीरो हीरोइन कौन है?
1: दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह.
0: रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण, वेरी नाइस. तो बीना जी, आपने तो जीता है चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से दिस गिव अवे. कंग्रेचुलेशंस. आपने लास्ट मंथ में तो नहीं जीता ना?
1: नहीं, मैंने तो अभी तक एक बार भी नहीं जीता.
0: एक बार भी नहीं जीता, दस बार. लेकिन दैट्स वंडरफुल, आपने जीत लिया है ये गिव अवे. और क्या कहते हैं कि आप 24 से 48 आवर्स तक उनको आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. मैं आपसे ईमेल लूंगी, आपका फोन नंबर लूंगी, और आपको विद इन 7 डेज आपको वहां जाना है. 7 डेज के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा.
1: ओके,
0: ठीक है. ओके, सो लेट मी फर्स्ट टेक योर इन्फॉर्मेशन. जस्ट स्टे ऑफ एयर, आई विल जस्ट पुट यू ऑफ एयर. ओके.

0: जी हाँ, लिसनर्स, एक छोटा सा ब्रेक आ रहा है और फिर आपके साथ होगा मेरा साथ 7 बजे तक। मैं हूँ आपकी होस्ट पावर भाटिया और कल भी आऊँगी आपके साथ 5 to 7 कवरिंग इन फॉर मार्विन हु इज आउट ऑन अ वेकेशन, सो आई एम कवरिंग इन फॉर हिम एट दिस पॉइंट। आई वॉज टेकिंग इन योर रिक्वेस्ट एज वेल, कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और दैट वेज आई कैन प्ले। आई हैव प्लेड अ लॉट ऑफ पंजाबी नंबर्स टुडे एंड बहुत मस्ती वाले नंबर्स हैं। तो इसी के साथ साथ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, यहीं रहिए। और यस, इफ़ यू हैव अ पर्टिकुलर सॉन्ग दैट यू वांट टू हियर फ्रॉम 90s ऑनवर्ड्स, देन यू कैन सर्टेनली गिव मी अ कॉल। स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555।
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
4: ओ हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
2: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
6: चिकन बनाना
7: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
8: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
9: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motor Works in Richardson, expert European auto care. Precision diagnostic and top tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motor Works, engineered for excellence.
10: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
11: हाँ, बस थोड़ा

0: राइट गाइडेंस मिल गया है।
1: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
0: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
2: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper और McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math और English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support और हर बच्चे के लिए competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia, get $100 off your first month.
3: सब कुछ साफ रख सकते हो,
4: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
5: क्योंकि ये कौन बोला?
4: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
6: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 972-877-2500।
7: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
8: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
2: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
9: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
10: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
9: K2 ड्राइव मतलब
10: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लव फील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस, सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
9: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
10: 100%
11: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2 ड्राइव.com और कॉल 214-814-0402। केटो ड्राइव, डायलिसिस, स्मार्टेस्ट फ्लीट पार्टनर।
12: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डायलिस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी, पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
13: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।
14: जी हाँ लिसनर्स, आप सबका बहुत स्वागत है राइट ऑन द एयरवेव्स ऑफ फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। अभी लेटेस्ट न्यूज में अनन्या पांडे को क्रिटिसिज्म मिल रहा है, ट्रोल हो रही हैं वो फॉर डूइंग दिस भरतनाट्यम। एंड चंगी पांडे, उनके डैड, उन्हें डिफेंड कर रहे हैं, सेइंग दैट दिस वाज नॉट सपोज्ड टू बी प्योर भरतनाट्यम, इट वाज सपोज्ड टू बी फ्यूजन एनीवे, सो व्हाई द ट्रोलिंग। हियर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ स्निपेट ऑफ द न्यूज फॉर यू। Right here. Well, apparently the audio is not the best here, but here she is beautifully dressed in a Bharatanatyam costume, and I'm sure, like, she's not a pure Bharatanatyam dancer, but like, if the intention was for it to be a certain way, then this criticism should really be questioned, because if it was meant to be fusion, then why make it such a thing? She strolled for awkward dance sequence. Well, I don't know if it's a choreography problem or if it's the fact that she was not meant to do this as a pure thing. It's one of those things, you don't know what happened. But ye to hota hi hai ki backlash hota hai hamesha. Chand Mera Dil ko kafi trolling mil rahi hai, lekin jab aap khud film dekhenge to idea zyada hoga. Ye baat hai. एंड ये भी रणवीर सिंह का गाना है, लेकिन मैं
15: वॉचिंग हर परफॉर्मेंस
14: फिर से आपके लिए ट्राई करती हूँ प्ले करने के लिए।
15: Ananya Pandey often gets trolled for her acting skills, but this time, it's her dance performance that has left the internet completely puzzled, with many people wondering what exactly they just watched. Ananya is currently facing criticism and trolling after a Bharatnatyam fusion dance sequence from her recently released film Chand Mera Dil went viral online. A short clip featuring Ananya performing a fusion of contemporary and Bharatnatyam in traditional attire has caught everyone's attention online. While many netizens called the choreography awkward, others felt the performance lacked grace and was disrespectful to the Indian classical dance form. Several netizens also pointed out how actor Lakshya's character is shown watching her performance in admiration and joked that such a performance should not have left the crowd and Lakshya's character Arav looking mesmerized. Meanwhile, according to reports, Kangana Ranaut also shared an old dance clip on her Instagram story featuring legendary actress Vaijanthimala, which many social media users assumed was a subtle dig at the trolling surrounding Ananya's performance in Chand Mera Dil. Although the Instagram story is no longer visible on Kangana's profile, she had praised Vaijanthimala wholeheartedly in the post. Now coming to the film, Chand Mera Dil, which released in theatres on May 22, 2026, opened to a slow start at the box office. However, reports suggest the film witnessed a modest jump in collections on its second day, despite receiving mixed reactions from audiences and lukewarm reviews on Friday. The film revolves around the intense love story of Arav and Chandni, played by Lakshya and Ananya Pandey respectively. But ever since Ananya's dance clip went viral online, that seems to have become the biggest talking point among netizens, with the majority of them appearing far from impressed. So, what do you think about Ananya's dance sequence? Share your thoughts in the comments and subscribe to Shosha for more.
14: ये तो थोड़ी बहुत न्यूज़ आपने सुनी चांद मेरा दिल के बारे में. अब मैं आपको लिसनर्स बता दूं दैट DFW होम ओनर्स एंड बिजनेस ओनर्स, इज योर रूफ रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टॉर्म सीजन? ट्रस्ट द एक्सपर्ट्स एट हेल टू नेल कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर प्रोफेशनल रूफ रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर्स फ्रॉम शिंगल्स एंड TPO टू मेटल रूफिंग. दे हैंडल बोथ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स विद क्वालिटी एंड केयर. एंड दैट्स नॉट ऑल. They also offer general remodeling, painting, repairs, and concrete work to keep your property looking its best. Free inspection and claim assistance. Check out their 5-star Google reviews. For dependable service, call Nisar Ahmed today at 682-561-9795. That's 682-561-9795. And not only that, their website or their email is h2ngcontractors@gmail.com. Let me repeat the email, h2ngcontractors@gmail.com. Here's a little bit of a snippet I'd like to share about Salman Khan. People are speculating how he's doing, so definitely a news to banti hai.
3: कई दिनों से अपने फैंस से शेयर करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे. देखो, रिसेंटली सलमान ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद उसे एक्टिवेट भी कर दिया, जिससे कहीं ना कहीं सलमान के रिसेंट बिहेवियर से साफ समझ आ रहा है कि सलमान किसी चीज को लेके पिछले कुछ महीनों से काफी परेशान चल रहे हैं, जिसका प्रूफ है उनका इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसमें आज तक सलमान ने अपने फैंस से 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं किया. लेकिन पिछले कुछ समय से सलमान के पोस्ट के कैप्शंस काफी एक्सप्रेसिव होते हैं, जैसे वो अपने फैंस से सब कुछ शेयर करना चाहते हों, जिसका सिलसिला इसी महीने से शुरू हुआ है. जैसे 4 मई को जब उनके 42 साल पुराने दोस्त सुशील कुमार का स्वर्गवास हुआ, तो स्वर्गवास के कुछ ही मिनटों के अंदर सलमान ने उनके दोस्त की फोटो शेयर करते हुए एक इमोशनल नोट शेयर किया. इनफैक्ट सलमान उनके दोस्त के जाने से इतना इमोशनल थे कि सेम डे सलमान ने उनके दोस्त के लिए एक और पोस्ट डाला. इसके बाद कुछ दिन पहले सलमान का एक और पोस्ट सामने आया, जिसके कैप्शन में लिखी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे सलमान अपनी लाइफ में काफी अकेले पड़ गए हैं. हालांकि सलमान के इस पोस्ट से जब उनके फैंस ने सलमान के लिए चिंता जताना शुरू की, तो सलमान ने एक और पोस्ट किया जिसमें लिखा था कि अरे यार, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं कैसे अकेला हो सकता हूँ जब मेरे पास इतनी बड़ी और अच्छी फैमिली, फ्रेंड्स और आप लोग हो. आपकी विशेष और दुआओं के बाद भी अगर मैं ऐसा कहूँ तो मैं सबसे बड़ा नाशुकरा होऊंगा. फिर लिखा कि कभी कभी लोगों के साथ रहकर पक जाता हूँ, इसलिए सब मी टाइम. बस इस बार कोई फोटो नहीं, ब्रेकिंग न्यूज बना दिया. मम्मी पूछ रही थी क्या हुआ बेटा, चिल मारो यार. फिर इस पोस्ट के बाद सलमान ने 19 मई की रात को 4 पोस्ट डाले, जो पोस्ट मीडिया और पपराजीज के लिए थे, क्योंकि 19 मई को सलमान को हिंदुजा हॉस्पिटल के बाहर स्पॉट किया गया था, जहां पपराजीज सलमान से मातृभूमि का नाम ले लेके फोटो क्लिक करवाने को बोल रहे थे. लेकिन सलमान वहां किसी खास व्यक्ति से हॉस्पिटल में मिलने आए थे और पेप्स की चिल्ला चोट सुन के सलमान इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने पेपराजीज को गाली दे दी। जिसके बाद सलमान ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि मेरी तकलीफ और दर्द पे तुम लोग एंजॉय कर रहे हो, पैसा बना रहे हो, तो चुप रहो और एंजॉय मत करो। जब तुम्हारा कोई हॉस्पिटल में होगा तो क्या मैं ऐसा रिएक्ट करूंगा? अब देखो, सलमान की इन सब बातों का कुछ तो मतलब जरूर है, क्योंकि सलमान कभी भी अपने फैंस के साथ इतना एक्सप्रेसिव नहीं हुए। अब या तो फिर सलमान का कोई खास व्यक्ति हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती है, या तो सलमान अपने दोस्त सुशील कुमार के स्वर्गवास से दुखी है, या फिर सलमान अपने फादर सलीम खान साहब की हेल्थ को लेकर काफी परेशान है। ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से वो अपने फैन से कुछ शेयर करना चाहते हो, और शेयर करने या ना करने की कश्मोकश में ही कहीं ना कहीं सलमान ने कुछ घंटों के लिए अपना इंस्टा अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया था। अब वो क्या बात हो सकती है, ये तो वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा। बाकी आप कमेंट में बताओ कि इस पर आपका क्या सोचना है।
14: वाओ, दैट्स अ गुड वन। आपका क्या सोचना है? आई नो सलमान खान, ही इज वेरी पॉपुलर, इवन आई एम अ ह्यूज फैन। ही इज वेरी वेरी डिपेंडेबल एज एन एक्टर, एंड ही इज एक्चुअली गिवन सम रियली अमेजिंग मूवीज। ही इज, जिसे कहते हैं ना, टोटल हीरो मटीरियल। बट ऑफ कोर्स, आई मीन, एज कैचेस अप। ही इज ऑल्सो हैड सम हेल्थ इशूज, एंड देन लाइक हिज फ्रेंड डाइड इवन नाउ, एंड इन इवन अर्लियर अनदर फ्रेंड गॉट शॉट। Then his dad has been under the weather. He also had to be taken to the hospital. So life happens. Actors are also human beings, and they also have feelings and emotions. And sometimes it's not that easy to be an actor and to always be in the limelight, because on one hand it's great, but on the other hand you get no privacy. So yeah, we wish him all the best. Definitely, Salman Khan ko to best he sab wish karenge. He's also very, very, he's altruistic. He gives a lot of donations. He's always out there to help people. So wishing him an absolutely amazing life. Aur ye to hai listeners ki hum log actors ke saath, hero heroines ke saath, we form a different sort of a bond. Like abhi tak, you know, my parents, like the kind of bond they have with मूवीज ऑफ दिलीप कुमार या देवानंद या राजेश खन्ना, उनका एक अलग बॉन्ड है। हम लोगों की जो एज ग्रुप है उनका अलग बॉन्ड है, यंगस्टर्स का अलग बॉन्ड है। लेकिन आई थिंक सलमान खान हैज़ स्पैंड ओवर अ लॉट ऑफ डेकेड्स, सो ही हैज़ क्रिएटेड दैट स्पेशल स्पेस फॉर हिमसेल्फ इन पीपल्स हार्ट्स, नॉट ओनली द जनरेशन ऑफ द 90s, the 1990s, but also the young generation of the 2010s, the 2020s. You know, he came in that Bajrangi Bhaijaan, usse pehle Partner. The movies he's come in have left an impact. And usse pehle O O Jaane Jaana, if you remember. And usse bhi pehle Maine Pyar Kiya. So he's definitely made a space in people's hearts. And we wish him all the best. Abhi, of course, controversial news to chali rahi hai Ranveer Singh ke baare mein. कि नॉट कॉन्ट्रोवर्शियल, बट इस वक्त ये है कि फेडरेशन ने बैन किया है। बैन का मतलब ये नहीं है वो एक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो भी फेडरेशन में है, द सो मैनी वर्कर्स, द सो मैनी पीपल, दे कैन एक्चुअली, दे हैव अ चॉइस टू नॉट वर्क विद हिम। सो विच इज़ नो फन, बिकॉज ए, राइट नाउ ही नॉट ओनली इज ही द मोस्ट बैंकेबल एक्टर एंड वेरी टैलेंटेड, वी हैव सीन हिज टैलेंट इन सो मैनी मूवीज, बी इट बाजीराव मस्तानी, Beat Padmavat, for that matter, be it, like the list can go on and on. He's played the next door, like, you know, neighbor. He's played like this warrior. He's played Alauddin Khilji. And then also now in Dhurandhar, you know what he's played? He's played a spy, and he's done such a fantastic job. Very dependable actor. And how could I forget where he's played the divine, like RJ, not RJ, rather DJ Divine in Gully Boy. So Ranveer Singh is full of life, he's full of talent, and we wish that the issues that are happening between him and Farhan Akhtar get resolved. If it's a matter of money, I don't think it's such a big amount for him. I mean, that's kind of like maybe not the best thing to say, because 45 crore rupees is not a small amount, but I think what needs to be addressed is like, okay, if he has to pay, how much should he pay? And he doesn't want to talk about why he left the movie. He says he wants to deal with that in a personal and dignified way. So I think we should respect that. But I'm sure kuch baat to niklegi is baare mein. क्योंकि हैं ही वो इतने बड़े धुरंधर एक्टर इस वक्त और इतनी न्यूज़ में हैं और बातें हो रही हैं कि वो अब चंद्रगुप्त मौर्य में भी आ रहे हैं जिसे आदित्य धर ही कर रहे हैं डायरेक्ट, और एक अमिश त्रिपाठी की सीरीज़ है शिवा के ऊपर, लेकिन तांडव बट ही सेइंग ही इज़ नॉट अफिलिएटेड टू इट, सो कह नहीं सकते कि किस फिल्म में उसके बाद आने वाले हैं, बट ये चंद्रगुप्त के मौर्य की बात तो हो गई है कि ही इज़ कमिंग विद आदित्य धर. Well, we definitely wish the industry more consolidation. We want them to be consolidated as a fraternity, to be able to communicate with each other in a civil way. I mean, Farhan Akhtar is an awesome guy. I'm sure he had his reasons because such big losses have to be obviously accounted for. It's one of those things. It's not, I don't think he has anything to do with jealousy, but ye bhi baatein chal rahi hain. Well, with that, listeners, it's time for me to leave. This is your host, Parul Bhatia. It's time for me to sign off. I hope you're having a wonderful rest of the day. Aur kal main aapse phir milungi 5 se 7 baje. Meanwhile, be safe, be brave, and keep it real, genuine, and happening with Fun Asia Radio, bringing the community together. Catch you tomorrow.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
3: अरे सुनना, आज ऑफिस से आते हुए मैंने फ्रिस्को में एक नया स्टोर देखा।
4: कौन सा?
3: कैरेट लेन।
4: वेट, व्हाट? कैरेट लेन, इंडिया वाला?
3: हाँ वही।
4: थैंक गॉड, यहाँ हर रोज पहनने लायक कुछ मिलता ही नहीं था इजीली।
3: देखा, ढूंढ के दिया ना।
5: इंडियाज मोस्ट लव्ड एवरीडे ज्वेलरी ब्रांड नाउ इन फ्रिस्को, लाइटवेट रियल डायमंड्स मेड फॉर एवरीडे। कैरेट लेन, अ टाटा प्रोडक्ट।
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
7: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपरवर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
8: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
7: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
9: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं, रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
5: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338। The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
10: घर की याद नहीं आई तुझे? जब से
11: आती है यार, बहुत आती है।